आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलोहर्ट्ज़, साथ ही न्यूज ऑन AIR ऐप पर। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की तिथि 22, तदनुसार 12 जून सन 2026 ईस्वी। प्रातः के 5:48 हो चुके हैं। आरंभ होती है हमारी आज की पहली सभा।

0: ये आकाशवाणी दरभंगा है। चिंतन
1: एही संसार में ने क्यों ककरो मित्र अछि आ ने क्यों ककरो शत्रु। स्वार्थवश मैत्री होइ छ आ स्वार्थ साधन भ गने मैत्रियो समाप्त भ जाइ छ। स्वार्थ टकरे ने मैत्री शत्रुता में परिणत भ जाइ छ आ परिस्थितिवश वा कहू जे स्वार्थ साधनक संभावना उत्पन्न भने शत्रुता मैत्री में बदल जाइ छ। कोनो वन में बड़क एकटा विशाल गाछ छल। गाछक जड़ में बिहड़ी बनाकर एकटा मूस रही छल आ गाछ पर मूसक शत्रु बिलार रही छल। एक दिन बिलार व्याधक फांस में फंस गेल। मूस बिलार के बाझल देख प्रसन्न भेल आ बिहड़ से निकल स्वच्छंद भ कर चारू दिस घूम लागल। तखन ही ओकर नजर सपनौर पर पड़ले। मूसक गंध पामी ओ फुरफुरा कर उठ कर बैसल छल, साकांक्ष भ गेल छल। गाछक ठाड़ पर बैसल देखलक ओ उल्लू के। उल्लू से हो मूस पर गृद्ध दृष्टि देने छल। नीचा सपनौर ऊपर उल्लू, आप की कैल जाए। मूस सोचलक जँ बिलार सँ मैत्री क ली तो अनायासे सपनौर आ उल्लूक भय समाप्त भ जाए। ओ बिलार लग आबि कर बाजल, हे बिलार तो फांस में बाझल छ, भोर होते ही व्याधा आबि कर तोरा मारि देतौ। तोहर प्राण संकट में छौ, हमरो प्राण संकट में अछि, दू दूटा शत्रु हमरा पाछा लागल अछि, ई सपनौर आ ओ उल्लू। उचित ई थिक जे हम तोहर रक्षा करी आ तो हमर रक्षा करा। आब शत्रुता के बिसरि जाय आ मैत्री कऽ ली। रक्षाक आश्वासन पाबी मूस बिलार लग जा कऽ बैस रहल। बिलारक डरे सपनौर आ उल्लू दुनू भागि गेल। मूस शनै शनै फांस काटऽ लागल। जेना जेना विलम्ब होय तेना तेना बिलारक मृत्यु भय बढ़ल जाय। ओ मूस के शीघ्रता करक लेल कहे, मुदा मूस सोचे जे जँ तुरंत फांस काटि देबे तो ई भुखायल बिलार हमरा खाइए जायत। तैं जखन व्याध समीप आबि जेतै तखन अंतिम फांस काटबै जे प्राण भय सँ ई भागि जायत आ हमहूँ अपना बिल में चल जायब। सब फांस काटि कऽ मूस अंतिम फांस छोड़ि देलक। फरिच भेले। व्याध के जाल लगबैत देख मूस अंतिम फांस काटि देलकै। बिलार गाछक छिपंगी पर चल गेल आ मूस अपना बिहड़ि में नुका रहल। व्याध जाल समेट कर चल जाइत रहल। तखन बिड़ाल मूस के संबोधित कक बाजल, हे मूस बिल सँ बाहर आबह, व्याध गेल, हमर भय समाप्त भ गेल आ तोरो कोनो भय नहि, तो हमरा संरक्षण में छह, बाहर आबह, निर्भय विचरण करह, हमरा दुनू गोटे के मैत्री स्थिर रह। मूस उत्तर दलके,

0: तो त हमार घोर शत्रु छ। स्वार्थवश हम दुनू गोटे किछु कालक हेतु मित्र बनि गेल रही। तो हमरा पराक्रम में मुक्त भला आ हम तोरा पराक्रम में। आप परस्पर अनुग्रह समाप्त अछि। आब हमरा खा लेबाक अतिरिक्त तोरा हमरा सँ कोनो काज नहीं भ सकै छौ। आब तो ओतै सँ हमर कुशल कामना करा। एही लघुकथाक अभिप्राय एतबै जे शत्रुता आ मैत्री निष्कारण नहीं होइ छै। बुद्धिमान व्यक्ति सांसारिक संबंध के एही दृष्टिया देखै छथि।
1: ये था आज का चिंतन। ये आकाशवाणी दरभंगा है। कृषि चर्चा विषय है खाद एवं उर्वरक का समुचित प्रयोग। वाचन स्वर है अनिल कुमार कर्ण का।
2: किसान भाई लोकन आजुक कृषि चर्चा संग उपस्थित छी। हम अनिल कुमार कर्ण। एहि कार्यक्रम में अपने सब गोटे के स्वागत संगे सब गोटे के नमस्कार। आइ कृषि चर्चा में हम सब अपन अपन खेत में खाद उर्वरक के उचित व्यवहार कोना करी इस संबंध में विस्तार से गप करब। अपन सबक देश के जनसंख्या अबाध गति से बढ़ल जा रहल अछि। जतो अकैब बन छल ओहिठाम खेत बन गेल। जतो खेत छल ओहिठाम घर बन रहल अछि। जतो पहिने से घर छल ओहिठाम घर पर घर बन रहल अछि। एकर परिणाम ई भेल जे खेतक रकबा दिनानुदिन छोट भ रहल अछि। एहि विशाल जनसंख्या के उदर पूर्तिक लेल हम सब अपन खेत से बेसी उपजा लेबाक लेल बाध्य छी। एहि क्रम में खेत सब में अनर्गल रूप से खाद उर्वरक के व्यवहार भ रहल अछि। एकर फलस्वरूप उपजा त हमरा सब के नीक भेट रहल अछि, मुदा फसिल के गुणवत्ता खराब भ गेल अछि, जाहि सँ हम सब अनेक तरहक रोग सँ ग्रस्त भ रहल। आब सब गोटे मिलकर विचार करो पड़त जे ऐ समस्या के निदान कोना करी। हर एक फसिल के पोषक तत्व सभक मात्राक मांग अलग अलग होइत अछि। सबसे पहिने अपन खेत के माटिक जांच करा ली। ओकर बाद कृषि वैज्ञानिक लोकन जे अनुशंसा करै छै ताहि अनुरूपे खाद उर्वरक के व्यवहार करब उचित अछि। संगे किसान भाई लोकन शनै शनै जैविक व प्राकृतिक खेतीक दिस ध्यान देब सेहो आवश्यक अछि। ऐ सब फसिल के गुणवत्ता में बेस सुधार भ सकैत अछि। किसान भाई उर्वरक के व्यवहार में किछ खास गप पर ध्यान राखब आवश्यक अछि। अपन खेत में बेसी से बेसी जैविक खादक व्यवहार करू। खेतक माटिक जांचक उपरांत माटि में उपस्थित पोषक तत्व सभक मात्रा माटिक श्रेणी ओकर प्रतिक्रिया संबंध में जानकारी प्राप्त कऽ ली। एहि से अपने के उर्वरक के प्रकार आ ओकर मात्रा के निर्धारण करबा में बेस मदद भेटत। अम्लीय व क्षारीय माटि के सुधार के लेल अपन खेत के माटिक जांच त निश्चित रूप से करेबाक चाही। नेत्रजनीय उर्वरक के संपूर्ण मात्रा एक बेर में नहीं दक एकर व्यवहार जो अपने 2-3 खेप में करै छी त ऐसा बेसी लाभ भेट सकैए। बेसी बाउल वाला माटि में पोटास के व्यवहार सेहो अपने के 2 बेर में करक चाही। किसान भाई लोकन एकटा गप के ध्यान में राखल जाए जे हरेक फसिल में बाउ व रोपवा से पहिने स्फुरक व्यवहार निश्चित रूप से करबाक चाही। स्फुर वाला उर्वरक के व्यवहार बिया के पांती से अलग 1.5 इंच फराक पट्टी के रूप में करक चाही। ऐसा अपने के बेसी लाभ भेट सकैत अछि। स्फुर धारक उर्वरक जो अपने के दाना वाला भेट जाए तो ई बेसी लाभप्रद होइत अछि। एहि तरह अम्लीय चूना युक्त लवणीय आ क्षारीय माटि में स्फुर के व्यवहार करब आवश्यक अछि। जतय धरि संभव रहे उर्वरक के संपर्क बियाक संग नहि हेबाक चाही। अमोनियम सल्फेट आ यूरिया खाद के व्यवहार उदासीन व अम्लीय माटि में अपने कऽ सकैत छी। 5-6 वर्षक अंतराल पर चून के व्यवहार त निश्चित रूप से करक चाही। बरानी खेत के सतह पर यूरिया के व्यवहार नहीं कऽ एकरा 1.5 इंच गहीर में करक चाही। किसान भाई लोकन नीम मिश्रित यूरिया आ लौह आवृत यूरिया के व्यवहार अपने कऽ सकैत छी। ऐसा अपने के बेसी लाभ भेट सकैत अछि। किसान भाई लोकन फसिल सब में अपने यूरिया खाद के जलीय घोल बनाकर सेहो छिड़काव कऽ सकै छी। मुदा किसान भाई लोकन एकटा गप के ध्यान में रखल जाए जे घोल के सांद्रता 2-3% से बेसी नहीं हेबाक चाही, नहीं तो लाभक बदला में अपने के हानि भ सकैए। फसिल के गाछ सब में रासायनिक उर्वरक के उपलब्धता बढ़ेबाक लेल आ ओकर बहाव के रोकबाक लेल रासायनिक उर्वरक के घोल बनाकर ओकरा लकड़ी के कुन्नी व गंधकीय प्रेसमेड यूरिया के दाना 2:1 में मिला

0: अहाँक जैविक पदार्थ के संग सुखा कऽ व्यवहार केला सँ अपने के बेसी लाभ होइए। यूरिया खाद चूना रहित माटिक संग मिला कऽ गोली बना ली आ ओकरा 24 घंटा धरि रौद में सुखा कऽ व्यवहार केला सँ बेसी लाभप्रद सिद्ध भेल अछि। मुदा किसान भाई लोकनि एहि गप के ध्यान राखी जे यूरिया आ माटि के अनुपात 1:5 हेबाक चाही। किसान भाई लोकनि एहि संग आवाजुक कृषि चर्चाक समय सम्पन्न भऽ रहल अछि। अनिल कुमार कर्ण के चलबाक आज्ञा देल जाए। नमस्कार।
1: ये थी आज की कृषि चर्चा। ये आकाशवाणी दरभंगा है। अब समाचार होंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत का विकास विश्व को लगातार प्रेरित कर रहा है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और उन्हें लागू करने के महत्व पर भी बल दिया। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ मिला है।
3: The topic for the Governing Council meeting.
4: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
3: To youth, to working life, to old age.
2: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। ये समझौता नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियो रियो की उपस्थिति में हुआ। गृह मंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया भर में चल रहे संघर्ष क्षेत्रीय सीमाओं से परे व्यापक स्तर पर प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने फिनलैंड में कुल तारंता वार्ता में फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टोनेन और संयुक्त अरब अमीरात की सहायक विदेश मंत्री लाना नुसीबेह के साथ उभरती शक्तियों और नई भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए ये चिंता व्यक्त की। डॉक्टर जयशंकर ने संघर्षों के परिणामों को कम करने और कूटनीति की अनुकूल परिस्थितियां बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने तेजी से अस्थिर होती दुनिया में जोखिम कम करने और आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने, अधिक मजबूती और अतिरिक्त क्षमता विकसित करने के महत्व का भी उल्लेख किया। भारत ने ओमान तट पर जहाज MT सत्तेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज किया। सरकार ने कहा है कि वह खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति को देखते हुए भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पोत परिवहन महानिदेशालय ने संघर्ष प्रभावित जल क्षेत्र से गुजरने वाले भारतीय और विदेशी ध्वज वाले जहाजों पर कार्यरत सभी नाविकों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की सलाह दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में 158वें नियमित पाठ्यक्रम और 141वें तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 2 दिन के लिए स्विट्जरलैंड की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पारमेलिन और आर्थिक मामलों की राज्य सचिव हेलेन बुडलीगर आर्टेडा से मुलाकात करेंगे। वे स्विस दवा उद्योग के प्रमुख प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने

है कि ये यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करेगी। देश में किसान मित्र नाम से एक व्हाट्सएप आधारित एआई सलाहकार सेवा की शुरुआत की गई है। इस सेवा में खरीफ की बुआई का मौसम शुरू होते ही किसानों को तिलहन की खेती से संबंधित जानकारी सीधे उनके मोबाइल फोन पर दी जाती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: मीडियम वेव 231.5 मीटर पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। स्वास्थ्य चर्चा, आज की चर्चा का विषय है मोतियाबिंद, कारण और लक्षण। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर रमण कुमार वर्मा।
1: स्वास्थ्य चर्चा के इस अंग में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रमण कुमार वर्मा, जो आंख के रोग के विशेषज्ञ हैं, साथ ही गला नाक कान के भी विशेषज्ञ हैं। आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत। आज हम बातचीत करेंगे अपने श्रोताओं के लिए मोतियाबिंद के कारण और उसके निदान पर। डॉक्टर साहब, मोतियाबिंद का ये है क्या, कारण क्या है?
2: मोतियाबिंद हमारे देश में अंधापन का प्रमुख कारण है और ईश्वर द्वारा प्रदत्त आँखों की पुतली के मध्य में एक पारदर्शक लेंस होता है, जिसके माध्यम से प्रकाश की किरणें आँखों के अंदर प्रवेश कर दृष्टि पटल, जिसे रेटना कहते हैं, पर छवि बनाती है और मनुष्य देख पाता। बढ़ती उम्र के कारण या किसी अन्य कारण से भी पारदर्शक लेंस में सफ़ेदी आ जाती है या लेंस अपारदर्शक हो जाता है।
1: यानी ये
2: अपारदर्शक लेंस को मोतियाबिंद कहते हैं।
1: इसके कारण क्या है?
2: मोतियाबिंद, सबसे सामान्य मोतियाबिंद बढ़ती उम्र के कारण 50 से 60 वर्ष की आयु में उत्पन्न होता है। यह धीरे धीरे बढ़ता है और रोगी की रोशनी धीरे धीरे कम होती जाती है। उम्र के कारण जैसे बालों में सफ़ेदी, चमड़े में परिवर्तन होता है, उसी तरह लेंस में भी परिवर्तन आता है। हेरिडिटी या आनुवांशिकता की भी इसमें प्रमुख भूमिका है।
1: क्या इसमें खान पान का भी कोई असर होता है?
2: जी हाँ, निश्चित ही। भोजन में विशेष रूप से प्रोटीन की कमी, विटामिन की कमी, खासकर विटामिन सी, राइबोफ्लेविन की कमी और विटामिन ई की कमी से मोतियाबिंद की संभावना बढ़ जाती है।
1: तो इसके अलावा और क्या क्या जो प्राकृतिक या गैर प्राकृतिक या रासायनिक कारण हो सकते हैं जो आँखों पर असर डालते हैं?
2: अन्य प्रमुख कारणों में सूर्य की जो अल्ट्रा वायलेट किरणें हैं, उनका आँखों पर असर होता है और यही कारण है कि हमारे देश में मोतियाबिंद के रोगी ज़्यादा हैं। यहाँ गर्मी ज़्यादा होती है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। सिगरेट पीने वालों में भी मोतियाबिंद उत्पन्न होने की संभावना अधिक होती है। चोट, आँखों में चोट लगने के कारण भी मोतियाबिंद हो सकता है।
1: क्या डायबिटीज़ वगैरह अगर किसी को हो रक्त में या फिर ब्लड प्रेशर हाई हो, इन सब का भी असर होता है क्या मोतियाबिंद?
2: डायबिटीज़ का तो असर होता है, डायबिटीज़ के असर से मोतियाबिंद आँखों में हो सकता है। और आँखों में पहले से मोतियाबिंद है तो वो, और उसका उपचार न किया जाए तो मोतियाबिंद जल्दी पकता है। अब कभी कभी ये भी देखा गया है कि बच्चों में जन्म से ही मोतियाबिंद होता है। इसके अलावा आँखों में कुछ ऐसी बीमारियाँ होती हैं जिनके असर से भी, जिनके कॉम्प्लिकेशन से भी मोतियाबिंद हो सकता है।
1: तो इसको कैसे पहचाने का, एक आम आदमी उसका लक्षण कुछ होता होगा जो पहचान सके?
2: जी हाँ, मोतियाबिंद के रोगी के आँखों की रोशनी बिना दर्द के धीरे धीरे कम होती जाती है। एक ही चीज़ का दो या तीन दिखना या चार दिखना, इसे डिप्लोपिया या पोलियोपिया कहते हैं, ये हो सकता है। और आम तौर पर यह भी देखा गया है कि किसी रोशनी के स्रोत के चारों तरफ रंग बिरंगे धारियों वाले, जिसे कलर्ड हैलोज कहते हैं, वो उत्पन्न होता है और रोगी की शिकायत होती है कि उसके उसे रोशनी के चारों ओर इंद्रधनुषी रंग दिखाई पड़ रहा।
1: तो श्रोताओं, ये थी आज की स्वास्थ्य चर्चा में मोतियाबिंद क्या है, उसके लक्षण क्या है। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य चर्चा। विशेष

के थे डॉक्टर रमन कुमार वर्मा। आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे मोतियाबिंद के कारण और लक्षणों के बारे में। ये आकाशवाणी दरभंगा है। कार्यक्रम संबंधी एक सूचना हम आप तक पहुंचा दें। श्रोता, रक्तदान के माध्यम से न सिर्फ जरूरतमंद व्यक्ति की जीवन रक्षा की जा सकती है, बल्कि रक्तदाता को भी इससे स्वास्थ्य संबंधी कई फायदे होते हैं। रक्तदान क्यों है महादान, यही है आकाशवाणी दरभंगा के फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी के अगले अंक का विषय। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर संजीव कुमार, इंचार्ज रीजनल ब्लड बैंक DMCH दरभंगा। प्रसारण के दौरान कार्यक्रम से जुड़ने के लिए हमारे फोन नंबर होंगे 06-272-222-481। दूसरा नंबर होगा 943-00-29353। कार्यक्रम हेलो जिंदगी के प्रसारण का समय याद रखें, इस रविवार 14 जून 2026 दिन के 11 बजे। कार्यक्रम संबंधी ये सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। अब निवेदित है भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। पहले समवेत स्वरों में देशभक्ति परक ये गीत सुनते हैं।

राजन कुमार मिश्र के स्वर में अभी आप ये भजन सुन रहे थे। भक्ति संगीत का ये कार्यक्रम वंदना आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से। आइए अब सुने ये भक्ति रचना शर्मा बंधु के स्वर में।

अनूप जलोटा और साथियों के स्वरों में अभी आपने ये भक्ति गीत सुना। लीजिए, कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवा रहे हैं ये भजन कुमार विशु का गाया हुआ है।

0: वंदना अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी दरभंगा है, आइए अब सुनते हैं रामचरितमानस गान।
1: एपिसोड नंबर 405 405।

पक्षीराज गरुड़ को श्री रामचरित तथा ज्ञान और भक्ति की मीमांसा सुनाने वाले पुण्यात्मा काकभुशुंड के चरित्र में एक लक्षण सब ही मानप्रद आपु अमाना के दर्शन इस प्रसंग में होते हैं, जहां वे कहते हैं, श्री रघुनाथ जी के अतिरिक्त और किसका भजन किया जाए, जिन्होंने मुझ जैसे वज्र मूर्ख पर इतना स्नेह बरसाया। पक्षियों में सबसे नीच, सब प्रकार से अपवित्र, क्या मैं प्रभु के भजन का अधिकारी हूँ? किंतु मुझ जैसे अधम अपवित्र को भी प्रभु ने जगत को पवित्र कर देने वाला प्रसिद्ध कर दिया। और एक सच्चे संत की भांति ही काकभुशुंडी गरुड़ के प्रति आभार प्रकट करते हैं, जिन्होंने उनसे ये अति पवित्र और पतित पावनी कथा पूछी और सुनी। कहते हैं, मैं धन्य हूँ जो श्री राम ने मुझे अपना जाना और आप जैसे साधु की संगति का सुअवसर प्रदान किया। जिनके चरण शिव तथा ब्रह्मा द्वारा पूजे जाते हैं, उनकी दया मुझ जैसे अकिंचन को प्राप्त हुई, ये उस भक्त वत्सल की मृदुलता ही तो है। साधक, सिद्ध, जीवन मुक्त, विरक्त, कवि, विद्वान, कर्मयोगी, सन्यासी, कोई भी भगवत भजन किए बिना भव सागर पार नहीं कर सकता।

अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस गान, मुख्य स्वर था अनूप जलोटा का। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। हम आपको जानकारी दे दें हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों के बारे में, लेकिन इसके पहले कार्यक्रम संबंधी एक सूचना। श्रोताओं, रक्तदान के माध्यम से न सिर्फ जरूरतमंद व्यक्ति की जीवन रक्षा ही की जा सकती है, बल्कि रक्तदाता को भी इससे स्वास्थ्य संबंधी कई फायदे होते हैं। रक्तदान क्यों है महादान, यही है आकाशवाणी दरभंगा के फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी के अगले अंक का विषय। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर संजीव कुमार, इंचार्ज रीजनल ब्लड बैंक DMCH दरभंगा। प्रसारण के दौरान कार्यक्रम से जुड़ने के लिए हमारे फोन नंबर होंगे 06-272-222-481, दूसरा नंबर होगा 9430029353। कार्यक्रम हेलो जिंदगी के प्रसारण का समय याद रखें इस रविवार 14 जून 2026 दिन के 11 बजे। ये सूचना समाप्त हुई और अब आज के मुख्य कार्यक्रमों पर नजर डालें। नमस्कार मिथिला, ये हमारा दैनिक कार्यक्रम होगा अब से थोड़ी देर बाद 7:05 पर। सुनिएगा उर्दू प्रोग्राम अंजुमन 9:10 पर। आज की इसी सभा में इसे हम अपने पटना केंद्र से रिले कर आपको सुनवाएंगे। सुबह 10 बजे का समय फिल्म संगीत का होगा। पूर्वाह्न 11 बजे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में पंडित उस्ताद अलाउद्दीन खान का सरोद वादन आप सुनेंगे। NCERT ये प्रायोजित कार्यक्रम सुनिएगा आज दिन में 11:30 पर। मध्याह्न 12 बजे का समय होगा फिल्म संगीत का। बहनें सुनेंगी नारी संसार कार्यक्रम दोपहर 12:30 पर। पत्रों पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम आपकी फरमाइश दिन में 1:15 पर हमारे श्रोता सुनेंगे। रोजगार सूचनाओं के लिए वक्त होगा दोपहर 2:10 दिन में 2:30 का समय फिल्म संगीत का होगा। 3 बजे का समय शाम 5 बजे का समय होगा कार्यक्रम युववाणी का। डिजिटल इंडिया तकनीक के माध्यम से सशक्त नागरिक, इस विषय पर जानकारी की बातें युववाणी कार्यक्रम में दी जाएंगी। महाकवि विद्यापति की कुछ रचनाएं सुनिएगा शाम 6:15 पर। हमारे ग्रामीण प्रसारण में शाम 6:30 पर गांव घर के अंतर्गत ग्रामीण बच्चों के लिए कार्यक्रम होगा नन्हा मुन्ना राही। बच्चों को जीवन में अनुशासन के महत्व के बारे में जानकारी दी जाएगी। 7 बजे संध्या का समय खेती गृहस्थी का होगा। फसलों में कीट नियंत्रण के बारे में जानकारी दी जाएगी, साथ ही समसामयिक कृषि कार्यों के बारे में भी किसान भाई जानकारी प्राप्त करेंगे। सुनिएगा मैथिली में हमारा कार्यक्रम सिंगरहार शाम 8:15 पर। आज रात 9:30 का समय कार्यक्रम साहित्यिकी का होगा। सूत्रधार होंगे अमलनाथ ठाकुर, प्रस्तुतकर्ता होंगे मितेश कुमार मिश्रा। और आज रात 10 बजे का समय पुराने फिल्मी गानों के फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम का होगा। कार्यक्रम सुनिएगा हेलो आकाशवाणी। अभी आप हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं।

0: तरुण मेनेपल्ली च स्वस्व क्रीडासु पराभूताः इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत का विकास विश्व को लगातार प्रेरित कर रहा है। उन्होंने विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट प्रणालियां अपनाने के महत्व पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में कल नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक में मुख्यमंत्रियों के सुझाव और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ है। केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। ये समझौता नई दिल्ली में कल गृह मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
2: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया भर में जारी संघर्ष क्षेत्रीय सीमाओं से परे व्यापक स्तर पर प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने फिनलैंड में कुल तारंता वार्ता में फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टोनेन और संयुक्त अरब अमीरात की सहायक विदेश मंत्री लाना नुसेबेह के साथ उभरती शक्तियों और नई भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पर हुई चर्चा में ये बात कही। डॉक्टर जयशंकर ने संघर्षों के परिणामों को कम करने और कूटनीति का वातावरण बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सेट्टेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में कल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज किया है। सरकार ने कहा है कि खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति को देखते हुए भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए पूरी सतर्कता बरती जा रही है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने कहा कि प्रभावित क्षेत्र से गुजरने वाले भारतीय और विदेशी ध्वज वाले जहाजों पर कार्यरत सभी भारतीय नाविकों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन की उत्तराखंड यात्रा पर जा रही हैं। इस दौरान राष्ट्रपति देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी के 158वें नियमित पाठ्यक्रम और 141वें तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 2 दिन की स्विट्जरलैंड यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मेलिन और आर्थिक राज्य सचिव हेलेन बुडलिगर आर्टिगा से मुलाकात करेंगे। वे स्विस दवा उद्योग के प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि ये यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी मजबूत करेगी। देश में किसान मित्र नाम से एक व्हाट्सएप आधारित AI सलाहकार सेवा शुरू की गई है। इस सेवा में खरीफ की बुवाई का मौसम शुरू होते ही किसानों को तेलहन की खेती से संबंधित जानकारी सीधे मोबाइल पर दी जाती है। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप आज शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित इस टूर्नामेंट का फाइनल 5 जुलाई को लॉर्ड्स में होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट के पहले मैच में मेजबान मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया है। मैक्सिको ने

0: नौवे और 67वें मिनट में गोल कर मैच जीत लिया। ये टूर्नामेंट 20 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जा रहा है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है, मीडियम वेव 231.5 मीटर, साथ ही न्यूज ऑन AIR ऐप पर आप सुन रहे हैं हमारी आज की पहली सभा के कार्यक्रम। आइए अब सुने हमारा ये दैनिक कार्यक्रम नमस्कार मिथिला।

0: नमस्कार मिथिला, नमस्कार मिथिला सुननिहार समस्त श्रोतागण का आशुतोष कुमार झा जी से स्वागत आ नमस्कार संगे ही नमस्कार संगीता जी।
1: नमस्कार मिथिला और सभी सुधी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशुतोष जी, इस सुबह की बेला में आपको भी मेरा सस्ने नमस्कार।
0: ठीक है कहलो,
1: कार्यक्रम में उपस्थित हैं सबसे पहले सुविचार के साथ।
0: सुविचारक संग
1: आज का सुविचार है नेल्सन मंडेला का, शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि शिक्षा किसी भी व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करती है।
0: ठीक है कहलो,
1: और ये वो हथियार है जो कभी छीनी नहीं जा सकती और जिसके उपयोग से ही हर व्यक्ति का व्यक्तित्व निखरता है।
0: ठीक है कहलो हाँ, शिक्षा सबसे पैघ शक्तिशाली हथियार है। बड़ा नीक अहाँ गप कहलो, यह शिक्षा के महत्व के दर्शाबित है और जिनकर ये कथन छन यानी मंडेला जी का मानना छल जे शिक्षा केवल पढ़नाय लिखनाय सीखवाक माध्यम नहीं है बल्कि ई व्यक्ति के विचार दृष्टिकोण आ व्यक्तित्व के विकास करैत अछि। शिक्षा लोक सब के सही और गलत में अंतर बुझबाक, अपन अधिकार के प्रति जागरूक हेबाक संगहि समाज में सकारात्मक परिवर्तन आनवाक शक्ति सेहो प्रदान करैत अछि।
1: और अब हम शामिल करें आज के इतिहास को। आज है 12 जून, तो 12 जून का जो इतिहास है वो भारत और विश्व के लिए क्यों है खास?
0: की खास है जी, ठीक है।
1: सबसे पहले 1964 में आज ही के दिन दक्षिण अफ्रीका के रंग भेद नीति के खिलाफ जो नेल्सन मंडेला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, और यही वजह थी कि आज हमने इनके सुविचार को शामिल किया।
0: ठीक है कौन?
1: 1975 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के चुनाव को रद्द किया था। 1998 में लिंडा ब्लंट को आधिकारिक तौर पर दुनिया की पहली महिला पादरी के रूप में नियुक्त किया गया। 2002 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO द्वारा पहली बार बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस की शुरुआत की गई। 1787 में अमेरिका में नॉर्थ वेस्ट अध्यादेश पारित हुआ जिसके तहत ओहियो नदी के पूर्वोत्तर क्षेत्र में दावों और दासों पर प्रतिबंध लगाया गया। 1981 में प्रसिद्ध फिल्म रेडर्स ऑफ द लास्ट आर्क सिनेमाघरों में रिलीज हुई। अब आज है 12 जून, तो 12 जून को कुछ प्रसिद्ध लोगों का जो जन्म है हम उसके बारे में चर्चा करें। 1924 में जॉर्ज हर्बर्ट वॉकर वुश, जो अमेरिका के 41वें राष्ट्रपति थे, का जन्म हुआ आज के दिन। 1929 में प्रसिद्ध भारतीय नर्तक और कोरियोग्राफर पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था आज के दिन। 1932 में प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता पी उपेंद्र का जन्म हुआ था आज के दिन। और 1964 में जाने माने हिंदी फिल्म अभिनेता और फिल्म निर्माता साजिद खान का जन्म आज के दिन हुआ।

0: आशुतोषी, आज बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस है।
1: अच्छा, हाँ,
0: यानी बाल श्रम को पूरी तरह से समाप्त करने के उद्देश्य से ये मनाया जाने वाला खास दिन है।
1: खास दिन है, ठीक है कहलूँ हाँ। और अपना सब इतिहास बुझे छी, जे अपना सब का आगू ओ गलती नहीं हुआ जे पहले कह चुकल छी, और संगे ही जे कोनो नीक काज केने छी ओहिमे और केना बेसी नीक हैत एकरा लेल अपना सब प्रयासरत रहे छी।
0: और अब एक खास काम और करते हैं कि कार्यक्रम में हम इस वक्त अपने श्रोताओं को मैथिली सुगम संगीत का आनंद देते हैं।
1: तकर बादे आगू गपशप हेतै तऽ नीक लागत, तऽ सुनी।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: तो जानकी ठाकुर के सुर में अभी हम सुन रहे थे ये प्राती, और बेहद अच्छा लगा सुबह के इस सुहाने मौसम में। और अब समय हो चला है हाल चाल का, सुनते हैं आशुतोष कुमार झा से हाल चाल।
0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
4: सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधि के हलचल हालचालक संग हम आशुतोष कुमार झा जिला के सबटा प्रखंड में आयोजित हैत प्रखंड सहयोग सह जन कल्याण शिविर केंद्र आ राज्य सरकार के योजना सबके लाभ अंतिम सुपात्र व्यक्ति तक पहुँचेने अछि उद्देश्य ई कहना छन डीएम का दरभंगा। जिलाधिकारी दरभंगा कौशल कुमार द्वारा बताओल गेल जे जिला के सबटा प्रखंड और प्रखंड सहयोग सह जन कल्याण शिविर 17 और 18 जून का आयोजित कयल जात। बैसार में शिविर के तैयारी, विभागीय समन्वय और लाभार्थी तक योजना के पहुँच सुनिश्चित करवाक लेल आवश्यक दिशा निर्देश देल गेल। जिला के सबटा प्रखंड में आगामी 17 और 18 जून का प्रखंड सहयोग सहजन कल्याण शिविर का आयोजन हैत। शिविर का आयोजन प्रतिदिन प्रातः 9 बजे से अपराह्न 5 बजे तक हैत। जिलाधिकारी के कहना है जे केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजना सभक लाभ अंतिम सुपात्र व्यक्ति आ लाभार्थी तक सुनिश्चित रूप से पहुँचेबाक उद्देश्य से ई विशेष शिविर का आयोजन कयल जा रहा है। ओ कहलन जे शिविर के माध्यम से पात्र लाभार्थी सबका आवेदन, पंजीकरण, सत्यापन आ योजना सबसे जोड़बाक काज सेहो कयल जात। शिविर में केंद्र और राज्य सरकार के अनेकहूँ महत्वपूर्ण आ जन कल्याणकारी योजना सबसे संबंधित सेवा उपलब्ध कराओल जात, जैमे प्रमुख रूप से आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान वय वंदन कार्ड, सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैमे वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन, पीएम सूर्य घर, मुफ्त बिजली योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, लखपति दीदी, पीएम स्वनिधि योजना, बीबीजीवी रामजी क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान और छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना, संगे ही आन आन जन कल्याणकारी योजना सब शामिल रहत। 12 जून का 26,000 से बेसी LPG गैस सिलेंडर का वितरण का लक्ष्य राखल गेल है। वरीय पदाधिकारी द्वारा 5 गैस एजेंसी सब और 2 आन स्थल के कैल गेल औचक निरीक्षण। जिला में LPG गैस का उपलब्धता और वितरण व्यवस्थित और सुचारू ढंग से एखन जारी है। बुकिंग के अनुरूप 75 गैस एजेंसी के द्वारा गैस आपूर्ति भ रहा है। जिला प्रशासन दरभंगा द्वारा स्पष्ट निर्देश देल गेल है जे LPG गैस बुकिंग प्राप्त हेबाक बाद संबंधित एजेंसी उपभोक्ता के होम डिलीवरी के माध्यम से निर्धारित दर पर गैस सिलेंडर हुनका

0: घर तक पहुँचेनाइ सुनिश्चित करताह। जिला वासीसँ जिला प्रशासन अपील कयलनि जे अपन बेरीके इंतजार करथि, अफवाह पर ध्यान नहि दथि, नियमानुसार सबटा ग्राहकके ससमय सिलेंडर उपलब्ध कराओल जा रहल अछि। राम जानकी मंदिर गोविंदपुर के प्रांगण में आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद भागवत कथा ज्ञान यज्ञ शुभारंभ अत्यंत श्रद्धा भक्ति और वैदिक मंत्रोच्चार के संग संपन्न भेल। कथा का पहल दिन परम पूज्य नटवर नारायण शास्त्री महाराज अपन वचन से श्रद्धालु के धर्म भक्ति और सनातन संस्कृति का महत्व कहलन। विद्यापति सेवा संस्थान और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय का मैथिली विभाग का संयुक्त तत्वाधान में राम जनकवि बाबा यात्री नागार्जुन का 115वां जयंती मनाओल गेल। ए अवसर पर केंद्रीय पुस्तकालय परिसर में स्थापित हुनकर प्रतिमा पर फूल माला अर्पित कर हुनका मून पारल गेल। विश्वविद्यालय मैथिली विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर अरुण कुमार कर्ण कहलनि जे समाज सुधार के दिशा में बाबा यात्री नागार्जुन के भूमिका बहुत बेसी महत्वपूर्ण रहनि। श्रोतागण, एक कार्यक्रम संबंधी सूचना है। रक्तदान के माध्यम से न केवल जरूरतमंद व्यक्ति के जीवन रक्षा कैल जा सकित है, बल्कि रक्तदाता के सेहो ऐसे स्वास्थ्य संबंधी कई एक फायदा भ सके। रक्तदान किया अछि महादान, ई अछि आकाशवाणी दरभंगा का फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी का अगिला अंकक विषय। विशेषज्ञ हेता डॉक्टर संजीव कुमार इंचार्ज रीजनल ब्लड बैंक DMCH दरभंगा। प्रसारण के दौरान कार्यक्रम से जुड़वाक लेल फोन नंबर है 0627222481943002935। कार्यक्रम हेलो जिंदगी का प्रसारण समय श्रोतागण मुन राखी रवि दिन 14 जून दिन का 11 बजे। इछल सूचना संग ही अपना सब आकाशवाणी दरभंगा से खन सुन रहल छी हाल चाल।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
0: श्रोतागण के एक बार फिर स्वागत है हाल चाल में। जिला निर्वाचन पदाधिकारी EVM वेयरहाउस के कलाइन निरीक्षण। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी कौशल कुमार के द्वारा EVM और VVPAT वेयरहाउस का त्रैमासिक निरीक्षण कैल गेल। त्रैमासिक निरीक्षण जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला दंडाधिकारी दरभंगा कौशल कुमार द्वारा और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के उपस्थिति में दरभंगा समाहरणालय परिसर स्थित EVM VVPAT वेयरहाउस के गोदाम स्थित आ राखल गेल EVM का निरीक्षण कैल गेल। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में मिशन शक्ति और मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत महिला सभा का सशक्तिकरण और सुरक्षा हेतु त्रैमासिक बैसार भेल। जिला पदाधिकारी दरभंगा कौशल कुमार की अध्यक्षता में मिशन शक्ति और मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना अंतर्गत संचालित विभिन्न योजना का सफल क्रियान्वयन और अनुश्रवण हेतु जिला स्तरीय समिति का बैसार आयोजित कैल गेल। बैसार में जिला हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ विमेन सखी निवास यानी कि कामकाजी महिला का छात्रावास, वन स्टॉप सेंटर, शक्ति सदन, पालना घर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, सामाजिक पुनर्वास कोष योजना संग ही कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न निवारण अधिनियम संबंधित प्रभावी क्रियान्वयन का समीक्षा सेहो कैल गेल। राजस्व और भूमि सुधार विभाग के भेल विस्तृत समीक्षा बैसार। राजस्व और भूमि सुरक्षा सुधार विभाग बिहार सरकार का समीक्षा के क्रम में राजस्व और भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दरभंगा जिला का संचालित विभिन्न राजस्व संबंधित काज और योजना का विस्तृत समीक्षा कलन। इछल हाल चाल।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
4: और अब मौसम की एक संक्षिप्त जानकारी। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर के अनुसार मौसम शुष्क है। हवा की जो रफ्तार है वह अति मध्यम है और साथ ही साथ आकाश में बादल छाए रहने की संभावना

अधिकतम तापमान 42 डिग्री और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। पटना में अधिकतम तापमान 30.1 और न्यूनतम तापमान 26.2 और दिल्ली में अधिकतम तापमान 42 डिग्री 4 तथा न्यूनतम तापमान 28.8 डिग्री सेल्सियस की संभावना है। दरभंगा में इस वक्त अधिकतम तापमान 39 डिग्री और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।

0: केलौं जे एकाएक तेहन अन्हार भऽ गेल दिनेमे जे बुझायल हमरा जे फेर वएह अंधर तूफान हैत, ताहि दुआरे एकदम सतर्क रहबाक आवश्यकता छै।
1: और अगर आकाश में बादल छाए हुए हैं तो ऐसा नहीं कि हम पानी पीना छोड़ दें, यानी अगर बारिश हो रही है तो पानी की भी उतनी ही जरूरत है, क्योंकि आर्द्रता बने रहने से शुष्क बना रहता है।
0: मुदा हड़बड़ियो नहीं देखेबाक छै जे अहाँ काज के प्रति एते हड़बड़ी दिखाबी जे ठनका कपाड़े पर खसि पड़े, ताहि दुआरे एकदम सतर्क रही। मौसम अहाँ पर नहीं सुनत, वो अपन सुने छे, अहाँ को ओकरा अनुरूप काज करय पड़ै छै। ताहि दुआरे मौसम के
1: आशुतोष जी, हर समय हम चलने से पूर्व एक बार मौसम की जानकारी और आस पास के क्षेत्र में जो बादल लगा हुआ है उसकी एक झलक जरूर देख लें। और अब कार्यक्रम में भी हम आगे बढ़ें, और हमारे कार्यक्रम का तो मौजू ही यही है कि हम बहुत सारी चीज़ों को साथ में लेकर आते हैं।
0: निश्चित रूप से बढ़ेत चलवाक अपना सबक लक्ष्य है। हाँ। और अपना सब आगू
1: हर दिन कुछ चर्चा करते हैं।
0: निश्चित निश्चित
1: चर्चा जरूरी है, क्योंकि हमारे आपके चर्चा से ही हमारे बहुत सारे श्रोता लाभान्वित भी होते हैं और उन्हें चुपचाप सुनने में बहुत आनंद आता है।
0: एक टा बात अहाँ बड़ा नीक कहलौं, हम सब बहुतो रास चीज लऽ कऽ आबै छी, मुदा प्रबंधन जे हम अहीं के देखै छी संजीता जी बहुत बढ़िया,
1: तो समय का प्रबंधन
0: बहुत बेसी आवश्यक है। कतबो पैघ सामग्री सामग्री कतबो रहे, अगर सही प्रबंधन रहै छै तो मनोरंजन या काज आरामदायक भऽ जाइ छै।
1: और आशुतोष जी, हर व्यक्ति को सफल बनाता है समय का प्रबंधन।
0: निश्चित।
1: और किसी भी योजना को यदि हम प्रारूप दे दें तो कार्य के बाद उस योजना से और समय के प्रबंधन से हमें सुनिश्चित सफलता मिलती है।
0: निश्चित रूप से, निश्चित।
1: तो समय बहुत मूल्यवान है, समय को पहचाने।
0: समय जे छे से जीवन के ठीके कहलौं हां, जे मूल्यवान संपत्ति है, एक बेर बीतल समय फिर कखनो वापस नहीं आबैत है, ते दुआरे ओकर सही उपयोग केनाय अत्यंत आवश्यक है। एक बात हम कहूँ, जे समय प्रबंधन जे है एकर अर्थ काज के योजनाबद्ध तरीका से निर्धारित समय के भीतर पूजा करना है, जैसे कि अपना सब घर से बाहर निकले और आई कोनो काज करवाक है, ई नहीं भरि दिन वही में खपा दे, अपना सब कते बजे तक ओहि काज के निर्धारित समय में पूरा कऽ कऽ वापस आबि सकै छी, इहो अपना सब के दक्षता के दर्शाबैत अछि। नहीं,
1: बहुत अच्छी बात कही आपने। और एक चीज हमेशा मानिए कि हर व्यक्ति के लिए 24 घंटे ही होते हैं।
0: निश्चित।
1: अब ये 24 घंटा जो है उसको आप कितने भागों में विभक्त करते हैं हर योजना के लिए, ये आप पर निर्भर करता है। इसका प्रबंधन जितनी कुशलता से आप करेंगे आप उतने सारे कार्य को संपन्न कर पाएंगे।
0: संपन्न कह सकब, एकर अपना सब देख सके छी, जे महान व्यक्ति से अपना सब प्रेरणा ले छी, तो देखियो जे स्वामी विवेकानंद कतेक कम समय में कतेक काज कऽ कऽ चलि गए।
1: और प्राय जो महान व्यक्ति होते हैं और वो अल्पायु भी होते हैं, परंतु वो अल्प समय में बहुत सारे कार्य को कर जाते हैं। और ये सीख देता है कि यदि हमने कार्य को संपन्न कर लिया समय के अनुसार तो हमें पछताना नहीं पड़ेगा।
0: और
1: तो
0: दुरुपयोग से बचे। हाँ, अहाँ के इतिहासो मून राखत, जे सौ समय अगर अहाँ काज केने छी तो इतिहास अहाँ का कखनो बिसरत नहीं है।
1: आशुतोष जी, समय की जो का जो प्रबंधन है वो हमें अपने आप को उत्पादक बनाने में सहयोग करता है, कार्य क्षमता को बढ़ाता है, आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, लक्ष्य को हासिल करने में सफल होता है। और यदि हम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं तो स्वाभाविक है कि हम अपने लिए सबसे बड़े मददगार होते हैं।
0: ठीक है कहलो हाँ। और आजुक जे ई प्रतिस्पर्धी युग है ओहि में सफलता हुनके भेटे छनि जे समय के सम्मान करे छथि, ताहि कारणे प्रत्येक व्यक्ति के समय प्रबंधन का कला सिखवाक चाही, कियाकि यह बेहतर भविष्य, सफलता और समृद्ध जीवन का चाबी है।
1: हर किया गया कार्य जो है वो आपकी गुणवत्ता को बढ़ाता है।
0: निश्चित निश्चित।
1: और कार्य ये तभी हम कर पाते हैं जब हम समय का उचित प्रबंधन कर पाते हैं। तो कार्य करने से पहले समय का प्रबंधन अवश्य करें, और इस वक्त हमें समय के प्रबंधन की एक और जरूरत है कि हम अपने श्रोताओं के मनोरंजन का भी ख्याल
0: रखें, पूरा ध्यान
1: रखें, उन्हें सुनवाएं ये प्यारा सा गीत।
0: सुनल जाए।

0: तो सुहाना सफ़र था और मौसम सच में इसी गाने के लायक था।
1: निश्चित रूप से विविधता से भरल अपना सभक कार्यक्रम, हाँ। निश्चित रूप से श्रोता सभक अनुरूप अपना सब आगू बढ़ रहा है और आशा अपना सबके यह रहित है जे श्रोतागण से हो अपन समय समय पर राय विचार, हाँ। सबके पठवैत रहते न।
0: हम सभी समान होते हैं बहुत सारे क्षेत्रों में, विचारों की समानता नहीं होती है
1: निश्चित,
0: परंतु ये जो विविधता और समानता इन दोनों का जो समायोजन है ये बहुत सुंदर और स्वरूप सुंदर बनाती है।
1: निश्चित निश्चित,
0: क्योंकि समानता का तो अर्थ ही है हर क्षेत्र में समान होना, अधिकार में समान होना, परंतु विविधता का अर्थ है भिन्नता। ये दोनों अलग अलग पहलू है, परंतु जब ये दोनों एक होते हैं तो बड़ा सुंदर स्वरूप बनता है।
1: निश्चित निश्चित, विविधता
0: बहुत सम्मानजनक बनता है।
1: ठीक है कहलो हाँ, आज कहलो हाँ, विविधता इस समाज का समृद्ध बनबैत है, कारण अलग अलग अनुभव आ दृष्टिकोण से नव विचार आ नवाचार उत्पन्न होता है। जखन समानता आ विविधता दोनों संग संग चलित है तखन समाज में भाईचारा सहिष्णुता आ सामाजिक न्याय मजबूत होता है। ऐसा भेदभाव असमानता आ संघर्ष कम होता है आ लोग

0: एक दूसरा का सम्मान करो लागे छे, जेना कि अपना सब मिथिलांचल में देखे छे।
1: देखिए, हम लोग सभी लोग जब माँ के गर्भ से उत्पन्न होते हैं तो एकदम स्वतंत्र होकर आते हैं और अलग अलग रूप में आते हैं। यहाँ तक कि जो दो जुड़वा बच्चे होते हैं वो भी किसी न किसी रूप में अलग हो ही जाते हैं। परंतु अलग अलग रूपों में जब हमारा गुण अलग अलग होता है और उन सब का समावेश होता है तो वह बेहद प्राकृतिक और बेहद सहज लगता है।
0: ठीक है, कहलूंगा तै न अपना सब जे विविधता वाला समाज के अपना सब चर्चा करे छे, ओकर मतलबे भ गेल विभिन्न संस्कृति, भाषा, परंपरा, विचार आ जीवन शैली का स्वीकार करवाक भावना, मतलब किनको प्रति दुराग्रह नहीं हेबाक चाहिए। और उन्हीं अपना सबक देश जे है से विविधता से भरल है न, जत अनेकहू भाषा, धर्म आ संस्कृति के लोग सब रहे छे। एहन स्थिति में समानता आ विविधता का सम्मान राष्ट्रीय एकता आ विकास के लिए बहुत बेसी आवश्यक होता है। ते द्वारे सबक एक दूसरा के भिन्नता का स्वीकार करत अपना सब जे समान अधिकार आ समानता के बात कलूँ हाँ, वही भावना के बढ़ावा देवक प्रयास करवाक चाहिए, जैसे कि एक समरस, मजबूत आ समृद्ध समाज के निर्माण भ सके।
1: आशुतोष जी, ये शिक्षित समाज की आवश्यकता है, क्योंकि हर शिक्षित समाज और सभ्य समाज के निर्माण हेतु समावेशी विविधता और समानता यही सबसे बड़ा आयाम है किसी भी शिक्षित समाज और स्वतंत्र समाज के लिए।
0: ठीक है, कॉलम।
1: क्योंकि स्वतंत्रता और समानता हम तो जानते हैं वो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, हालांकि दोनों का मतलब भिन्न भिन्न है। परंतु इन दोनों के भिन्न मतलब से जो एक सबसे अधिक चीज समावेशी होती है वो वही है विविधता, यानी यही विविधता दोनों स्वतंत्रता और समानता को जोड़ देती है, और तब जो शब्द मिलता है वो हमारा एकीकृत होता है। हम हमेशा कहते हैं इंटीग्रेटेड, यानी एक में बद्ध हो जाना,
0: एक बद्ध भ जाए। ठीक है, कहलो हाँ, समानता आ विविधता एक मजबूत आ सभ्य समाज का आधार है न। समानता से सब व्यक्ति के समान अधिकार, अवसर आ सम्मान भेटत है, जखन कि विविधता जे है वो विभिन्न भाषा, संस्कृति, धर्म आ विचारधारा का सम्मान करवाक आ ओकरा सीखवाक अपना सबका सीख देत है।
1: यानी एकीकृत होने से ही मतलब है समस्त विविधताओं को जोड़ा जाना।
0: जखन समाज में समानता आ विविधता का अपनाओल जात है तखने भाईचारा, सहिष्णुता आ सामाजिक न्याय जे अपना सब गप कलों वो मजबूत होता है, आ ऐसे भेदभाव सेहो कम होते है, आ लोग एक दूसरा का भिन्नता का स्वीकार करे छै एकता में जे अपना सब विविधता ई देख रहल छी, अपना सबके देश, अपना सबके समाज में यह अपना सबके मजबूत आधार है ना।
1: यानी हर संस्कृति को, हर भाषा को, हर लिपि को जब सम्मान मिलता है तो ये समस्त विविधता एक समान हो जाते हैं, और तब जो सुंदर समाज अभिव्यक्त होता है हम उसी में सम्मानजनक जिंदगी जीते हैं।
0: अपना सब जीवे छी, पढ़ुआ काका कहे छलखिन जे जतो कोनो सत्संग हुआ, जतो कोनो दू गोटे नीक गप करित रहत तो ओतो बैस के हुनकर गप सुनी, बुझी आ बाजी कम।
1: यानी आपके वो जो चाचा जी थे वो निश्चित रूप से बहुत शिक्षित होंगे, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति ही समानता और विविधता दोनों को एक समान आंकता है और दोनों को एक समान महत्व देता है।
0: आई अपना सब जे समाज में रह रहल छी, संगीता जी ये हुनके सबक निर्माण कैल छे, और हुनके सबक अनुभव और ज्ञान जे असीम ज्ञान छल, जे कोनो डिग्री में बनल नहीं छल, वो एखनो तक अपना सबके अनुपम जे अखन श्लोक उक्ति सुन रहल छी से दऽ रहल अछि।
1: और जिसको हम लोग कहते थे पहले फकरा,
0: हाँ,
1: मुहावरा,
0: हाँ,
1: वो उनके बातों बातों में आता था, और बातों बातों में वो बहुत दूर की बात।
0: अरे डाक का जे अपना सब कथन सुने छलिए मौसम संबंधी, एक एक टा कथन मिल जाए छो, ना?
1: आज भी जब हमारे पुराने पूर्वज कहते थे कि किस तरफ की हवा है और क्या संकेत है, तो वो आज जो मौसम वैज्ञानिक कहते हैं पछवा और पूर्वा हवा, जब हम उनके मुंह से सुनते थे तो उस हवा की क्या पहचान होती थी वो हम उनसे आज भी
0: बिना घड़ी देखने समय बुझ जाए छलखिन। रात में तड़ेगन दो का देख के समय का निर्धारण
1: अनुमान कर लेते,
0: निश्चित रूप से समय अनुपम छल और ज्ञान हो।
1: हाँ, तो अब समय हो चला है

महात्मा गांधी बचपन से ही सरल, सादगी पसंद और शर्मीले स्वभाव के थे। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में पिता करमचंद गांधी और माता पुतलीबाई के सबसे छोटे पुत्र के रूप में हुआ। इनके पिता को धन जोड़ने का लोभ न था, इसलिए वह अपनी संतान के लिए बहुत थोड़ी संपत्ति छोड़ गए थे। गांधी जी पर अपनी माता का बचपन से ही गहरा प्रभाव पड़ा। सेवा, स्वार्थ त्याग और दूसरों के लिए प्रेम, यह गुण गांधी जी ने अपनी माता से ग्रहण किए थे। गांधी जी का बचपन पोरबंदर में ही बीता। उन्हें किसी पाठशाला में पढ़ने के लिए भेजा गया, परंतु वहां उन्होंने मुश्किल से कुछ पहाड़े ही सीखे। इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि बचपन में उनकी बुद्धि मंद रही होगी। जब गांधी जी के पिता पोरबंदर से राजस्थानिक कोर्ट के सदस्य होकर राजकोट गए, तब गांधी जी की उम्र महज 7 वर्ष थी। राजकोट में उन्हें एक देहाती पाठशाला में भर्ती कराया गया। पोरबंदर की तरह वहां भी गांधी जी को साधारण श्रेणी के विद्यार्थियों में ही गिना जाता था। पाठशाला के बाद 12 वर्ष की उम्र में इन्हें हाई स्कूल में भर्ती कराया गया। अभी गांधी जी हाई स्कूल में ही पढ़ते थे कि महज 13 वर्ष की उम्र में उनका विवाह हो गया। गांधी जी की स्त्री का नाम कस्तूरबा गांधी था। वह पढ़ी लिखी नहीं थी। वह स्वभाव से सीधी, स्वतंत्र, मेहनती और कम बोलने वाली स्त्री थी। जब गांधी जी के पिता का देहांत हुआ, तब उनकी उम्र 16 वर्ष की थी। गांधी जी ने 6 वर्ष से लेकर 16 वर्ष तक की शिक्षा ग्रहण की, परंतु उन्हें पाठशाला में कभी धर्म की शिक्षा नहीं मिली। वैष्णव संप्रदाय में जन्म होने के कारण उन्हें वैष्णव मंदिर जाने का मौका मिला करता, परंतु उन्हें मंदिर का वैभव अरुचिकर लगता था। 1887 में गांधी जी ने अपनी माध्यमिक शिक्षा पूर्ण की। गांधी जी के घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, अतः बड़ों की इच्छा से आगे की पढ़ाई के लिए कम खर्ची के ख्याल से गांधी जी ने भावनगर के श्यामलदास कॉलेज में पढ़ने का निश्चय किया। वहां उन्हें सब कुछ मुश्किल लगा। अध्यापकों द्वारा दिए गए व्याख्यान उन्हें समझ नहीं आते थे। इसमें अध्यापकों का कोई दोष न था, बल्कि गांधी जी ही पढ़ाई में कमजोर थे। भावनगर कॉलेज में अपना पहला सत्र पूरा करके गांधी जी घर आए। एक दिन गांधी के पुराने पारिवारिक मित्र और सलाहकार, व्यवहार कुशल ब्राह्मण भावजी दवे उनके घर आए। उन्होंने कहा कि करमचंद गांधी उर्फ कबा गांधी की गद्दी लेने के लिए भाइयों में से किसी का बिलायत जाकर शिक्षा ग्रहण करना आवश्यक है, इससे परिवार पुनः सम्मानित होगा। जब उन्होंने गांधी जी से इस विषय में उनकी राय जाननी चाही, तो गांधी जी को उनका विचार बहुत पसंद आया और खुद बिलायत जाने की हामी भर दी। उस वक्त गांधी जी की उम्र केवल 19 वर्ष थी। 4 सितंबर 1888 को गांधी जी ने बंबई छोड़ा। गांधी जी के साथ राजकोट के एक वकील, जिनका नाम मजूमदार था, भी बिलायत बैरिस्टर होने जा रहे थे। गांधी जी अपनी यात्रा पूरी करके साउदम्पटन आ पहुंचे। गांधी जी के पास 4 परिचय पत्र थे। एक डॉक्टर प्राण जीवन मेहता के नाम, दूसरा दलपत राय शुक्ल के नाम, तीसरा प्रिंस रणजीत सिंह जी के नाम और चौथा दादा भाई नौरोजी के नाम। साउदम्पटन से ही गांधी जी ने डॉक्टर मेहता को तार देकर बुला लिया था। वह आए और उन्होंने प्रेमपूर्ण विनोद किया, और यहीं से गांधी जी की यूरोपियन रीति रिवाज की शिक्षा का आरंभ हुआ। डॉक्टर मेहता ने गांधी जी को बताया कि होटल में रहने पर खर्च अधिक होगा, अतः किसी निजी परिवार के साथ ही रहना उचित होगा। डॉक्टर मेहता और दलपत राय शुक्ल ने वेस्ट कैसिंगटन में एक एंग्लो इंडियन घर खोज निकाला और गांधी जी की वहां रहने की व्यवस्था

0: व्यवस्था कर दी, परंतु वहां भी गांधी जी के भोजन की समस्या खड़ी हो गई। गांधी जी को बिना मिर्च मसाले का साग पसंद नहीं आता था। घर की मालकिन सुबह जई का दलिया बनाती, जिससे उस समय तो गांधी जी का पेट भर जाता, लेकिन दोपहर और शाम को उनको भूखा ही रहना पड़ता। उनके मित्र उनको समझाते कि मांसाहार में कोई दोष नहीं है, परंतु गांधी जी उनकी एक न सुनते। गांधी जी ने अपना भोजन खुद पकाने का निश्चय किया और साल्ट की लिखी अन्नाहार की हिमायत नाम की पुस्तक एक शिलिंग देकर खरीद ली। अब गांधी जी ने सभ्यों के लक्षण प्राप्त करने का निश्चय किया, इसलिए उन्होंने अंग्रेजी सभ्यता सीखनी शुरू की। सबसे पहले गांधी जी ने आर्मी और नेवी स्टोर में सभ्य सूट बनवाए, लेकिन केवल सभ्य सूट पहन लेने से ही कोई सभ्य थोड़े ही हो जाता है। अतः गांधी जी ने कुछ ज्येष्ठ व्यक्तियों से लंदन के आचरण तथा इंग्लिश समाज के आचरण के बारे में जो प्रथाएं प्रचलित थीं, उन सब की जानकारी प्राप्त की। गांधी जी ने फ्रेंच भाषा सीखी, नृत्य करना और सार्वजनिक भाषण की कला सीखने का भी प्रयास किया, लेकिन वह नृत्य कला नहीं सीख पाए। भाषण कला सीखने के लिए उन्होंने बेल का लिखा स्टैंडर्ड एलोक्यूशनिस्ट खरीदा और पिट का भाषण शुरू किया। इन्हीं बेल साहब ने गांधी जी को उचित राह दिखाई। उन्होंने गांधी जी से कहा कि वे यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आए हैं, इंग्लैंड में जिंदगी बिताने नहीं। नाच नाच कर कोई सभ्य नहीं बन सकता, मनुष्य अपने सदाचार से ही सभ्य समझा जा सकता है। इन बातों का गांधी जी पर बहुत असर हुआ और उन्होंने सभ्य बनने की ललक छोड़कर सादगी का जीवन व्यतीत करने का निश्चय किया। गांधी जी अब वास्तव में विद्यार्थी बन गए। और अब प्रस्तुत है गांधी जी के बारे में अमरेश्वरी चरण सिन्हा के विचार।
1: महात्मा गांधी ने संपूर्ण जीवन में साधन और साध्य की शुद्धता और पवित्रता, एकरूपता पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया था। उसका मूल उद्देश्य यह था, जब तक जीवन में सत्य प्रेम करुणा पर आधारित संघर्ष मनुष्य के अंतर क्षेत्र में नहीं होगा, तब तक बहिर्मुखी स्वरूप में उभर कर नहीं आएगा। वह प्राणियों में ईश्वर का वास देखते थे। यही कारण था कि मूर्ति प्रथा के वह समर्थक तो नहीं थे, लेकिन विरोधी भी कहे नहीं गए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि उनके लिए प्राणियों की सेवा, प्राणियों में व्याप्त ईश्वर को देखना, समझना और उसकी सेवा करना जीवन का एक लक्ष्य है। आज जब हम गांधी को एक व्यक्तित्व के रूप में देखते हैं, तो उसमें बहुआयामी प्रतिभा झलकती है। इसलिए गांधी को समझने और गांधी को जानने की आवश्यकता आज के दौर में बढ़ जाती है, क्योंकि आज हमारे बीच नैतिक और चारित्रिक बल, जो हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति की सबसे बड़ी पूंजी थी, उसकी कमी आई है। और गांधी ने सबसे अधिक नैतिक और चारित्रिक बल को दिया था। हमारे जीवन में यदि उसका ह्रास होता है, तो संपूर्ण वांग्मय गांधी का जो है वह प्रभावित होता है। जब हम महात्मा गांधी के जीवन और उनके कर्म पर विचार करते हैं, तो उसमें एक आध्यात्मिक शक्ति हमें नजर आती, क्योंकि उन्होंने संपूर्ण अपने संघर्ष में सिर्फ प्रयोग किया है, और प्रयोग इस रूप में किया है कि उन्होंने यह नहीं कहा कि आप ऐसा करो, आप वैसा करो। उन्होंने सिर्फ यह किया कि उन्होंने अपने कर्म के माध्यम से हमें प्रेरित किया। आज जब स्वयं में परिवर्तित स्वरूप स्थापित करते हुए बहिर्मुखी रूप में प्रकाश पुंज को दूसरों तक पहुंचाने की आवश्यकता है, तो महात्मा गांधी के किए गए प्रयास, उनके सत्य के प्रति निष्ठा, प्रेम पूर्वक किसी भी विषय को लोगों तक पहुंचाने की दृढ़ इच्छा शक्ति हमारे लिए प्रेरणादायी और हमें एक मार्ग दिखलाने में सक्षम हो रहा है। उसे आज सबसे ज्यादा समझने की जरूरत है।
0: अभी आप गांधी जी के बारे में अमरेश्वरी चरण सिन्हा के विचार सुन रहे थे। गांधी कथा में आज इतना ही।

0: तो गांधी कथा हम सुन रहे थे और गांधी जी की बातें कितनी समसामयिकी लगती हैं।
1: निश्चित रूप से
0: ऐसा लगता है
1: अगर अपना सब अपन जीवन में
0: हाँ
1: अगर उतारे छी तो निश्चित रूप से अपनों सब अपन देश के लिए किछ न किछ कह सकब।
0: और समाज और व्यक्ति से जुड़ी भी जो उनकी बातें हैं वो ऐसा लगता है कि जो हमारे अनुभव से गुजर रहा है।
1: ठीक है कह लो।
0: इसलिए गांधी कथा हमें लगता है कि सभी श्रोताओं को बेहद अच्छा लगता होगा।
1: निश्चित रूप से।
0: और अब अच्छा और लगेगा जब हम इसके बाद गीत का आनंद देते हैं।
1: तो सुनल जाए सुंदर संगीत।

0: आशुतोष जी, ये प्यार और स्नेह मोहब्बत ही है जो हमें विश्व शांति की ओर ले जाता है
1: और एक दूसरा से जुड़ कर रहवा अपना सबका मदद देता है।
0: तो यही था हमारे महान व्यक्तियों का विचार जिसमें हमारे राष्ट्रपिता भी आते हैं।
1: ठीक है, कॉलम है।
0: तो बातों बातों में अब हमारे कार्यक्रम की समय सीमा समाप्त हो रही है। हम इसी तरीके से प्रेम, स्वभाव, सौहार्द और शांति को लेकर आगे बढ़ें और हमारे कार्यक्रम का यही एक मूल उद्देश्य है कि हम कैसे जन जागरूकता को बढ़ाएं और हर व्यक्ति से प्रेम सौहार्द को लेकर के अपने कार्यक्रम का स्वरूप और बढ़िया बनाएं।
1: और आप समय भोग विदा ली श्रोतागण से,
0: आज के इस कार्यक्रम से हमें दीजिए इजाजत।
1: नमस्कार मिथिला।

नमस्कार मिथिला, हमारे श्रोता सुन रहे थे हमारा ये दैनिक कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है।

घर घर केरवाणी आकाशवाणी हृदय हृदय केरवाणी आकाशवाणी आ हृदय सबके जोड़बा लेल हम आबि रहल छी। एक ही क्लिक पर हमारे स्टेशंस लाइव मनक बात संगीत ड्रामा स्पोर्ट्स क्षण क्षण केर विश्वसनीय खबर हमर सबक वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर नव भारत नव आकाशवाणी।

0: जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी रविवार दिन में 11 बजे।
1: इस रविवार दिन में 11 बजे आप सुनिएगा हेलो जिंदगी। विषय होगा रक्तदान क्यों है महादान। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर संजीव कुमार, इंचार्ज रीजनल ब्लड बैंक DMCH दरभंगा। श्रोताओं, कार्यक्रम का प्रसारण समय याद रखें, रविवार 14 जून 2026 दिन के 11 बजे।

0: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। सुबह के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप समाचार सुनेंगे। समाचारों के लिए कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी

0: से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए एआई का उपयोग करने के बढ़ते खतरे की चेतावनी जारी की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने वर्तमान संघर्षों के बीच आपूर्ति श्रृंखलाओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति वार्ता का हवाला देते हुए ईरान पर नए सैन्य हमले रोके। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में आज इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से और फीफा फुटबॉल विश्व कप के आरंभिक मैच में मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। गृह मंत्री अमित शाह, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में कल सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। श्री शाह ने कहा कि एक ऐतिहासिक क्षण है, इससे देश में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज की संभावनाएं और बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि समझौते से हमारी विदेशों पर निर्भरता कम हो जाएगी।
1: अब सिर्फ एक एमओयू से ही 1,000 से 1,500 बैरल प्रतिदिन जो दोहन की हमारी क्षमता है उसको 10 गुना से ज्यादा हम बढ़ा पाएंगे और एक ही फील्ड में 15,000 करोड़ से ज्यादा रिकवरी के संभावनाएं हैं। परंतु पूरे नागालैंड के अंदर ऑयल और गैस जितना भी पड़ा है इसका उत्खनन होगा तो मुझे लगता है कि हमारी जो कमी है इस क्षेत्र में हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है, वो निर्भरता काफी हद तक हम पूरी कर पाएंगे।
0: गृह मंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना दर्शाता है।
1: हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
0: नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने इस समझौते को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए श्री रियो ने कहा कि पूर्वोत्तर में शांति, स्थिरता और विकास के प्रति केंद्र की प्रतिबद्धता ने इस समझौते को संभव बनाया है। उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और असम सरकार को उनके सहयोग और सद्भावना के लिए धन्यवाद दिया। केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरों के बारे में चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
2: केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरे के बारे में चेतावनी जारी की है। गृह मंत्रालय के अधीन भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की ओर से जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी डीप फेक वीडियो और कृत्रिम पहचान बनाने के लिए एआई का तेजी से उपयोग कर रहे हैं। इन तकनीकों का दुरुपयोग चेहरे की पहचान, जीवंतता, सत्यापन, वीडियो केवाईसी प्रक्रियाओं, खातों को दोबारा सक्रिय करने की प्रणालियों और वित्तीय तथा डिजिटल सेवाओं तक पहुंच बनाने के लिए किया जा रहा है। सरकार ने फिनटेक कंपनियों सहित वित्तीय संस्थाओं को डीप फेक का पता लगाने, प्रणाली मजबूत करने और ग्राहक ऑनबोर्डिंग तरीकों को बेहतर बनाने की सलाह दी है। लोगों से यह भी आग्रह किया गया है कि वे अपने बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखें। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और विविध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनयिक प्रयासों और अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में कुल तारंता वार्ता में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का प्रभाव उन क्षेत्रों से भी आगे बढ़ता है जहां वे घटित होते हैं। ऊर्जा सुरक्षा के विषय में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत के ऊर्जा संबंधी निर्णय राष्ट्रीय हित से प्रेरित हैं और खरीद सामर्थ्य और उपलब्धता को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं।
3: We signed this year a free trade agreement with Europe.
4: हमने यूरोप के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हमने यूरोप के साथ सुरक्षा और रक्षा साझेदारी भी की है। साथ ही हमारे पास यूरोप के साथ टैलेंट मोबिलिटी एग्रीमेंट की एक रूपरेखा भी है। इसीलिए मुझे लगता है कि रक्षा उद्योग, खासकर स्मार्ट सेक्टर में आपसी सहयोग के रास्ते

0: तलाशेंगे और देखेंगे क्या ऐसी कोई साझेदारी बन सकती है जो कारगर साबित हो।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश में आज एक भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सवेरे लखनऊ में और शाम को वाराणसी में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि होंगे। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम विदेश नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार के उठाए गए कदमों पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
2: पिछले 12 वर्षों में भारत अपनी साहसिक पहलों के दम पर एक मजबूत ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। इन पहलों में बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का जज्बा और काम करने की लगन दोनों शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन कोशिशों को जिम्मेदारी और सबको साथ लेकर चलने की भावना से जोड़ा गया है, जिससे भारत की आवाज पूरी दुनिया में गूंज रही है। भारत ने इंडिया फर्स्ट के सिद्धांत को सबसे ऊपर रखते हुए अपनी विदेश नीति में नई ऊर्जा भरी है, पुराने रिश्तों को मजबूत किया है और नए दोस्त भी बनाए हैं। दुनिया भर में भारत के जुड़ाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य है। 2025 में श्रीलंका के पूर्वी तट पर चक्रवात दित्वा टकराया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े होकर भारत ने उन्हें तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इस बचाव और राहत कार्य में भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और आपदा प्रतिक्रिया के दलों ने मिलकर काम किया। भारत ने श्रीलंका को हर तरह की मदद दी। पानी साफ करने वाली किट, दवाएं व सर्जिकल उपकरण और 60 टन विशेष मशीनें शामिल थी। भारतीय नौसेना के जहाजों ने तमिलनाडु से 1000 टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 264 लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित निकाला और 50 टन सामग्री एयरलिफ्ट की। इसके अलावा वहां फंसे 2500 से ज्यादा भारतीयों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। चक्रवात दित्वा के बाद प्रभावित इलाकों में रास्तों को फिर से जोड़ने और मजबूत करने के लिए भारत ने 14 लोहे के अस्थायी पुल भेजे। भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए श्रीलंका के बंदरगाह और नागर विमानन उप मंत्री जनित रवान कोदितवक्कू ने कहा कि भारत ने श्रीलंका के लोगों के प्रति प्यार और अपनापन दिखाया है। बाइट, भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता कोविड महामारी के दौरान देखने को मिली। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की, जो इंसानों को ध्यान में रखकर की गई भारत की कूटनीति का एक बड़ा उदाहरण है। जनवरी 2021 से भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज सप्लाई की है। इसमें 50 से ज्यादा देशों को तोहफे में दी गई और कोवैक्स पहल के जरिए दी गई डोज शामिल है। वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने अपनी पड़ोसी प्रथम नीति के अंतर्गत अपने पड़ोसी देशों को सबसे आगे रखा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बांग्लादेश के रहने वाले फिजियोथेरेपिस्ट और योग शिक्षक डॉक्टर ज्योतिष को विश्वास ने कहा,
3: इंडिया जो किया हमारे लिए वैक्सीन, वो टाइम पे फास्ट रिस्पॉन्स किया और भेज दिया, हम भी वो वैक्सीन लिया तो हमारे भी बहुत अच्छा हुआ। हमारा रिलेटिव्स और देशवासी को लिए वो एक बहुत अच्छा तोहफा था इंडिया से, तो इसलिए हम बहुत कृतज्ञ हूँ।
2: पिछले 12 वर्षों में वैक्सीन मैत्री, ऑपरेशन सागर बंधु जैसी पहलों के जरिए भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में आगे आया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन के दौरे पर उत्तराखंड जाएंगे। वे आज देहरादून में राष्ट्रपति निकेतन पहुंचेंगी। उत्तराखंड प्रवास के दौरान वे 132 एकड़ क्षेत्र में बन रहे राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 2 दिन की स्विट्जरलैंड यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मोलिन और आर्थिक राज्य सचिव हेलेन बुडलिगर आर्टिडा से मुलाकात करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी मजबूत करेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर नए सैन्य हमले रोक दिए हैं। इससे पहले ट्रंप ने धमकी दी थी कि ईरान के तेल उद्योग पर कब्जा कर

0: के युद्ध और बढ़ाया जाएगा। श्री ट्रंप ने ईरान के उच्च स्तरीय नेतृत्व के साथ हुई बातचीत में प्रगति को इस बदलाव का कारण बताया है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि युद्ध विराम को बढ़ाने के लिए चल रही वार्ता में भी प्रगति हुई है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले मैच में मेजबान मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया है। मेक्सिको ने 9वें और 67वें मिनट में गोल कर मैच जीत लिया। ये टूर्नामेंट 20 जुलाई तक अमरीका, कनाडा और मेक्सिको में संयुक्त रूप से खेला जाएगा। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप आज शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित इस टूर्नामेंट का फाइनल 5 जुलाई को लॉर्ड्स में होगा। भारतीय टीम 14 जून को पाकिस्तान के साथ अपना अभियान शुरू करेगी। टूर्नामेंट में पहली बार 12 टीम हिस्सा ले रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा हो सकती है। देश के पूर्वोत्तर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने दिल्ली और NCR के कई स्थानों पर आज गरज चमक के साथ वर्षा का भी अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक की खबर सभी अखबारों में है। दैनिक जागरण के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राज्यों के विकास के बिना विकसित भारत का निर्माण संभव नहीं। नवभारत टाइम्स के अनुसार पीएम ने कहा, भारत तेजी से तरक्की की राह पर। बैठक में पीएम ने दिया विकसित भारत का रोड मैप। हिंदुस्तान की सुर्खी है, 4 दिन में भारतीय क्रू वाला तीसरा पोत तबाह। हॉर्मुज में हुए हमले में सभी सुरक्षित, बुधवार को लापता नाविकों के शव मिले। पत्र ने भारतीयों की चिंता शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, पश्चिम एशिया में फिर तनाव फैलने और युद्ध भड़कने पर भारत पर सीधी आंच आई है। ये पश्चिम एशिया में टकराव का नया और खतरनाक मोड़ है। युद्ध रोकने के लिए वार्ता जारी थी, पर शीघ्र वार्ता के लिए अमेरिका का युद्ध छेड़ना अतार्किक है। जनसत्ता की सुर्खी है, तृणमूल से एक और इस्तीफा, कल्याण के बगावती तेवर। पत्र ने राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के मामले में सुर्खी दी है, मीनाक्षी नटराजन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। पंजाब केसरी ने सर्वोच्च न्यायालय के हवाले से लिखा है, गृहिणियां हैं राष्ट्र की निर्माता, परिवार की नींव मजबूत करती हैं, उनके काम की कीमत हर महीने 30,000 रुपए होनी चाहिए। नवभारत टाइम्स ने इसी मामले पर खबर संपादकीय में लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने सड़क दुर्घटना मामले में कहा, इसका जितना व्यापक कानूनी असर है उतना ही सामाजिक। अदालत ने राष्ट्र निर्माण में घरेलू काम और जिम्मेदारियों के महत्व को स्वीकारा है। ये फैसला उस सोच पर प्रहार है जिसके अनुसार घर का काम कोई मायने नहीं रखता। दैनिक भास्कर ने विशेष रिपोर्ट में दिया है, आंखों से देख नहीं सकती थी मासूम, आवाज से पहचान लिए 3 दरिंदे, दुष्कर्म केस में आरोपियों की जमानत याचिका रद्द। पंजाब और हरियाणा कोर्ट में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और अपीली अदालत का फैसला बरकरार। लोकसत्य का शीर्षक है, दिल्ली NCR में ऑरेंज अलर्ट, आंधी और बारिश की संभावना। हवा के कारण तापमान में 6 से 7 डिग्री तक की गिरावट हो सकती है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए AI का उपयोग करने के बढ़ते खतरे की चेतावनी जारी की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने वर्तमान संघर्षों के बीच आपूर्ति श्रृंखलाओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति वार्ता का हवाला देते हुए ईरान पर सैन्य हमले रोके। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में आज इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से और फीफा फुटबॉल विश्व कप के आरंभिक मैच में मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Verma. The headlines. Center signs historic tripartite MOU with Assam and Nagaland governments for exploration and production of crude oil and natural gas in the two states. Government issues advisory about growing threat of cyber criminals using artificial

0: के लिए बातचीत में पेशरफ्त का हवाला देते हुए ईरान पर नए फौजी हमले मंसूख कर दिए हैं। बर्मिंघम में आज ख्वातीन के आईसीसी टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के पहले मैच में मेज़बान इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से होगा। और फुटबॉल में फीफा वर्ल्ड कप 2026 के पहले मैच में मेक्सिको ने जनूबी अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। एक अहम वाक़े में मरकज़ ने आसाम और नागालैंड में खाम तेल और कुदरती गैस की तलाश और पैदावार के लिए दोनों रियासतों की सरकारों के साथ तारीखी सहफरीकी मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, पेट्रोलियम के वजीर हरदीप सिंह पुरी, आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा सरमा और नागालैंड के वजीर आला नेफ्यू रियो की मौजूदगी में इस मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए गए। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब अमित शाह ने कहा कि मज़कूरा मुफाहमत नामे पर दस्तखत एक तारीखी लम्हा है और इससे मुल्क में तेल और कुदरती गैस की तलाश के इम्कानात में इजाफा होगा।
1: अब सिर्फ एक एमओयू से ही 1000 से 1500 बैरल प्रतिदिन जो दोहन की हमारी क्षमता है उसको 10 गुना से ज्यादा हम बढ़ा पाएंगे और एक ही फील्ड में 15,000 करोड़ से ज्यादा रिकवरी के संभावनाएं हैं। परंतु पूरे नागालैंड के अंदर ऑयल और गैस जितना भी पड़ा है इसका उत्खनन होगा तो मुझे लगता है कि हमारी जो कमी है इस क्षेत्र में हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है वो निर्भरता काफी हद तक हम पूरी कर पाएंगे।
0: आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि आसाम और नागालैंड के दरमियान सरहद का मामला तवील अरसे से तस्फिया तलब है और इसकी वजह से खित्ते में मौजूद कुदरती वसाइल को मुल्क के लिए बरूए कार नहीं लाया जा सका है। नागालैंड के वजीर आला नेफ्यूरियो ने भी सहफरीकी मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए जाने को एक तारीखी संगे मील से ताबीर किया। मरकज ने साइबर मुजरिमों की तरफ से इस बढ़ते हुए खतरे के बारे में एडवाइजरी जारी की है कि वो सिक्योरिटी निज़ाम से बचते हुए माली बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए मस्नूई ज़हानत का इस्तेमाल कर रहे हैं। उमूर दाखिला की वजारत के तहत भारतीय साइबर जराइम तालमेल मरकज की तरफ से जारी की गई एडवाइजरी के मुताबिक साइबर मुजरिम डीप फेक वीडियो और मस्नूई शनाख्त तैयार करने के लिए AI का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
2: मस्कुरा एडवाइजरी में इस बात को उजागर किया गया है कि धोखा दही करने वाले अफराद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, मुलाजमत से मुतालिक पोर्टल, डेटिंग प्लेटफॉर्म्स या फोन कॉल्स के जरिए राबते कायम करते हैं। ये अनासर लोगों के चेहरे से मुतालिक डाटा इकट्ठा करते हैं और कभी कभी वो इसके लिए लोगों को पलक झपकाने, घूम कर देखने या कैमरे पर बोलने जैसे काम करने पर राजी कर लेते हैं। सरकार ने फिनटेक कंपनियों समेत माली इदारों को यह सलाह दी है कि वो डीप फेक का पता लगाने के तरीक़ेकार को मुस्तहकम बनाएं और सार्फीन को शामिल करने के निज़ाम को वसत दें। लोगों से भी जोर देकर ये कहा गया है कि वो अपना बायोमेट्रिक डेटा महफूज रखें, लॉगिन करने की मशकूक कोशिशों से चौकस रहें और माली सरगर्मियों से मुतालिक ईमेल या SMS नोटिफिकेशन पर बाकायदगी से नज़र रखें। शहरियों को ये सलाह भी दी गई है कि वो कौमी साइबर जराइम रिपोर्टिंग पोर्टल के जरिए किसी भी तरह के मुश्तबा माली लेन देन की इत्तला बिला ताखीर दें। दिल्ली से प्रिया मोंडल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
0: वजीर खारजा एस जयशंकर ने मौजूदा वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने मौजूदा महाज़ाराई और टकराव के असरात से निमटने के लिए मजबूत और मुतनव्वे सप्लाई निज़ाम, पायदार सफारती कोशिशों और बैन अल-अक़वामी इश्तराक में इजाफे की ज़रूरत पर ज़ोर दिया है। फिनलैंड में उभरती हुई ताकतों और नए जुग्राफियाई और सियासी मुकाबले के मौजू पर एक मुबाहसे में इजहार ख्याल करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि टकराव और लड़ाई के

0: ने कहा कि ईरान के साथ जंग के खात्मे के लिए समझौता करीब करीब मुकम्मल हो गया है और यूरोप में ख़त्म हफ्ता पर इस समझौते पर दस्तखत किए जाने की उम्मीद है। सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस में ओवल ऑफिस में ये बात कही। ख्वातीन का 10वां ICC T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप आज बर्मिंघम में एजबस्टन में शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट के पहले मैच में मेज़बान इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से होगा। एक माह तवील टूर्नामेंट की मेज़बानी इंग्लैंड और वेल्स कर रहे हैं। टूर्नामेंट का फाइनल 5 जुलाई को लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा। भारतीय ख्वातीन इतवार को रिवायती हरीफ पाकिस्तान के खिलाफ मैच से अपनी मुहिम का आगाज करेंगी। हरमनप्रीत कौर की जेर कमान भारतीय टीम ख्वातीन का अपना पहला T20 वर्ल्ड कप टाइटल जीतने के इरादे के साथ मैदान में उतरेगी। फीफा वर्ल्ड कप 2026 कल रात शानदार इफ्तिताही तकरीब के साथ मैक्सिको सिटी में शुरू हुआ है। पहले मैच में मैक्सिको ने जनूबी अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया। खेल के 9वें मिनट में जूलियन क्विनोन्स ने मैक्सिको के लिए पहला गोल किया। बाद में राउल जेमेनेज ने 67वें मिनट में गोल करके स्कोर मैक्सिको के हक में 2-0 कर दिया। इससे कबल फीफा वर्ल्ड कप की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब में आलमी मौसीकी और सकाफत की झलक पेश की गई, जिसमें शाकिरा और बर्नाबॉय ने शायकीन को मशहूर कर दिया। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज दिल्ली कौमी राजधानी खत्ते में कई मकामात पर गरज चमक के साथ औसत बारिश होने की पेशगोई की है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान के कुछ हिस्सों, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी इसी तरह का मौसम रहने का इम्कान है। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं शमीम इरफान।
1: शुक्रिया फहीम। आज के बेशतर उर्दू अखबारात की शह सुर्खियां एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अखबार प्रताप ने नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल से वजीर आजम के खिताब को अपनी शह सुर्खी बनाते हुए लिखा है, पीएम मोदी ने रियासतों को विकसित भारत 2047 के लिए दिया मास्टर प्लान। अमरीका के भारतीय जहाज पर हमले में अमले के 3 अहलकारों की हलाकत के बाद भारत ने अमरीकी नाजमुल उमूर को तलब किया। ये खबर भी अखबारों ने नुमाया तौर पर शाये की है। अखबार इनकलाब की शह सुर्खी है, राज्यसभा इंतखाबात में मध्य प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक से 14 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। अखबार की एक और सुर्खी है, 4 दिन में TMC के 4 राज्यसभा मेंबरों ने पार्लियामेंट ने दिया इस्तीफा। अखबार प्रताप की एक और नुमाया खबर है, फौज के सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने 6 साबिक फौजियों को शानदार खिदमात के लिए एजाज से नवाजा।
0: आखिर में खास खबरें एक बार फिर। मरकज ने आसाम और नागालैंड में खाम तेल और कुदरती गैस की तलाश और पैदावार के लिए दोनों रियासतों की सरकारों के साथ तारीखी सह फरीकी मुफाहमत नामे पर दस्तखत किए हैं। सरकार ने सिक्योरिटी निज़ाम से बचने और माली बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने की खातिर मसनूई ज़हानत का इस्तेमाल करने के साइबर मुजरिमों के बढ़ते हुए ख़तरे के तनाजुर में एडवाइजरी जारी की है। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने मौजूदा महाजाराई के दौर में मतनव्वे सप्लाई निज़ाम और बैनुल अक़वामी इश्तराक में इजाफे पर ज़ोर दिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंग के खात्मे के लिए बातचीत में पेशरफ्त का हवाला देते हुए ईरान पर नए फौजी हमले मनसूख कर दिए हैं। बर्मिंघम में आज ख्वातीन के ICC T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के पहले मैच में मेज़बान इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से होगा। इसके साथ ही ये खबरनामा ख़त्म हुआ।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह के ठीक 8 बजकर
3: मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
4: जिस ऊंचाई पर तिरंगा होता है वहाँ लापरवाही नहीं पहुँचनी चाहिए। भारतीय ध्वज न सजावट है, न परिधान और न प्रचार का माध्यम।
5: भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार तिरंगे का आकार, रंग और स्वरूप पूरी गरिमा के अनुरूप होना चाहिए। फटा, गंदा या क्षतिग्रस्त ध्वज कभी नहीं फहराया जाना चाहिए।

0: और याद रखिए, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत कानूनी अपराध है। ये नियम डराने के लिए नहीं, सम्मान सिखाने के लिए है।
1: क्योंकि तिरंगे का सम्मान देश का सम्मान। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: बाढ़ से बचने के उपाय। आपातकालीन किट हमेशा अपने पास रखें, जिसमें एक छोटी रेडियो, टॉर्च, बैटरी, मजबूत रस्सी, माचिस, मोमबत्ती, पानी, सूखा भोजन, खाद्य सामग्री आदि साथ हो। घर के सभी सदस्यों को नजदीकी सुरक्षित आश्रय का पता हो। बच्चों को बाढ़ के पानी में खेलने से रोकें। सांपों एवं अन्य जहरीले जंतुओं से बचकर रहें। चेतावनी व सुझाव के लिए रेडियो सुने या टीवी देखें। अफवाह पर ध्यान न दें और न ही घबराएं। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप समी अहमद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने केंद्र सरकार से जल जीवन मिशन के लिए 18,000 करोड़ रुपए समेत कई परियोजनाओं की मांग की। सिपाही भर्ती परीक्षा में धांधली मामले में पुलिस ने 563 अभ्यर्थियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की, 10 की हुई गिरफ्तारी। केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों और वित्तीय बुनियादी ढांचे पर बढ़ते खतरे को लेकर चेतावनी जारी की। और किशनगंज समेत प्रदेश के 6 जिलों में मॉनसून की दस्तक। मौसम विभाग ने आज राज्य के अधिकतर हिस्सों में बारिश की जताई संभावना। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने केंद्र सरकार से जल जीवन मिशन के सफल क्रियान्वयन के लिए 18,000 करोड़ रुपये की मांग की है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक में श्री चौधरी ने यह आग्रह किया। उन्होंने हर घर नल का जल योजना के मद में खर्च की गई राशि के केंद्रांश के रूप में 13,000 करोड़ रुपये और वर्तमान में चल रही योजनाओं के लिए 5,000 करोड़ रुपये की मांग की है। इसके साथ ही प्रदेश के लिए निफ्टेम सहित शैक्षणिक और प्रबंधन संस्थानों की स्थापना, 10 प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क आवंटित करने और राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान का क्षेत्रीय केंद्र स्थापित करने के लिए भी आग्रह किया है। इसके अलावा राज्य सरकार की ओर से वर्ष 2028 में नेशनल यूथ गेम्स, वर्ष 2030 में हॉकी विश्व कप और 2031 में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय खेलों के लिए केंद्र सरकार से विशेष सहयोग की भी अपेक्षा की है। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 2,365 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने पटना में कहा कि इस निधि से अपूर्ण आवासों के निर्माण की प्रक्रिया में तेजी आएगी। मंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि हर गरीब का अपना घर हो। राजस्व और भूमि सुधार मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा है कि हर पंचायत में कंप्यूटर ऑपरेटर सह क्लर्क की बहाली की जाएगी। उन्होंने पटना में कहा कि विभाग ने

0: अपने ऑनलाइन राजस्व सेवाओं को प्रभावी ढंग से आम लोगों तक पहुंचाने के लिए यह निर्णय लिया है। श्री जायसवाल ने कहा कि विभाग द्वारा 8054 राजस्व कर्मचारियों की बहाली का प्रस्ताव राज्य कर्मचारी चयन आयोग को भेजा गया है। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती परीक्षा में धांधली और अवैध लाभ पहुंचाने के खिलाफ पुलिस ने पटना के सचिवालय थाने में 563 अभ्यर्थियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। इस मामले में मुंगेर और अरवल से 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सचिवालय थाना की अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एक अनु कुमारी ने बताया कि धांधली और साइबर गैंग की संलिप्तता की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि 88 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।
1: कुल 10 अभ्यर्थी को अरवल एवं मुंगेर जिले से गिरफ्तार किया गया है तथा इसमें अग्रतर कार्रवाई करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष उन्हें उपस्थापित किया जा रहा है। अभी तक इस कांड में कुल 88 अभियुक्तों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की गई है। इनमें से कुछ जो हैं वो स्कॉलर हैं, कुछ जो हैं वो अभ्यर्थी हैं, इन सबका सत्यापन किया जा रहा है।
0: केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों और वित्तीय बुनियादी ढांचे पर बढ़ते खतरे को लेकर चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
2: गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी वित्तीय और व्यक्तिगत धोखाधड़ी के लिए AI द्वारा डीप फेक वीडियो का तेजी से दुरुपयोग कर रहे हैं। आमतौर पर साइबर अपराधी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जॉब पोर्टल, डेटिंग प्लेटफॉर्म या फोन कॉल के माध्यम से संपर्क करते हैं। सरकार ने फिनटेक कंपनियों सहित वित्तीय संस्थानों को डीप फेक का पता लगाने के तंत्र को मजबूत करने और ग्राहक ऑनबोर्डिंग प्रणालियों को बेहतर बनाने की सलाह दी है। को सलाह दी गई है कि वे अपने बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखें, संदिग्ध लॉगिन प्रयासों के प्रति सतर्क रहें और वित्तीय गतिविधियों से संबंधित ईमेल या SMS सूचनाओं की नियमित रूप से निगरानी करें। यह भी आग्रह किया गया है कि वे किसी भी संदिग्ध वित्तीय लेनदेन की सूचना राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से तुरंत दें। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में कुलाधिपति संवाद का आयोजन किया जाएगा। राज्यपाल सह कुलाधिपति लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने सभी विश्वविद्यालयों को कुलाधिपति संवाद आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान कुलाधिपति के समक्ष विद्यार्थी और शिक्षक अपने विचार रखेंगे। संवाद में आए विचारों पर लोक भवन नीतिगत निर्णय लेगा। वहीं राज्यपाल ने बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर की शैक्षणिक गतिविधियों की समीक्षा के दौरान कहा कि स्नातक स्तर पर अंग्रेजी के साथ साथ कम से कम एक विदेशी भाषा के अध्ययन अध्यापन की भी व्यवस्था सभी विश्वविद्यालयों में की जाए। देश में खरीफ की बुआई का मौसम शुरू होते ही किसानों को तिलहन की खेती से संबंधित जानकारी देने के लिए किसान मित्र नाम से एक व्हाट्सएप आधारित AI सलाहकार सेवा शुरू की गई है, जो किसानों के मोबाइल फोन पर सीधे जानकारी पहुंचाती है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार किसान 40245981800 नंबर को व्हाट्सएप पर सेव कर सकते हैं। इस नंबर पर मूंगफली, सरसों, तिल, सूरजमुखी, सोयाबीन और अन्य तिलहन फसलों के बारे में किसी भी भारतीय भाषा में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ICAR के हैदराबाद स्थित भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान के निदेशक ने बताया कि यह पहल सामूहिक तिलहन अनुसंधान का पहला ऐसा प्रयास है जो देश के प्रत्येक किसान तक पहुंचाया गया है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
3: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश में मानसून के समय से पहले दस्तक देने के साथ ही

0: लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून किशनगंज, अररिया, सुपौल, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा और मधुबनी जिले में पहुंच चुका है। इस बार मानसून अपने तय समय से 6 दिन पहले बिहार पहुंचा है। विभाग ने कहा है कि अगले 2 से 3 दिनों के दौरान मानसून के प्रदेश के शेष भागों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। इधर विभाग ने अपने पूर्वानुमान में आज राज्य के अधिकतर हिस्सों में बारिश की संभावना जताई है।
1: पूर्वी चंपारण, गोपालगंज एवं पश्चिमी चंपारण जिलों में 1-2 स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात तथा भारी वर्षा के साथ तेज हवा 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। सारण एवं सिवान जिलों में 1-2 स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। अररिया, दरभंगा, किशनगंज, मधेपुरा, मधुबनी, शिवहर, सीतामढ़ी एवं सुपौल जिलों में 1-2 स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात तथा भारी वर्षा के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। कटिहार, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सहरसा, समस्तीपुर एवं वैशाली जिलों में 1-2 स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान मानसून के प्रभाव से किशनगंज जिले में सबसे अधिक 148 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। सरायगढ़ भपटियाही में 106 मिलीमीटर और सुपौल के बलतारा में 70.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बेगूसराय जिले के बखड्डा स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग 31 के पास सड़क हादसे में मधेपुरा जिले के 3 थाना प्रभारियों समेत 4 लोगों की मौत हो गई। बेगूसराय के पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार ने बताया कि साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र में देर रात 4-पहिया वाहन के अनियंत्रित होकर ट्रक से टकराने से यह हादसा हुआ। उन्होंने बताया कि थाना प्रभारी ज्ञानेंद्र कुमार और नीरज कुमार तथा ड्राइवर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एक थाना प्रभारी सागर पासवान की बेगूसराय सदर अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। आज विश्व बाल श्रम निषेध दिवस है। दुनिया भर में बाल श्रम की प्रथा को खत्म करने और लोगों को उसके प्रति जागरूक करने के मकसद से यह दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष इस दिवस की थीम है बाल मजदूरी को रेड कार्ड, बच्चों के लिए निष्पक्ष खेल, वयस्कों के लिए सम्मानजनक काम। बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य के नागरिकों से बच्चों के सुरक्षित, शिक्षित, स्वस्थ और सम्मानपूर्ण बचपन को और अधिक सशक्त बनाने का आग्रह किया है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव ने भी लोगों से बच्चों को उनका अधिकार दिलाने के लिए प्रतिबद्ध रहने की अपील की है। वहीं श्रम संसाधन और प्रवासी श्रमिक कल्याण मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने कहा कि राज्य सरकार बाल श्रम मुक्त बिहार अभियान के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। 10वां ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप आज से शुरू हो रहा है। 1 महीने तक चलने वाला यह टूर्नामेंट इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित किया जाएगा। टूर्नामेंट का पहला मैच मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच बर्मिंघम में खेला जाएगा। फाइनल मुकाबला 5 जुलाई को लॉर्ड्स क्रिकेट मैदान पर होगा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम रविवार को चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेगी। हरमनप्रीत कौर की अगवानी वाली भारतीय टीम इतिहास रचने का प्रयास करेगी और अपना पहला T20 विश्व कप खिताब जीतने का लक्ष्य रखेगी। टूर्नामेंट के इतिहास में पहली बार 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं। विश्व कप के दौरान 7 स्थानों पर 33 मैच खेले जाएंगे, जिससे यह ICC महिला T20 विश्व कप का अब तक का सबसे बड़ा संस्करण बन गया है। केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए कटिहार जिले के सभी प्रखंडों में 17 और 18 जून को प्रखंड सहयोग सह जन कल्याण शिविर का आयोजन किया जाएगा। जिला पदाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि इस 2 दिवसीय शिविर में आम नागरिकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं से संबंधित आवेदन, निबंधन, सत्यापन, EKYC तथा लाभ वितरण जैसी सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाएंगी। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि 2025-26 में देश में बागवानी उत्पादन लग

0: 3778 लाख टन तक रहने का अनुमान है। 2024-25 की तुलना में यह 70.39 लाख टन की वृद्धि दर्शाता है। मंत्रालय ने कहा कि फल, सब्जियां, फूल और सुगंधित एवं औषधीय फसलों का उत्पादन बढ़ने की संभावना है। दूसरे अग्रिम अनुमानों में केले, आम, पपीता, सेब और अमरूद के उत्पादन में वृद्धि से फल उत्पादन 1214 लाख टन से अधिक रहने की संभावना है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने मौसम की खबर पर लिखा है, राज्य में समय से पूर्व मानसून की दस्तक, 7 जिलों में हुई झमाझम बारिश। दैनिक जागरण ने ईओयू की कार्रवाई को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, लेखापाल का वेतन 50,000, 8 भूखंड समेत बनाई 2 करोड़ से अधिक की संपत्ति। दैनिक भास्कर ने नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की मांग का शीर्षक लगाया है, सम्राट ने केंद्र से मांगे 20,250 करोड़ और कई बड़े प्रोजेक्ट। प्रभात खबर लिखता है, प्रदेश के विश्वविद्यालयों में 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम में 7.5 CGPA वालों को ही मिलेगा 4th वर्ष में प्रवेश। राष्ट्रीय सागर की प्रमुख खबर है, निशांत और पवन सिंह सहित 10 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित। आज अखबार की सुर्खी है, सरकारी शिक्षकों को ट्यूशन कोचिंग पर प्रतिबंध। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने केंद्र सरकार से जल जीवन मिशन के लिए 18,000 करोड़ रुपए समेत कई परियोजनाओं की मांग की। सिपाही भर्ती परीक्षा में धांधली मामले में पुलिस ने 563 अभ्यर्थियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की, 10 की हुई गिरफ्तारी। केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों और वित्तीय बुनियादी ढांचे पर बढ़ते खतरे को लेकर चेतावनी जारी की। और किशनगंज समेत प्रदेश के 6 जिलों में मानसून की दस्तक, मौसम विभाग ने आज राज्य के अधिकतर हिस्सों में बारिश की जताई संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: जिस ऊंचाई पर तिरंगा होता है वहां लापरवाही नहीं पहुंचनी चाहिए। भारतीय ध्वज न सजावट है, न परिधान और न प्रचार का माध्यम।
2: भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार तिरंगे का आकार, रंग और स्वरूप पूरी गरिमा के अनुरूप होना चाहिए। फटा, गंदा या क्षतिग्रस्त ध्वज कभी नहीं फहराया जाना चाहिए। और याद रखिए, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत कानूनी अपराध है। ये नियम डराने के लिए नहीं, सम्मान सिखाने के लिए हैं।
1: क्योंकि तिरंगे का सम्मान देश का सम्मान। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी एट 90, 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक, नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल, जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
6: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प

0: बोले अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन।

आकाश, आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर, साथ ही न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी।

0: 90 वर्षों का शानदार सफर आकाशवाणी का।
1: आकाशवाणी दरभंगा ने भी पूरे कर लिए हैं अपने 50 साल।
2: एक से बढ़कर एक कार्यक्रम, साथ ही सदाबहार फिल्मी गाने समय समय पर।
1: सोमवार से शनिवार दोपहर 12 बजे और संध्या 5:40 पर कुछ तराने नए जमाने के।
0: आकाशवाणी दरभंगा, सुनते

0: हम एक हैं। भारत नेपाल मैत्रीपूर्ण संबंध जिसके तहत नागरिक बेरोक टोक इन दोनों ही देशों के बीच आवाजाही करते हैं। सीमा क्षेत्र के रहने वाले कभी घूमने निकल पड़ते हैं एक दूसरी ओर,
1: जनकपुर जाने के लिए आए,
0: कभी खरीदारी भी करते हैं।
2: हिंदी सामान किनना,
0: सामाजिक ताना बाना ऐसा कि इधर के लोग उधर या फिर उधर के लोग इधर करते हैं शादियाँ।
1: मैं चाहता हूँ कि मेरा शादी भी नेपाल में हो।
0: रहते हैं एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक।
3: एम्बुलेंस को फोन करते तुरंत आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, दोनों पार के आदमी समस्या को सॉल्व करते हैं।
0: इन्हीं मैत्रीपूर्ण संबंधों पर आकाशवाणी दरभंगा लेकर आता है कार्यक्रम हम एक हैं, प्रत्येक महीने के चौथे गुरुवार को रात 10:30 बजे। तो सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा।

ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। थोड़ी देर में हम पटना से रिले करेंगे उर्दू प्रोग्राम अंजुमन। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

0: चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए इस साल की थीम है चाइल्ड लेबर के लिए रेड कार्ड, बच्चों के लिए मुनसिफाना खेल, बड़ों के लिए महजब काम। इस थीम के तहत यह मुहिम मेयारी तालीम, समाजी तहफ़ महजब काम, मजबूत क़ानून और नफाज, साथ ही चाइल्ड लेबर के बुनियादी असबाब को हल करने वाले दीगर इकदाम पर जोर देती है। तरक्की के बावजूद दुनिया भर में 138 मिलियन बच्चे चाइल्ड लेबर के तौर पर काम कर रहे हैं, जिनमें तकरीबन 54 मिलियन बच्चे ख़तरनाक काम में मुलविस हैं। चाइल्ड लेबर के खिलाफ इस आलमी दिन पर बच्चों की मजदूरी के लिए रेड कार्ड बढ़ाएं और हर जगह बच्चों, ख़ानदानों और कम्युनिटीज़ के लिए मराकश के वादों को हकीकी तब्दीली में बदलने में मदद करें।
1: कुरान, हदीस, तारीख और हमारा माशरा शाहिद है कि हर

मकतमला जफमाए के दुआओं से नवाजा है, सितम सह कर भी दुश्मन

0: श्रोता, अभी आप सुन रहे थे उर्दू प्रोग्राम अंजुमन। ये प्रोग्राम आकाशवाणी पटना दरभंगा से प्रसारित किया गया।
1: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। आइए सुने फिल्म संगीत।

जो जीता वही सिकंदर। इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज़ों में। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे और जतिन ललित का संगीत था। और अब लीजिए कविता कृष्णमूर्ति का गाया, जावेद अख्तर का लिखा, आर डी बर्मन का संगीतबद्ध किया। ये गीत सुनते हैं, फिल्म का नाम है 1942 अ लव स्टोरी।

0: और अब लीजिए कार्यक्रम का ये अगला गीत सुनिए। शैलेंद्र सिंह के साथ ये आवाज़ लता मंगेशकर की है, आनंद बख्शी के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है और फिल्म का नाम है बॉबी।
1: कुछ कहना है
2: मुझे भी कुछ कहना है,
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है।
1: पहले तुम
2: पहले तुम
1: पहले तुम
2: पहले तुम
1: पहले तुम
2: तुम
1: तुम, तुम, तुम, तुम, तुम, तुम, तुम, तुम, तुम।

0: देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप करते निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ

और अब लीजिए शैलेंद्र सिंह के साथ सुनते हैं आशा भोसले को, फिल्म है रफू चक्कर। गुलशन बावरा के बोल हैं और इस गीत को संगीत से संवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

कल्याण जी आनंद जी का संगीतबद्ध किया फिल्म रफू चक्कर का ये गीत अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले और शैलेंद्र सिंह की आवाज़ों में। और अब लीजिए कार्यक्रम का ये अगला गीत सुनिए जिसे हमने लिया है फिल्म कर्ज से। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की है, बोल आनंद बख्शी के हैं, धुन तैयार की है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

आकाशवाणी दरभंगा से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम का अगला गीत सुनने से पहले हम आपको कार्यक्रम संबंधी एक सूचना से अवगत करा देते हैं। श्रोताओं, रक्तदान के माध्यम से न सिर्फ जरूरतमंद व्यक्ति की जीवन रक्षा ही की जा सकती है, बल्कि रक्तदाता को भी इससे स्वास्थ्य संबंधी कई फायदे होते हैं। रक्तदान क्यों है महादान, यही है आकाशवाणी दरभंगा के फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी के अगले अंक का विषय। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर संजीव कुमार, इंचार्ज रीजनल ब्लड बैंक DMCH दरभंगा। प्रसारण के दौरान कार्यक्रम से जुड़ने के लिए हमारे फोन नंबर होंगे 06-272-222-481, दूसरा नंबर होगा 943-00-29353। कार्यक्रम हेलो जिंदगी के प्रसारण का समय याद रखें, इस रविवार 14 जून 2026 दिन के 11 बजे। कार्यक्रम संबंधी ये सूचना समाप्त हुई। और अब लीजिए फिल्म संगीत कार्यक्रम का ये अगला गीत सुनिए।

दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे जिसे गाया था उदित नारायण और अलका, लता मंगेशकर और कुमार सानू ने। आनंद बख्शी के बोल थे, जतिन ललित का संगीत था और अब उदित नारायण और अलका याग्निक का गाया फिल्म कयामत से कयामत तक का ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। शब्द मजरूह सुल्तानपुरी के हैं, संगीत आनंद मिलिंद का।

0: करती हो?
1: जी मैम, डेढ़ बार तो सुनते रहता हो, लेकिन पहली बार आपको फोन लगाया मैम।
0: कैसा महसूस कर रही हो?
1: मेरे को अच्छा लगता है सुन के मैम।
0: अच्छा, क्या फील हो रहा है अभी जब फोन लग गया आपका? तो
1: पहली बार फोन मिला, इतना अच्छा लगा।
0: बताइए कौन से गाने?

फिल्म डर का ये गीत आप सुन रहे थे, उदित नारायण और लता मंगेशकर का गाया हुआ। इस गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने, संगीत से संवारा था शिव हरी ने। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से। लीजिए अब हम आपको सुनवा रहे हैं एसपी बालासुब्रमण्यम और लता मंगेशकर का गाया, आनंद बख्शी का लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीतबद्ध किया ये गीत। फिल्म का नाम है एक दूजे के लिए।

और अब लीजिए कार्यक्रम का ये आखिरी गीत सुनिए। एस पी बाला सुब्रमण्यम की ये आवाज़ है, समीर के बोल हैं, नदीम श्रवण का संगीत है, फिल्म है साजन।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का हमारा ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, हमारे अगले कार्यक्रम की थोड़ी प्रतीक्षा करें।

आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, आप सुन रहे हैं पहली सभा के कार्यक्रम। सभा को जारी रखते हुए अब हम आपको सुनवाते हैं शास्त्रीय संगीत। आज के कलाकार हैं अलाउद्दीन खान। आइए सुनते हैं सरोद पर बजाया राग अलहिया विलावल।

0: महिलाओं के विकास से ही होता है देश का विकास, और मुखिया ही अपनी दूरदर्शिता और अथक प्रयासों से गांव का विकास कर रहे हैं। इसी दिशा में देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक ने बिहार में एक अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया की शुरुआत की, जिसके तहत बिहार के गाँव में उत्कृष्ट विकास कार्य करने वाले मुखियाओं का सम्मान किया जा रहा है, और बिहार के चारों जोन से श्रेष्ठ 80 मुखियाओं को चुना जा चुका है हिंदुस्तान के सहयोग से। यशस्वी मुखिया अभियान के अंतिम चरण में 15 जून को पटना में बिहार के 20 ऐसे यशस्वी मुखियाओं को सम्मानित किया जाएगा जो राज्य स्तर पर बने हैं अपने गांव के विकास के सारथी। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें हिंदुस्तान।
1: अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत का यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से प्रसारित किया जा रहा था। आइए अब सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: शब्दांग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश, स्वागत करती हूं आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में।
0: नमस्कार, मैं हूं अजीत। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुविचार, जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम राजकोट से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
2: वो लिखते हैं, भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान पैदा करें, सारे दरवाजे खुल जाएंगे।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको इतने सुंदर संदेश के लिए। जी हाँ श्रोताओ, भाग्य भरोसे बैठे रहने से बेहतर है कर्म करना, जो सफलता का आधार है।
2: जी,
0: पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम सुन लेते हैं।
2: अयोध्या धाम से राजा बाबू शर्मा, राम बाबू शर्मा, राज बाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा।
0: और ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे।
2: ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया।
0: असिटी गोनियाना मंडी पंजाब से गुरप्रीत सिंह जस्सल जी।
2: ठाणे महाराष्ट्र से शोभा राणे जी।
0: आप सबको संदेश भेजने के लिए उमंग कार्यक्रम की ओर से आभार। स्वागत आप सबका एक बार फिर से श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओ, इस सप्ताह हमारी चर्चा का विषय दुनिया की विभिन्न पेय संस्कृतियों पर रहा है।
2: हमने चर्चा की चाय की, कॉफी की और कोको की। आज हम बात करेंगे एक और पेय की, जो चाय, कॉफी और कोको के बाद सबसे अधिक लोकप्रिय है। ये पेय बहुत स्वास्थ्यवर्धक पेय माना जाता है।
0: जी हाँ श्रोताओ, हम बात कर रहे हैं सोया पेय की।
2: जी,
0: इसकी अपनी पेय संस्कृति है, खासकर पूर्वी एशिया में। सोया केवल पेय ही नहीं लेकिन एक स्वास्थ्यवर्धक भोजन भी है।
2: जी,
0: कई समुदायों में खान पान और संस्कृति का ये हिस्सा रहा है,
2: जैसे चीन, जापान, कोरिया और वियतनाम के समुदायों में। इन देशों में सोया दूध सदियों से सुबह के नाश्ते का अभिन्न अंग रहा है। इन देशों में सोया पेय को स्वास्थ्य, पौष्टिकता और ऊर्जा से जोड़कर देखा जाता है।
0: यदि इसकी उत्पत्ति की बात करें तो सोयाबीन मूल रूप से चीन का माना जाता है।
2: जी,
0: ऐतिहासिक और आनुवंशिक अध्ययनों से पता चला है कि चीन की येलो रिवर या पीली नदी की घाटी में यह पहली बार पाया गया।
2: जी,
0: प्राचीन चीन में सोया को गेहूं और धान की तरह पारंपरिक मुख्य फसलों में गिना जाता था।
2: यहां से सोया धीरे धीरे व्यापारिक मार्गों से भारत, कोरिया, जापान, एशिया के अन्य देशों में पहुंचा। सबसे बाद में ये यूरोप और अमेरिका समुद्री मार्गों से पहुंचा।
0: श्रोताओ, इन देशों में सोया पेय उतना ही लोकप्रिय है जैसे भारत में चाय। सामुदायिक खेलकूद प्रतियोगिताओं, जूडो, कराटे और अन्य खेलों में भी इसका बड़ा महत्व है।
2: जी,
0: खिलाड़ी प्रतियोगिताओं के समय इसका विशेष रूप से सेवन करते हैं ताकि उनकी शारीरिक क्षमता और स्फूर्ति बनी रहे।
2: ये गर्म या ठंडा दोनों रूपों में पिया जाता है। कई देशों में सोया पेय के

0: विशेष और आकर्षक स्टॉल लगाए जाते हैं, जहां लोग जमा होकर इसे पीते और आपस में बातचीत करते हैं।
1: जहां तक इसकी पैदावार की बात है, ये एक पौध आधारित समृद्ध प्रोटीन का स्रोत है, जिसे कई लोग डेयरी के विकल्प के रूप में भी लेते हैं।
0: तकनीकी रूप से ये दलहन यानी दाल है। इसे वार्षिक फसल भी कहते हैं, क्योंकि ये साल में एक बार ही होती है। इसके पौधे में हरी पत्तियां, फूल और फलियां होती हैं। इन फलियों में बीज होते हैं। इसके सबसे बड़े उत्पादक देश ब्राजील, अमेरिका, अर्जेंटीना, चीन और भारत हैं।
1: यदि भारत की बात करें तो जलवायु के आधार पर मुख्य रूप से ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में उगाया जाता है। सोया के कई उपयोग हैं, जैसे
0: सोया दूध, टोफू, सोया आटा, सोया तेल, सोया सॉस और पशु आहार।
1: अब आइए बात करते हैं आयुर्वेद की। श्रोताओं, सोयाबीन की चर्चा आयुर्वेद के प्राचीन मुख्य ग्रंथों में तिल, मूंग, उड़द और मसूर की तरह स्पष्ट रूप से तो नहीं मिलती, लेकिन आधुनिक आयुर्वेदिक व्याख्याओं में इसे अत्यंत पौष्टिक और शरीर को बल देने वाला पेय माना जाता है।
0: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी सोयाबीन के बारे में। इसकी पेय संस्कृति बहुत रोचक रही है, खासकर मध्य पूर्व एशिया में, लेकिन अभी एक वैश्विक पेय माना जाता है और इसकी एक अलग पहचान है।
1: तो श्रोताओं, ये थी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, सोयाबीन की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस देश की मानी जाती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: सोयाबीन की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस देश की मानी जाती है?
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर।
0: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CITNCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो चलिए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है चींटी।
0: हिंदी की पाठ्य पुस्तक पर आधारित इस कार्यक्रम को एक सुंदर गीत द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें चींटी के परिश्रम और लगन के बारे में बताया गया है और संदेश दिया गया है कि हमें भी सफलता प्राप्त करने के लिए चींटियों की तरह लगनशील और परिश्रमी होना चाहिए।
1: सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। हर पल चलती जाती चींटी,
2: हर पल चलती जाती चींटी,
1: श्रम का राग सुनाती चींटी,
2: श्रम का राग सुनाती चींटी,
1: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
2: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
1: दाना चुनकर लाती चींटी,
2: दाना चुनकर लाती चींटी,
1: सचमुच कैसी कलाकार है,
2: सचमुच कैसी कलाकार है,
1: घर को खूब सजाती चींटी,
2: घर को खूब सजाती चींटी,
1: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर बड़े इरादे,
1: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर बड़े इरादे,
1: नहीं कभी घबराती चींटी,
2: नहीं कभी घबराती चींटी,
1: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
2: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
1: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
2: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
1: काम बड़े करके दिखलाती,
2: काम बड़े करके दिखलाती,
1: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
2: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
1: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
2: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
1: हमको यही सिखाती चींटी,
2: हमको यही सिखाती चींटी।
1: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन। आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

तो सुना आपने, कैसा लगा ये गीत? अच्छा लगा ना? तो अब सुनते हैं चींटियों के बारे में कुछ और मजेदार बातें। चींटियां बहुत मेहनती होती हैं। वे समूह में यानी मिलजुल कर काम करती हैं। और तो और, आपको मालूम है, अकेली चींटी अपने वजन से 50 गुना अधिक वजन उठा सकती है। इतना ही नहीं, आपने जरूर देखा होगा कि यदि कोई चींटी वजन नहीं उठा पाती तो दूसरी चींटियां तुरंत उसकी मदद के लिए आ जाती हैं। है ना मजेदार बात? तो क्या सिखाती हैं हमें ये चींटियां? हमें हमेशा मिलजुल कर रहना और मेहनत से काम करना चाहिए। अच्छा, अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा मालूम कीजिए कि चींटियां कितने रंगों की होती हैं। एक बात और, इस कविता में चींटी को कलाकार कहा गया है। जरा सोचिए और बड़ों से भी पूछिए कि उन्हें कलाकार क्यों कहा गया है। चींटी, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंग लिंगडो, संगीतकार विकास शंकर, ध्वन्यांकन विकास सांगवान, कविता वाचन स्वर सोहम, वान्या और मनन, गायन स्वर चार्वी, नव्या और एंजल, निर्माण सहयोग चेतना शर्मा, निर्देशन तथा निर्माण अजीत होरो। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम चींटी। आशा है कि आपको जरूर पसंद आया होगा।

0: तो क्यों ना अपनाएं खुशियां, अपनाकर मनोदर्पण। कॉल करें 844-844-0632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: और आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है गांव की धरती।
2: कार्यक्रम में भारत के ग्राम्य जीवन के बारे में बताते हुए वहां के सरल जीवन और प्राकृतिक सौंदर्य का बखान किया गया है। कार्यक्रम में गांव की हरियाली, खेतों और स्वच्छ पर्यावरण की भी चर्चा की गई है और संदेश दिया गया है कि हम भी अपने पर्यावरण का विशेष ध्यान रखें।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गांव की धरती, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है झरना।
1: ये कार्यक्रम भूगोल की एक पाठ पर उपलब्ध जानकारियों पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि झरनों का निर्माण कैसे होता है। इन जानकारियों को एक रोचक गीत और संवादों के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

0: जादुई पिटारा है ना मजेदार साथियों। जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का समय यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग। ये प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से प्रसारित किया जा रहा था।

जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम

0: खुलू जिंदगी के माध्यम से आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी रविवार दिन में 11 बजे।
1: कीजिए दिन का आरंभ पवित्रता भक्ति और आस्था के साथ। प्रातः 6:10 पर आकाशवाणी दरभंगा से भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। रेडियो सेट के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी।

0: 90 वर्षों का शानदार सफर आकाशवाणी का।
1: आकाशवाणी दरभंगा ने भी पूरे कर लिए हैं अपने 50 साल।
2: एक से बढ़कर एक कार्यक्रम, साथ ही सदाबहार फिल्मी गाने समय समय पर।
1: सोमवार से शनिवार दोपहर 12 बजे और संध्या 5:40 पर कुछ तराने नए जमाने के।
0: आकाशवाणी दरभंगा।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दरभंगा। दिन के 12 बज गए हैं। अब समय है आनंद लीजिए फिल्म संगीत का। कार्यक्रम की शुरुआत में सुनिए फिल्म फाइटर का ये गीत। आवाजें हैं बी प्राक, शिल्पा राव, विशाल और शेखर की। गीत लिखा है कुमार ने, संगीत से सजाया विशाल और शेखर की जोड़ी ने। फिल्म का नाम है फाइटर।

महसूस हुआ अब दिल्ली दूर नहीं। इस फिल्म का ये गीत सुन रहे थे जुबिन नौटियाल की आवाज़ थी, अजय सिन्हा का गीत और संगीत था। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं बैड बॉय फिल्म से। शान की आवाज़ है, शब्बीर अहमद का लिखा ये गीत है। इस गीत को संगीतबद्ध किया है हिमेश रेशमिया ने।

फिल्म संगीत। आकाशवाणी दरभंगा से अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। के बाद आइए अब सुनते हैं महिलाओं को संबोधित हमारा कार्यक्रम नारी संसार।

नारी संसार कार्यक्रम सुनने वाली समस्त श्रोता बहनों को लालती का प्यार भरा नमस्कार। प्यारी बहनों, स्वागत है आपका आज के आपके ही पसंदीदा कार्यक्रम नारी संसार में। जैसा कि आप जानते हैं बहनों, इस कार्यक्रम के जरिए हम हर दिन आपस में समसामयिक चर्चा करते हुए फिल्म संगीत का भी भरपूर आनंद लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं बहनों, आज विश्व बाल श्रम निषेध दिवस है, तो क्यों ना हम इसी विषय पर बातचीत करते हुए अपने कार्यक्रम में आगे बढ़ें। श्रोताओं, हर साल 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में बाल श्रम के खिलाफ जागरूकता बढ़ाना, बाल अधिकारों की रक्षा करना और बच्चों को उनके बचपन, शिक्षा और गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार दिलाना है। श्रोताओं, इस महत्वपूर्ण दिवस की शुरुआत पहली बार 2002 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा की गई। इसका उद्देश्य बाल श्रम की समस्या के समाधान के लिए एक गंभीर वैश्विक आंदोलन को बढ़ावा देना है। बहनों, बिहार में इस अवसर पर बाल श्रम के उन्मूलन के लिए विशेष संदेश व जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए हैं। श्रोताओं, इस दिवस के अवसर पर प्रमुख सरकारी एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे कि यूनिसेफ इंडिया और बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग बच्चों को बाल मजदूरी से निकालकर शिक्षा के मुख्य मार्ग पर लाने की अपील करते हैं। श्रोताओं, बचपन है अनमोल। बच्चों के लिए यह समय शिक्षा, खेल और विकास का है, मजदूरी करने का नहीं। श्रोताओं, बाल श्रम को दंडनीय अपराध माना गया है। इसके विरुद्ध भारत सरकार द्वारा वित्तीय कठोर कानून व नीतियां बनाई गई है। यदि आप अपने आसपास बाल श्रम देखते हैं तो इसके विरुद्ध आवाज जरूर उठानी चाहिए। तो बहनों, आगे पुनः हम कार्यक्रम में आपसे बातचीत करेंगे। आइए अब लेते हैं फिल्म संगीत का आनंद।

0: आकाशवाणी पर रवि किशन के साथ देश का नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक प्रेजेंट्स
1: बात घर की।
2: आज का सवाल पूछा है प्रदीप मिश्रा, ये जानना चाहते हैं कि अपने घर को सीलन से कैसे बचाएं। चलिए इंजीनियर बाबू से जवाब जानते हैं।
3: अगर कॉम्पैक्टिंग ठीक से नहीं हुई तो बीम्स या स्लैब से पानी का रिसाव हो सकता है। अपने छत की ढलान ध्यान से प्लान करें। पानी सही दिशा में बहना चाहिए और कभी भी जमा नहीं होना चाहिए।
4: घर के निर्माण के हर स्टेज में वाटरप्रूफिंग करवाना सबसे असरदार होता है। जमीन से पानी दीवारों में ऊपर चढ़ने का भी खतरा होता है।
1: बात घर की
0: आकाशवाणी पर रवि किशन के साथ देश का नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक प्रेजेंट्स
1: बात घर की।
2: आज का सवाल पूछा है प्रदीप मिश्रा, ये जानना चाहते हैं कि अपने घर को सीलन से कैसे बचाएं। चलिए इंजीनियर बाबू से जवाब जानते हैं।
3: अगर कॉम्पैक्टिंग ठीक से नहीं हुई तो बीम्स या स्लैब से पानी का रिसाव हो सकता है। अपने छत की ढलान ध्यान से प्लान करें। पानी सही दिशा में बहना चाहिए और कभी भी जमा नहीं होना चाहिए।
4: घर के निर्माण के हर स्टेज में वाटरप्रूफिंग करवाना सबसे असरदार होता है। जमीन से पानी दीवारों में ऊपर चढ़ने का भी खतरा होता है।
1: बात घर की
0: आकाशवाणी पर रवि किशन के साथ देश का नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक प्रेजेंट्स
1: बात घर की।
2: आज का सवाल पूछा है प्रदीप मिश्रा, ये जानना चाहते हैं कि अपने घर को सीलन से कैसे बचाएं। चलिए इंजीनियर बाबू से जवाब जानते हैं।
3: अगर कॉम्पैक्टिंग ठीक से नहीं हुई तो बीम्स या स्लैब से पानी का रिसाव हो सकता है। अपने छत की ढलान ध्यान से प्लान करें। पानी सही दिशा में बहना चाहिए और कभी भी जमा नहीं होना चाहिए।
4: घर के निर्माण के हर स्टेज में वाटरप्रूफिंग करवाना सबसे असरदार होता है। जमीन से पानी दीवारों में ऊपर चढ़ने का भी खतरा होता है।
1: बात घर की।

तो बहनों, अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नारी संसार। हम आशा करते हैं कि ये गाना आपको अच्छा लगा होगा। आइए अब हम सुनते हैं छोटी मुलाकात आधारित वार्ता कविता जी से।

मिट्टी पृथ्वी पर एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है जो प्रत्यक्ष रूप से वनस्पतियों और धरती पर मानव जीवन तथा पशुओं को अप्रत्यक्ष रूप से सहायता करती है। मिट्टी हमारे जीवन के लिए अमूल्य है। जैसे हमारे जीवन के लिए हवा और पानी महत्वपूर्ण होता है, उसी तरह मिट्टी भी हमारे लिए अति आवश्यक है। मिट्टी हमारा और पेड़ पौधों का भरण पोषण करती है। मिट्टी यानी मृदा पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है जो कि जीवन को बनाए रखने में सक्षम है। हम मानवों के गलतियों के कारण मृदा दूषित और नष्ट हो रही है, जिसका असर केवल धरती पर ही नहीं बल्कि सभी तरह के जीव जंतु, पेड़ पौधे और मानव जाति पर दिखाई पड़ रहा है। इसलिए मिट्टी का संरक्षण करना बहुत ही जरूरी है। मृदा प्रकृति का एक महत्वपूर्ण संसाधन है। यह न केवल पौधों का विकास करती है बल्कि धरती पर के विविध प्रकार के प्राणियों को भोजन प्रदान कर जिंदा रखती है। मृदा की उर्वरता मानव के आर्थिक क्रियाकलाप को प्रभावित करती है और देश की योजनाओं को सफल बनाने में सहायक होती है। इसके नष्ट होने से प्रकृति की एक बहुमूल्य संपत्ति समाप्त हो जाएगी, इसलिए इसका संरक्षण बहुत जरूरी है। जो मिट्टी मानवीय जीवन के सहारा का साधन बना, उसी मिट्टी का मानव ने अत्यधिक लालच के चक्कर में पड़कर शोषण और दोहन करना शुरू कर दिया। वनों की कटाई, अति पशुचारण, उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग, कीटनाशकों का प्रयोग, अत्यधिक सिंचाई, खनन के बाद गड्ढों को खुला छोड़ देना आदि अनेक मानवीय क्रियाकलापों से मिट्टी का क्षरण होता जा रहा है और भूमि अपरदन को बढ़ावा मिल रहा है। अतः मिट्टी जैसी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संपदा नष्ट होती जा रही है। इसलिए मानव सभ्यता एवं संस्कृति को बचाने हेतु मृदा संरक्षण आवश्यक है। इसके लिए हमें फसल चक्रण, पहाड़ी क्षेत्रों में खेतों की समुच्चय जुताई, वर्षा जल संचयन, जल का संरक्षण, भूमिगत जल की पुनर्पूर्ति आदि करके मिट्टी को बर्बाद होने से बचाना होगा। और कुछ कोशिश करके हम अपनी मिट्टी को बचा भी सकते हैं। जैसे हम पानी को वापस से धरती में जाने दें, पेड़ पौधों को लगाएं, और सिर्फ लगाएं ही नहीं, पेड़ पौधों को लगाने के बाद उनकी रक्षा करें। हम पेड़ पौधे लगाएं, अपने बच्चों को, अपने आसपास के लोगों को, अपने पड़ोसी को, अपने रिश्तेदारों को पेड़ पौधे लगाने के लिए उत्साहित करें, प्रेरित करें और एक नियम बना लें कि यदि हमारा जन्म है, वर्षगांठ है, कोई अच्छा अवसर है, किसी भी शुभ अवसर पर हम एक पेड़ जरूर लगाएं। यदि आपके पास जमीन की कमी है तो पेड़ नहीं लगा सकते हैं तो पौधे ही लगाएं, और पौधे लगाएं ही नहीं बल्कि उनका उचित रूप से संरक्षण करें, उनकी रक्षा करें, उन्हें समय पर पानी दें। और जो भी हमारे आसपास किसान भाई हैं वो यदि खेती करते हैं तो रासायनिक जो उर्वरक है या फिर रासायनिक कीटनाशक है तो उनका कम से कम प्रयोग करें। यदि करना ही चाहते हैं तो जैविक जो कीटनाशक है या फिर खाद है उनका इस्तेमाल करें। इससे क्या होगा कि हमारी मिट्टी जो है वह कम दूषित होगी, और यदि मिट्टी है तभी हम हैं।

0: आकाशवाणी पर रवि किशन के साथ देश का नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक प्रेजेंट्स
1: बात घर की।
2: आज का सवाल पूछा है प्रदीप मिश्रा और ये जानना चाहते हैं कि अपने घर को सीलन से कैसे बचाएं। चलिए इंजीनियर बाबू से जवाब जानते हैं।
3: अगर कॉम्पैक्टिंग ठीक से नहीं हुई तो बीम्स या स्लैब से पानी का रिसाव हो सकता है। अपने छत की ढलान ध्यान से प्लान करें। पानी सही दिशा में बहना चाहिए और कभी भी जमा नहीं होना चाहिए।
4: घर के निर्माण के हर स्टेज में वाटरप्रूफिंग करवाना सबसे असरदार होता है। जमीन से पानी दीवारों में ऊपर चढ़ने का भी खतरा होता है।
1: बात

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कविता जी से छोटी मुलाकात आधारित वार्ता। विषय था मिट्टी का महत्व। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम संबंधी एक सूचना। श्रोताओं, रक्तदान के माध्यम से न सिर्फ जरूरतमंद व्यक्ति की जीवन रक्षा की जा सकती है, बल्कि रक्तदाता को भी इससे स्वास्थ्य संबंधी कई फायदे होते हैं। रक्तदान क्यों है महादान, यही है आकाशवाणी दरभंगा के फोनिंग कार्यक्रम हेलो जिंदगी के अगले अंक का विषय। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर संजीव कुमार, इंचार्ज रीजनल ब्लड बैंक DMCH दरभंगा। प्रसारण के दौरान कार्यक्रम से जुड़ने के लिए फोन नंबर होंगे 06-272-222-481, मोबाइल नंबर है 9430029353। कार्यक्रम हेलो जिंदगी के प्रसारण का समय याद रखें, रविवार 14 जून 2026 दिन के 11 बजे। कार्यक्रम संबंधी ये सूचना समाप्त हुई। बहनों, आइए अब कार्यक्रम में पुनः हम चलते हैं फिल्म संगीत की दुनिया में, लेते हैं ये प्यारा सा फिल्म संगीत का आनंद।

बहनों, हम आशा करते हैं कि ये गीत आपको अच्छा लगा होगा। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा। आप पत्र के माध्यम से हमें ज़रूर सूचित करें। बहनों, हमारा पता है कार्यक्रम नारी संसार द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी दरभंगा। पिन नंबर है 8460484406004। तो बहनों, इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम संपूर्ण हो रहा है। अब लालती को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नारी संसार, आकाशवाणी दरभंगा से प्रसारित ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। अब हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, चिकित्सा, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और सुशासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व आधारित विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। गृहमंत्री अमित शाह नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के महानिदेशक भी उपस्थित हैं। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को संपन्न होगी। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधिकारियों के साथ प्याज की खरीद को बढ़ाने और किसानों को बेहतर लाभ सुनिश्चित करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने कहा कि खरीद मूल्य को संशोधित करके 1,650 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन, रेडियो और संचार सेवाओं से संबंधित दूरसंचार नियम 2026 का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया है। ये मसौदा पूर्व टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के अंतर्गत टेलीविजन और रेडियो सेवाओं के लिए जारी विभिन्न दिशा निर्देशों को नए दूरसंचार अधिनियम 2023 के दायरे में शामिल करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। नए प्रावधान में सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा निजी प्रसारकों के बीच होने वाले ग्रांट ऑफ परमिशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। इससे ये पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगी। सरकार ने संस्थागत, औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के पेट्रोल पंपों से ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जारी संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और निर्बाध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनयिक प्रयासों तथा अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में कुलतारंता वार्ता में डॉ जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का असर प्रभावित क्षेत्रों के साथ साथ अन्य क्षेत्रों पर भी होता है। खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती

स्थिति पर बारीकी से नजर रखे है और प्रत्येक भारतीय नागरिक की सुरक्षा और कुशलता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने ओमान के तट पर पलाऊ के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले की निंदा की है। इसमें 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि अंतोनियो गुतरश लगातार बढ़ते तनाव को लेकर बहुत चिंतित हैं। वहीं आईएमओ के महासचिव ने कहा है कि वो स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। मिस्र के विदेश मंत्रालय ने ईरान और अमेरिका के बीच संभावित शांति समझौते को लेकर दोनों देशों से जल्द ही एक निर्णायक सहमति बनाने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने कहा कि मिस्र अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के खिलाफ नियोजित सैन्य हमलों को रद्द करने की घोषणा की स्वागत करता है। भारतीय निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का निधन हो गया है। वे 49 वर्ष के थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। भारत की पीवी सिंधु ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में सिंधु ने चीन की ताइपेई की चेन सू यू को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है।

जानकारी प्राप्त करें हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के मुख्य कार्यक्रमों की। अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे देशभक्ति गीत। आपकी फरमाइश, पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे 1:15 से। 2 बजे से प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे। 2:05 पर समय होगा इलाकाई खबरों का। रोजगार सूचना आप सुनेंगे 2:10 से। 2:15 पर दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया जाएगा दोपहर समाचार। 2:30 फिल्म संगीत का आनंद आप फिर से एक बार ले पाएंगे। दूसरी सभा के कार्यक्रम में तरुण कुसुम आप सुनेंगे 5 बजे संध्या में कार्यक्रम के आरंभ में। इसके अंतर्गत डिजिटल इंडिया तकनीक के माध्यम से सशक्त नागरिक, ये चर्चा का विषय होगा। फिल्म संगीत 5:40 से। हफ्तावार जायजाज आप सुनेंगे 6:10 पर। विद्यापति गीत 6:15 से। मैथिली संवाद का समय होगा 6:25। गाम घर के अंतर्गत आज प्रसारित किया जाएगा नन्हा मुन्ना राही, जीवन में अनुशासन का महत्व, चर्चा का विषय रहेगा। खेती गृहस्थी के अंतर्गत आप सुनेंगे फसल में कीट नियंत्रण। फिल्म संगीत 7:55 से प्रसारित होगा और 8:15 पर समय होगा सिंगरहार का। रात्रि 9:30 पर सुनेंगे साहित्य के। सूत्रधार होंगे अमलनाथ ठाकुर, प्रस्तुतकर्ता मितेश कुमार मिश्रा। रात्रि 10 बजे फोन इन

अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के मुख्य कार्यक्रमों की। कार्यक्रम संबंधी एक सूचना, श्रोताओं, रक्तदान के माध्यम से न सिर्फ जरूरतमंद व्यक्ति की जीवन रक्षा की जा सकती है, बल्कि रक्तदाता को भी इससे स्वास्थ्य संबंधी कई फायदे होते हैं। रक्तदान क्यों है महादान? आकाशवाणी दरभंगा के फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी के अगले अंक का यही है विषय। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर संजीव कुमार, इंचार्ज रीजनल ब्लड बैंक DMCH दरभंगा। प्रसारण के दौरान कार्यक्रम से जुड़ने के लिए फोन नंबर होंगे 0627222481 यानी 0627222481 और मोबाइल नंबर होगा 9430029353 यानी 94-30-02-93-53 9430029353। कार्यक्रम हेलो जिंदगी के प्रसारण का समय याद रखेंगे रविवार 14 जून 2026 दिन के 11 बजे। कार्यक्रम संबंधी सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। अब प्रस्तुत है देशभक्ति गीत।

अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे। देशभक्ति गीत में अभी आप सुन रहे थे फिल्म क्रांति का ये गीत। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव के 231.5 मीटर यानी 1296 किलोहर्ट्ज पर। साथ ही साथ आप हमें सुनते हैं न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन पर। 1:15 हो चुके हैं। अब हम आपको सुनवाते हैं पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

दोस्तों, कैसे मिजाज आपके हैं फरमाइए, क्योंकि आपके मिजाज इससे पहले के हमारे पास पहुंच चुके हैं आपके पत्रों के रूप में, आपकी फरमाइश के रूप में, और उन्हें हम सहेज कर लाए हैं उन पत्रों को आप तक आपके पसंद के गीत को पहुंचाने के लिए। आपकी पसंद, आपके मिजाज के हिसाब से गीतों को हमने चुना है, और अब शुरुआत करते हैं इस सफ़र को। अब से लेकर 2 बजे तक ये सफ़र जारी रहेगा, जिसमें हम आपके पत्र और आपकी पसंद के गीत आप तक पहुंचाते रहेंगे। आज के इस कार्यक्रम में स्वीकार करें रविंद्र मिश्रा का प्यार भरा नमस्कार, और शुरुआत हम करते हैं महादेव अमलेश्वर से। डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर और रेयांश ठाकुर के इस पत्र से। दूसरा पत्र है हमारे पास सदाबहार रेडियो श्रोता संघ से, ये ताजपुर मोरवा से लिखते हैं भाई कारी रायकारी, मीनाकारी, पुंजराज आर्यन, आरती पुंज, आकर्षण पुंज, जयश्री, पिंकी, रिंकी, रिक्की, नीतू, मोहम्मद फारूक, ललन मिश्रा, ढोलकी सकड़ा से जयंत कुमार बैरागी हैं। और एक और पत्र है रामपट्टी गौसनगर से, शुभ नारायण महतो, राजा बाबू, राजेश कुमार, लक्ष्मी नारायण महतो और अमर कुमार। आप सबों ने सुनना चाहा है फिल्म एतवार का ये गीत, जिसके लिए स्वर हैं भूपेंद्र और आशा भोसले के, हसल कमाल के शब्द हैं और बप्पी लहरी का संगीत निर्देशन है। फिल्म का नाम एक बार हम फिर से बता दें आपको, फिल्म का नाम है एतवार। आइए सुनते हैं आप सबों की फरमाइश द्वारा ये गीत।

किसी नज़र को तेरा इंतजार आज भी है। दोस्तों, हमें भी इंतजार रहता है आपके पत्रों का, और आपको इंतजार रहता है हमारे कार्यक्रमों का। यदि आप भी जुड़ना चाहते हैं हमसे इस कार्यक्रम में अपने नाम और अपने पत्रों के द्वारा, तो लिख दीजिए हमें एक पत्र, जिसके लिए हमारा पता आप लिख लें। कार्यक्रम आपकी फरमाइश द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी दरभंगा। पिन कोड लिखना भी आवश्यक होगा हम तक पहुंचने के लिए। हमारा पिन कोड होगा 8460004 8460004। तो आप इस पते पर आप हमें पत्र लिखिए, जिसमें आप अपना नाम लिखिए, अपनों का नाम लिखिए, गाने का नाम लिखिए,

और हमें भेज दीजिए। हम शामिल करेंगे अगले किसी कार्यक्रम में जब आपका पत्र हम तक पहुंच जाएगा। फिलहाल अभी हम शामिल करते हैं उन पत्रों को जो हमारे हाथ में अभी उपलब्ध है। गोकुल चौक गंगजला सहरसा से ये पत्र आया है। राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी, राकेश रंजन विद्यार्थी, राजीव रंजन विद्यार्थी, संजय कुमार विद्यार्थी, ओम कुमार, गुंजेश कुमार, रिया रानी, कुमकुम कुमारी, साक्षी, बुल्की वालई, फलना झा,

झंझारपुर लंगड़ा चौक से हरेराम पासवान, काजल कुमारी, जयशंकर पासवान और रानी कुमारी का। आप सबों ने सुनना चाहा है अनवर का गाया ये गीत। फिल्म का नाम है हम हैं लाजवाब। संगीत है राहुल देव वर्मन का।

आकाशवाणी दरभंगा से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। इस कार्यक्रम में आपकी फरमाइश के गीत हम आप तक पहुंचाते हैं आपके रेडियो सेट और आपके मोबाइल हैंडसेट पर न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन के माध्यम से। फिलहाल ये पत्र हमारे पास है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से। लिखने वाले हमारे श्रोता हैं TD मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा, कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज, साहिल बजाज। एक और पत्र है आकाशवाणी श्रोता संघ प्रियदर्शनी। लिखने वाले हमारे श्रोता हैं संतोष कुमार सोनार, नरेंद्र डंडगहवाल, रविंद्र सोनार, सन्नी मुन्ना, बंडू दादा और बहादुरपुर रथ चौक जिला जलगांव से इन सबों ने लिखा है। ये सुनना चाहते हैं प्रहार फिल्म का ये गीत जिसे आवाज़ दी है शोभा गोटू ने।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: आकाशवाणी दरभंगा से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। अगली फरमाइश है आप सबों की फिल्म मासूम से। भूपेंद्र और सुरेश वाडकर की आवाजों में गुलजार का लिखा ये गीत आरडी बर्मन के संगीत निर्देशन में। फिल्म का नाम मासूम और फरमाइश आप सबों की। सदाबहार रेडियो श्रोता संघ ताजपुर मोरबा से भाई कारी रायकारी, मीनाकारी, पुंजराज आर्यन, आरती पुंज, आकर्षण पुंज, जयश्री, पिंकी, रिंकी, रिक्कू, रिक्की, नीतू, मोहम्मद फारूक, ललन मिश्रा, ढोलकी सकरा से जयंत कुमार बैरागी, राज नांदगांव से याकूब आसमा, यूसुफ आसमा, इमरान आसमा, इरफान आसमा, जेल रोड रायगढ़ से रेशमा तिवारी, सोनम तिवारी, अदीबा तिवारी, बिहारी कॉलोनी महासुंदर से वली उल्लाह फकीर, डब्बू उल्लाह फकीर, परवीन आसमा फकीर। सुनिए आप सबों की पसंद का ये गीत फिल्म मासूम से।

आकाशवाणी दरभंगा से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। इस कार्यक्रम में आपके फरमाइश भरे गीतों को हम पहुंचाते हैं आपके रेडियो सेट तक। कार्यक्रम का अगला गीत है आप सबों की फरमाइश पर। नगर निगम वार्ड 28 नाज मंजिल महसौल सीतामढ़ी बिहार से अकरम हुसैन प्रिंस, बेगम इसरत अकरम, बहू रुबीना वसीम, नवासा अरहान बाबू, नवासा हमजा बाबू, नवासा मुजम्मिल बाबू, नवासी हुमेरा नाज, नवासी सुमेरा नाज, नवासी अभिहा नाज, साजिया साहिन नाज, नाजिया नूरी नाज, बच्चू शेख, चीना शेख, कोकिल बारा और आई, जिला मुजफ्फरपुर से मोहम्मद फैजल शेख, नुजहत जहां नाज, कांति निकेतन राजनगर से कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता और रुद्र गुप्ता। एक और पत्र है गड़िया मौजे अस्तु से। आप लिखते हैं प्रदीप कुमार मंडल, आशीष मंडल, कुंदन मंडल, करीना कुमार।

0: कुमारी, पूजा कुमारी, आरती कुमारी, सुनीता देवी और शुभ नारायण महतो, राजा बाबू, राजेश कुमार, लक्ष्मी नारायण महतो, अमर कुमार, ये सभी हैं रामपट्टी गौसनगर, गौसनगर से। आप सबों ने सुनना चाहा है फिल्म नमक हलाल का ये गीत। आवाजें हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की। इस गीत को संगीतबद्ध किया है बप्पी लहरी ने।
1: अरे अरे अरे ना ना ना ना ना ना ना।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: कार्यक्रम में कार्यक्रम संबंधी एक सूचना हम आप तक पहुंचाते हैं। श्रोताओं, रक्तदान के माध्यम से न सिर्फ जरूरतमंद व्यक्ति की जीवन रक्षा की जा सकती है, बल्कि रक्तदाता को भी इससे स्वास्थ्य संबंधी कई फायदे होते हैं। रक्तदान क्यों है महादान? यही है आकाशवाणी दरभंगा के फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी के अगले अंक का विषय। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर संजीव कुमार, इंचार्ज रीजनल ब्लड बैंक DMCH दरभंगा। प्रसारण के दौरान कार्यक्रम से जुड़ने के लिए फोन नंबर होंगे 06272222481 और मोबाइल नंबर होगा 9430029353। कार्यक्रम हेलो जिंदगी के प्रसारण का समय याद रखें रविवार 14 जून 2026 दिन के 11 बजे। कार्यक्रम संबंधी सूचना समाप्त हुई। दोस्तों, आकाशवाणी दरभंगा से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। यदि आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख भेजिए। हमारा पता है कार्यक्रम आपकी फरमाइश द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी दरभंगा। पिन कोड है 846004 यानी 846004। आज का ये कार्यक्रम अब हम यहीं समाप्त करते हैं। अपने रेडियो दोस्त रविंद्र को दे अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी फरमाइश। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से प्रसारित किया जा रहा था। कुछ ही पलों में हम जुड़ेंगे हमारे पटना केंद्र से प्रादेशिक समाचार और इलाकाई खबरों के लिए। कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्र सरकार ने संस्थागत औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों को खुदरा विक्रेताओं से मोटर ईंधन और हाई स्पीड डीजल खरीदने पर रोक लगा दी है। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। खुदरा विक्रेताओं को निर्देश दिया गया है कि वे प्रति ग्राहक प्रतिदिन अधिकतम 200 लीटर हाई स्पीड डीजल ही बेचें। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की परीक्षावधि को 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट का कर दिया है। नया समय दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक रहेगा। संशोधित परीक्षावधि में अनिवार्य परीक्षा औपचारिकताओं के लिए आवश्यक समय शामिल है। साथ ही एजेंसी ने प्रश्न पत्र पुस्तिका के साथ दिए जाने वाले रफ वर्कशीट को 2 पृष्ठ से बढ़ाकर 4 पृष्ठ कर दिया है। केंद्र सरकार ने प्याज के खरीद मूल्य को संशोधित करके 1,650 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। भारतीय निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का आज नई दिल्ली के एक अस्पताल में निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक जताया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बेगूसराय जिले के साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में 3 थानाध्यक्षों समेत 4 लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में सरकार शोक संतप्त परिवारों के साथ है। गौरतलब है कि देर रात सड़क दुर्घटना में मधेपुरा जिले के अरार थानाध्यक्ष अमरेंद्र कुमार, बेलाड़ी थानाध्यक्ष नीरज कुमार और रतवारा थानाध्यक्ष साजन कुमार और कार चालक की मौत हो गई थी। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: इधर आइए इधर।
1: इधर?
0: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
2: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
1: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
2: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
1: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
2: शुभ वाणी,
1: लाभवाणी,
0: आकाशवाणी।

इच्छुक अभ्यर्थी इलाहाबाद कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। अभी आप सुन रहे थे रोजगार सूचना। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव के 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर, साथ ही न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन पर। आइए अब जुड़ते हैं हमारे दिल्ली केंद्र के प्रसारण में दोपहर समाचारों के लिए।

0: खुदरा पेट्रोल पंपों से उद्योगों के ईंधन खरीदने पर रोक लगाई। संयुक्त राष्ट्र ने ओमान तट के पास भारतीय नाविकों को ले जा रहे तेल टैंकरों पर हुए हमलों की निंदा की। दिग्गज निशानेबाज और प्रशिक्षक जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन। और टोरंटो में फीफा विश्व कप में ग्रुप बी के मुकाबले में कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना होंगे आमने सामने। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, हेल्थ केयर, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और गवर्नेंस तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं और पूरे देश में विकास परिदृश्य बदल रहा है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य किया है, जिसके सकारात्मक परिणाम विभिन्न क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह को सक्रिय सहयोग देकर महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की नीतियां सम्मान, अवसर और सशक्तिकरण के सिद्धांतों पर आधारित है। इन प्रयासों से अब महिलाएं अपनी क्षमताओं को पहचानते हुए राष्ट्र निर्माण में अधिक प्रभावी भूमिका निभा रही है। श्री मोदी ने विज्ञान, अंतरिक्ष और नवाचार जैसे क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं की बढ़ती उपलब्धियों की सराहना की। एक संस्कृत श्लोक का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नारी शक्ति राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि देश की माताएं, बहनें और बेटियां हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर भारत का गौरव बढ़ा रही है। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने राज्य के पुनर्निर्माण और इसे विकसित राज्य बनाने का संकल्प लिया है। श्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य में अब डबल इंजन सरकार है, अब पश्चिम बंगाल को भी अन्य राज्यों की तरह केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के महानिदेशक उपस्थित थे। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन के दौरे पर देहरादून पहुंची। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति आज देहरादून स्थित राष्ट्रपति निकेतन का दौरा करेंगी और 132 एकड़ क्षेत्र में बन रहे राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जून से फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे पर रहेंगे। 2014 के बाद से ये प्रधानमंत्री

0: का फ्रांस का सातवां आधिकारिक दौरा है। फ्रांस के नीस शहर में प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। ये भारत का प्रमुख नवाचार सम्मेलन है जो भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंगला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इसका उद्देश्य भारत की डीप टेक प्रतिभाओं को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करना है।
1: काफ़ी अरसे से जो द्विपक्षीय संबंधों में एक फोकस रहा है हमारा, किस तरह से हम इनोवेशन की तरफ ज़्यादा फोकस बढ़ाएं, और दोनों देश एक तरह से नॉलेज इकोनॉमीज हैं, दोनों देश सोच रहे हैं कि किस तरह हमारे संबंध हैं इनको और प्रगाढ़ करें हम, और इसी की वजह से हम भारत इनोवेट्स यहाँ उसका आयोजन कर रहे हैं, जो कि पहली बार है कि हमने इतने बड़े पैमाने पर भारत से डीप टेक स्टार्टअप्स बाहर ला के हम एक मंच पर हम रख रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी नीस से स्लोवाकिया जाएंगे और उसके बाद G7 समिट के लिए फ्रांस के एवियन लौटेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत, औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में आज से 2 दिन का ब्रिक्स कृषि मंत्रियों का सम्मेलन शुरू हो गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी प्रतिनिधियों का स्वागत किया। श्री चौहान ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना को आगे बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का दृष्टिकोण शांति और सहयोग पर आधारित है। सम्मेलन का विषय है लघु किसानों, महिलाओं और युवाओं के माध्यम से भविष्य के लिए खाद्य सुरक्षा। सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और महिला किसानों की भूमिका जैसे विषयों पर व्यापक चर्चा हो रही है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधिकारियों के साथ प्याज की खरीद को बढ़ाने और किसानों को बेहतर लाभ सुनिश्चित करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने कहा कि खरीद मूल्य को संशोधित करके 1,650 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन, रेडियो और संचार सेवाओं से संबंधित दूरसंचार नियम 2026 का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया है। ये मसौदा पहले के टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के अंतर्गत टेलीविजन और रेडियो सेवाओं के लिए जारी विभिन्न दिशा निर्देशों को नए दूरसंचार अधिनियम 2023 के दायरे में शामिल करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। नए प्रावधान में सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा निजी प्रसारकों के बीच होने वाले ग्रांट ऑफ परमिशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। इससे ये पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका को खारिज कर दिया है। ये याचिका उन्होंने मध्य प्रदेश से अपनी राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के खिलाफ दायर की थी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वे चुनाव अधिकारी द्वारा नामांकन रद्द किए जाने के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। चुनाव अधिकारी ने तेलंगाना में एक आपराधिक मामले की कथित जानकारी छिपाने के आरोप में मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त कर दिया था। ओडिशा में मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने आज 2 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर भुवनेश्वर में एक संवाददाता सम्मेलन में श्री मांझी ने कहा कि मुख्यमंत्री का पद जनता की सेवा करने का एक पवित्र अवसर है। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पिछले 2 वर्षों में 121 योजनाएं लागू की गई हैं। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रही हैं। ये सम्मेलन स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित किया जा रहा है। राज्य मंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सभी के लिए सम्मानजनक काम, सामाजिक सुरक्षा और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने मध्य एशिया और शंघाई सहयोग संगठन के साथ भारत की दीर्घ

0: साझेदारी के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई है। ताजिकिस्तान के दुशांबे में आयोजित एससीओ सम्मेलन का विषय है मध्य एशिया एससीओ का केंद्र शांति और संयुक्त विकास का क्षेत्र। खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रखे है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा और कुशलता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने ओमान के तट पर पलाऊ के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले की निंदा की है। इसमें 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि अंतोनियो गुतरश लगातार बढ़ते तनाव को लेकर बहुत चिंतित हैं। वहीं आईएमओ के महासचिव ने कहा है कि वो स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। सरकार ने ऑनलाइन प्रसारित हो रहे एक फर्जी वीडियो का खंडन किया है जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन को एक निवेश प्लेटफॉर्म का प्रचार करते हुए दिखाया गया है। वीडियो में 22,000 रुपए के निवेश पर प्रतिदिन 80,000 रुपए और प्रतिमाह 24,00,000 रुपए तक के रिटर्न का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये वीडियो पूरी तरह फर्जी है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की परीक्षा अवधि को 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दिया है। ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगी। एजेंसी ने कहा कि एनटीए ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि नीट यूजी परीक्षा निष्पक्ष, सुरक्षित और उम्मीदवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित की जाए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: संशोधित परीक्षा अवधि में अनिवार्य परीक्षा औपचारिकताओं के लिए आवश्यक समय शामिल है। एजेंसी ने कहा है कि ये सुधार पिछले कई वर्षों में उम्मीदवारों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर किए गए हैं। इसके अलावा एजेंसी ने प्रश्न पत्र पुस्तिका के साथ दिए जाने वाली रफ शीट को 2 प्रश्न से बढ़ाकर 4 कर दिया है। पुराने लेआउट के असुविधाजनक होने की प्रतिक्रिया के बाद कुछ छात्रों, विशेषकर बाएं हाथ से लिखने वाले छात्रों के लिए यह सुधार किया गया है। एनटीए ने कहा कि परीक्षा डिजाइन में छोटे छोटे सुधार भी एक महत्वपूर्ण परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों के अनुभव पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए निष्पक्षता और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और उम्मीदवार अनुकूल बनाने के उद्देश्य से ये उपाय लागू किए गए हैं। इसके साथ ही उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़े और परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए परीक्षा कर्मचारियों के साथ सहयोग करे। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दिग्गज निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का कल रात निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। जसपाल राणा भारतीय पिस्टल निशानेबाजों के प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि जसपाल राणा ने एक चैंपियन एथलीट और असाधारण मार्गदर्शक के रूप में राष्ट्र के लिए जो योगदान दिया वो प्रेरणादायक है। और अब खेल खबरों के साथ हैं जया भारती।
2: फीफा वर्ल्ड कप में दक्षिण कोरिया ने चेक गणराज्य को 2-1 से हरा दिया है। मैक्सिको के जापोपान में खेले गए रोमांचक ग्रुप ए मुकाबले में दक्षिण कोरिया ने इस जीत के साथ महत्वपूर्ण 3 अंक हासिल किए। दक्षिण कोरिया का अगला मुकाबला सह मेजबान मैक्सिको से होगा, जबकि चेक गणराज्य ग्रुप ए के दूसरे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका का सामना करेगा। इससे पहले मैक्सिको सिटी में खेले गए उद्घाटन मैच में मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया था। आज ग्रुप बी के मैच में सह मेजबान कनाडा का सामना बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। दोनों देश विश्व कप में पहली बार आमने सामने होंगे। इसके बाद ग्रुप चरण के मुकाबले में कनाडा का सामना कतर और स्विट्जरलैंड से होगा। एक महीने तक चलने वाले फीफा विश्व कप 2026 का भव्य उद्घाटन कल रात मैक्सिको सिटी में हुआ। रंगारंग उद्घाटन समारोह में शकीरा और बर्नाबॉय ने टूर्नामेंट के आधिकारिक गीत दाई दाई से समा बांधा। उधर पीवी सिंधु ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। तीसरी वरीयता प्राप्त सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चेन सू यू को 21-6, 21-9 से हराया। सिंधु का अगला मुकाबला सेमीफाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त जापान की अकाने यामागुची से।

0: होगा। यामागुची ने क्वार्टर फाइनल में आज भारत की तन्वी शर्मा को 21-14 से शिकस्त दी।
1: और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से उद्योगों के ईंधन खरीदने पर रोक लगाई। संयुक्त राष्ट्र ने ओमान तट के पास भारतीय नाविकों को ले जा रहे तेल टैंकरों पर हुए हमलों की निंदा की। दिग्गज निशानेबाज और प्रशिक्षक जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

0: सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से उद्योगों के ईंधन खरीदने पर रोक लगाई। संयुक्त राष्ट्र ने ओमान तट के पास भारतीय नाविकों को ले जा रहे तेल टैंकरों पर हुए हमलों की निंदा की। दिग्गज निशानेबाज और प्रशिक्षक जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

आकाशवाणी दरभंगा से अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संकेत। ये गीत आप सुन रहे थे याराना फिल्म से उदित नारायण और सपना मुखर्जी की आवाजों में। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं फिल्म दस्तक से, उदित नारायण की आवाज है।

0: 90 वर्षों का शानदार सफर आकाशवाणी का।
1: आकाशवाणी दरभंगा ने भी पूरे कर लिए हैं अपने 50 साल।
2: एक से बढ़कर एक कार्यक्रम, साथ ही सदाबहार फिल्मी गाने समय समय पर।
1: सोमवार से शनिवार दोपहर 12 बजे और संध्या 5:40 पर कुछ तराने नए जमाने के।
0: आकाशवाणी दरभंगा, सुनते रहिए।

जतिन ललित के संगीत निर्देशन में समीर का लिखा यह गीत अभी आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम था कुछ कुछ होता है। आवाजें हैं अलका याग्निक और उदित नारायण।

अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, कार्यक्रम का आखिरी गीत। फिल्म का नाम है लहू के दो रंग। उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजें हैं। समीर का लिखा ये गीत है, संगीत निर्देशन है आनंद मिलंद का। फिल्म का नाम है लहू के दो रंग।

उदित नारायण और अलका याग्निक को अभी आप सुन रहे थे फिल्म लहू के दो रंग में। इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है, मीडियम वेव के 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 3 बज रहे हैं। समाप्त होती है हमारी आज की पहली सभा। दूसरी सभा के कार्यक्रमों के साथ संध्या 5 बजे हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें।

0: उठी फोन की घंटी, देखते हैं किस सखी का है ये पहला कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्कार दीदी।
0: नमस्ते, किससे बात हो रही है हमारी?
1: जी सरिता कुमारी।
0: सरिता जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप?
1: दीदी अयोध्या रसूलाबाद।
0: अरे वाह, अयोध्या से, अयोध्या नगरी से आप बात कर रही हैं। तो बताइए क्या चल रहा है जीवन में, क्या करती हैं आप?
1: क्या दीदी, बस ये घर में रहती हूँ, घर के काम करती हूँ। आप बताइए, आप ठीक हो?
0: बिल्कुल, हम सब अच्छे हैं। और हम तो हमेशा ये उम्मीद करते हैं कि हमारे सारे सुनने वाली जितनी हमारी सखियां हैं सब हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें।
1: आज बहुत खुश हूँ, इतना दिन के बाद कॉल लगा, इतना दिन से तगाई कर रही थी।
0: जी हमें पता है सरिता जी, बहुत कोशिश करने के बाद फिर जब फोन लगता है तो उसकी खुशी और उसका आनंद क्या होता है। हमें भी बहुत खुशी हो रही है कि आपसे हमारी बात हो रही है। तो बताइए आप क्या सुनना चाहेंगी, कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
1: दीदी प्रेम रतन धन पायो।
0: प्रेम रतन धन पायो फिल्म का कौन सा गीत?
1: वही प्रेम रतन धन पायो गाना
0: जी,
1: ही है।
0: जी तो टाइटल सॉन्ग आपको सुनाते हैं। तो चलिए विविध भारती की ओर से सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है आज हमारी?
1: आज जी, मैं चांदनी जी बोल रही हूँ।
0: चांदनी जी,
1: छत्तीसगढ़ बिलासपुर से। हाँ
0: चांदनी जी, छत्तीसगढ़ बिलासपुर से, क्या बात
1: जी।
0: है चांदनी जी,
1: जी
0: क्या करती हैं आप? कुछ काम करती हैं, गृहिणी हैं, क्या करती हैं? अपने बारे में कुछ बताइए।
1: जी मैं हाउस वाइफ हूँ
0: जी। क्या बात है,
1: घर को ही देखती हूँ, बस घर में ही रहती हूँ और सारा दिन रेडियो सुनती हूँ। मेरा रेडियो सुनते सुनते सारा दिन पूरा काम होता है।
0: देखिए, रेडियो से जो प्रेम है, विविध भारती से जो प्रेम है, इसी वजह से तो हम आपस में जुड़े हुए हैं, है ना चांदनी जी? अच्छा मुझे बताइए, बच्चे हैं आपके कितने हैं?
1: जी मेरे 3 बच्चे हैं मैम।
0: अच्छा,
1: दो बेटे हैं मैम, एक लड़की है।
0: अच्छा, क्या बात है
1: जी। मेरी एक जो बेटी है वो टीचर है, दोनों बच्चे मतलब एक पापा के साथ मतलब शॉप पे रहते हैं और एक टैंक में है बेटा।
0: अच्छा, तो बड़े बच्चे हैं। तो हम आपको यादों की गलियारे में ले जाना चाहते हैं, जहाँ जब ये छोटे हुआ करते थे आपके बच्चे, स्कूल जाने की जब तैयारियां होने लगती थी तो घर में क्या माहौल रहता था? किताबें लाना, वो स्कूल के लिए लाइन में खड़े होना, फिर जब किताबें कॉपियां लेकर आके घर में उनके कवर चढ़ाना, आपकी क्या यादें हैं उसको लेके?
1: बच्चे जब आते थे कॉपी किताब लेके, पापा जब लेके आते थे उनसे, तो कहते थे मम्मी कवर चढ़ा के दो। हम बहुत उसको इतना तंग करते थे बच्चा, हालांकि तो हमारा ही काम बनता है, बच्चे जब छोटे रहते हैं मैम
0: जी,
1: तो उनके ऊपर कवर चढ़ाते थे। तो खाकी चावल कवर चढ़ाने के बाद जो खाकी चावल आते थे ना पहले,
0: जी,
1: खाकी
0: जी,
1: कवर
0: जी,
1: उसको चढ़ाते थे। फिर उसके बाद जो चिट बोलते हैं वो चिट लगाते

0: देते, फिर नाम लिखते थे उसके बाद, फिर वो बोलते थे मम्मी उसके ऊपर पन्नी वाला कवर लगाइए, वो लड़कों ने हमारा पन्नी कवर लगाया, मम्मी हमको भी लगा के दीजिए, तो वो भी हम करते देते थे उनको, ताकि बच्चों को लगे कि नहीं हम उनकी कॉपी सही रहे, और उनको ये भी सिखाते थे कि बच्ची अपने हर चीज को संभाल कर अच्छे से रखना है।
1: बिल्कुल, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा हमें चांदनी जी। आज बताइए आप कौन सी फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं?
0: हाँ, फिल्म का नाम है मैम रोटी कपड़ा और मकान, गाने के बोल है मैं ना भूलूंगी।
1: तो चलिए सुनते हैं आप ही के पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, ये बताइए आज इस वक्त किससे बात हो रही है हमारी?
1: हम धन्नो जायसवाल बोल रहे हैं, झांसी से।
0: झांसी से धन्नो जायसवाल। धन्नो जी, मैं पूछना चाहती हूँ, आपके कितने बच्चे हैं?
1: हमारे 3 बच्चे हैं
0: जी। तो बड़े हो गए हैं या छोटे हैं?
1: हाँ, बड़े हो गए। एक तो बड़ा है, उसकी शादी कर दिया है, बहू भी है, और अब 2 लड़कियां हैं, वो दिल्ली में हैं, उनकी शादी कर दिया।
0: अच्छा जी। जब बच्चे छोटे थे तो स्कूल जाते थे, तो स्कूल के लिए उनकी कॉपी किताबें आती थी, उस पे कवर चढ़ाना या फिर उनके झगड़े होते थे?
1: हम ही करते थे, मैडम सब हम करते थे।
0: तो इसी तरह से आपने समझा बुझा के उनका पालन पोषण किया है, और आज आपके देखिए बच्चे तीनों खूब अच्छी जगह पर हैं। इसी बात पे मुझे बताइए, आप कौन सी फिल्म का गीत सुनना चाहती हैं?
1: हम गीत सुनना चाहते हैं मैडम, छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती है, बैठे बैठाए दिल को बेचैन हो जाती है, जब होता है जब किसी से प्यार होता है।
0: क्या बात है, तुम बिन फिल्म का। चलिए,
1: आप ही की बिन
0: जी। तो तुम बिन फिल्म का, आप ही की पसंद का ये गीत विविध भारती की ओर से आपके लिए।

0: कार्यक्रम हेलो सहेली में अंतराल हुआ खत्म और सुनते हैं किसकी घंटी आज फिर बजी है। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किन से बात हो रही है हमारी?
1: आपकी मधु झुंझुनवाला जयपुर से बोल रही हूँ मैं।
0: जयपुर से मधु झुंझुनवाला जी। जी बताइए मधु जी, कैसे हैं आप?
1: मैं एकदम बढ़िया हूँ।
0: जी
1: बताइए।
0: जी हम लोग भी सब बिल्कुल अच्छे हैं। और ये बताइए क्या करती हैं आप जीवन में?
1: ऐसे तो साधारण गृहिणी
0: हूँ,
1: पर अपने भावों को कविताओं का रूप देती हूँ, लिखती रहती हूँ। लेखन मेरा प्रिय विषय है।
0: भाई देखिए, गृहिणी होना भी कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है, वो असाधारण काम है, हम सब जानते हैं। तो मधु जी बताइए, आप क्या लिखती हैं, किस तरह का लेखन है आपका, उसके बारे में कुछ बताइए।
1: मैं वास्तव में तो भावों को ही, अपने भावों को ही शब्द रूप देती हूँ।
0: जी, तो आपकी कोई रचना आप हमें सुनाएंगी अपनी सभी सखियों के लिए?
1: हाँ
0: जी, सुनाइए।
1: अपनी रचना सुनाती हूँ
0: जी।
1: नमनाक हो चली थी पुरवाई, नमनाक हो चली थी पुरवाई, पतवार जिंदगी की जंग खाई, कर दिया तेरे हवाले खुदा को, देखी जब पारावार की गहराई। जब से तुमको ना खुदा माना है, कुत्ते हुआ ये दिल बेगाना है, बैठे हैं सफीने पर तेरे यकीन से, बैठे हैं सफीने पर तेरे यकीन से, तूफान में ढूंढती नहीं ठिकाना है। ये भैया दुकान कविता है।
0: बहुत सुंदर कविता। आप कहती है साधारण महिला है, कहाँ इतने असाधारण आप अपनी कला को लिए हैं और शब्दों में अपने भावों को उतार पा रही हैं, तो ये भी तो अपने आप में अद्वितीय एक गुण है ना। बताइए आज कौन सा गीत सुनवाएं आपको?
1: सरस्वती चंद्र का छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए।
0: जी बेहद सुंदर गीत है।

0: मैं कुछ नहीं, मैं घर में हूँ, मैं कुछ हूँ, और इस समय मेरे मिस्टर की दुकान पे बैठी हूँ टाटी चौक में
1: जी।
0: हाँ, उनकी रसवंती शॉप है, रसवंती
1: जी,
0: गन्ने की रस जूस सेंटर। हाँ
1: अच्छा, गन्ने का जूस सेंटर। तो इन दिनों तो बहुत आप लोग एकदम व्यस्त रहते होंगे क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है और
0: बहुत बहुत व्यस्त रहते हैं और काम भी बहुत बढ़ जाता है ना मैम।
1: जी बिल्कुल, तो आप अपने पति का हाथ बटा रही हैं इन दिनों।
0: हाँ, उनका हाल तो क्या बताने का, वो हैंडीकैप्ट होके भी बहुत काम करते हैं, स्ट्रगल।

0: बजे से शाम 8 बजे तक तो स्ट्रगल चालू ही रहता है मैम।
1: हम उसे स्ट्रगल तो नहीं कहेंगे, ये जीवन यापन का साधन है ना। मेहनत तो सभी लोग करते
0: हाँ
1: हैं, सभी
0: यस
1: का एक
0: हाँ हाँ
1: अपना अपना
0: यस
1: अलग अलग व्यापार है, काम का तरीका है। मेहनत करते हैं तो उसका रंग भी तो बहुत खूबसूरत निकल के आता है ना।
0: बहुत बहुत बहुत
1: जी, तो घर में आपके बच्चे भी हैं?
0: हाँ। मेरे को 2 बेटियां हैं, उनकी शादी हो गई है, 2 बेटे हैं, वो भी पढ़ते हैं, सेकंड ईयर थर्ड ईयर है, और मिस्टर जो है तो काम भी कर रहे थे यहाँ पे।
1: जी जी तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, जब बच्चे आपके छोटे थे तो गर्मी की छुट्टी के बाद वापस स्कूल शुरू होते हैं है ना, तो उन दिनों में बच्चों की कॉपी किताबें लेकर आना, फिर उस पे कवर चढ़ाना, तो ये सब, ये जो बातें हैं, ये सब इसके बारे में कुछ बताएंगे, कैसे हुआ करता था आपके घर में?
0: बहुत बहुत अच्छा स्ट्रगल। और छुट्टों में भी कैसा करते थे, पढ़ाई में से ध्यान रहते थे उनके। फिर अब स्कूल शुरू होने ही वाला है तो फिर ये बुक लो, पेंसिल लो, कुछ कुछ बॉक्सेस लो, पेंसिल लो, राइटिंग के, ड्राइंग के, इसमें व्यस्त रहते थे। जब स्कूल होती थी शुरू तो फिर कवर लगाने का, नए बुक लेते तो मैं कवर लगा के देती थी उनको, भी वैसे कॉपी करते थे।
1: जी बिल्कुल, और वो होता है ना कि नई नई किताबों की खुशबू बहुत अच्छी लगती है, आपके बच्चे भी ऐसे
0: ओ बहुत बहुत
1: करते थे?
0: हाँ ये शाम भी करते थे ना, वो उधर की पत्ता इधर इधर का उधर ऐसा करके हम
1: हाँ
0: उसको ऐसे कुछ खेल बनाते थे।
1: हाँ ये बात तो है। तो देखिए ना, बच्चों के साथ साथ
0: हाँ
1: आपको अपना भी जो वक्त है वो भी याद आ गया है ना।
0: बहुत बहुत मैम
1: जी, आपसे बात करके हमें
0: बहुत कुछ।
1: बहुत अच्छा लगा वैजयंती जी। आज
0: हाँ
1: बताइए, आप
0: हाँ
1: कौन सा
0: मुझे
1: गीत
0: जिंदगी
1: सुनना चाहती हैं?
0: हर कदम एक नई जंग है उनको पसंद है
1: अच्छा, तो आपके पति को पसंद है इसलिए
0: बहुत
1: आप सुनना चाहती हैं।
0: पसंद है यस
1: तो चलिए सुनते हैं आप दोनों की पसंद का ये गीत।

0: अंतराल के बाद देखते हैं आज किस सखी से हमारी बातचीत होगी। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी? आपका नाम बताइए।
1: मेरा नाम अनीता विजयवर्गीया है।
0: कहाँ से बात कर रही हैं अनीता जी आप?
1: जी मैं जयपुर में रहती हूँ।
0: जी क्या बात है, जयपुर शहर यानी गुलाबी शहर हमारे देश का है ना?
1: जी बिल्कुल
0: जी। तो अनीता जी क्या करती हैं आप?
1: जी जी मैं बेसिकली गृहिणी हूँ और मुझे लिखने का शौक है।
0: क्या बात है।
1: कविताएं लिखना पसंद करती हूँ, तो मैं जीवन पे और सभी मनोभावों पे मेरी कविताएं होती हैं।
0: ये तो बहुत ही सुंदर बात है, घर के सब कामों के बीच में इन सब के लिए वक्त निकाल पाती हैं आप। और ये भी बताइएगा कि बचपन से शौक था, किस तरह से आपने इसके लिए अपने आप को कुछ शिक्षित किया या मन में कुछ भाव आते थे, कुछ शब्द आते थे और फिर आपने उनको पन्नों पे उकेरा?
1: जी मुझे लगता है कि कोई भी लेखक एक जन्म से ही वो लेखक होता है, बाद में उसको किस समय ये उजागर होता है कि वो एक लेखक है। वो कुछ क्षण ऐसे होते हैं जब वो कुछ अपनी गहरे मनोभाव, उसकी संवेदनाएं कभी ऐसे जब इतने ज्यादा हो जाते हैं कि वो लगता है कि अब इन्हें पन्नों पर उतारना चाहिए, तभी वो एक लेखक बन जाता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि मैं बचपन से ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग लेटर्स लिखती थी
0: जी।
1: तो सभी को बहुत पसंद आते थे। बेसिकली वैसे लिखा नहीं कुछ, फिर बाद में धीरे धीरे जाके मेरी बेटी के स्कूल प्रोजेक्ट के लिए एक कविता लिखनी थी, तब पहली बार मैंने कविता लिखी और उसके बाद मैं लिखती चली गई।
0: जी हम आपसे कविता तो सुनेंगे ही, ये भी बताइए कि आप सिर्फ अपने तक ही है ये कविता या आप कहीं पर मंचन करती हैं, कहीं जाती हैं?
1: जी जी मैं मंचन भी करती हूँ, मैं कई काव्य मंचों से जुड़ी रहती हूँ और उनके प्रोग्राम्स में जाती रहती हूँ।
0: तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। अनीता जी आपकी कोई रचना हमें अगर आप सुना सके तो जरूर सुनाइए।
1: जी बिल्कुल, मुझे एक कविता बेहद पसंद है, तो मैं वो आपको सुनाना चाहूंगी।
0: जी
1: इसका शीर्षक है आशियाना।
0: आशियाना शीर्षक।
1: जी जी। ऐ मेरे हमसफर, एक ऐसा आशियाना बनाना जैसे पूरा हो कोई ख्वाब सुहाना, तुम्हारे कांधे सी मजबूत उसकी छत हो छाया हो, मेरे इस जीवन पर बस तेरा ही साया हो, प्यार के सीमेंट में आंखों की थोड़ी नमी घोलना, ईंट दर ईंट रिश्तों की पुख्ता दीवार जोड़ना, तुम्हारे बड़े दिल की तरह हो एक बड़ा सा कमरा, हर शब हो सहर बस प्यार का ही हो पहरा, एक खुली सी बालकनी हो और हो तुम्हारी गलबैयों का झूला, महक हो रिश्तों की और सुलगता रहे रिश्तों का सांझा चूला। ऐ मेरे

0: हम सफर एक ऐसा आशियाना बनाना दरीचों पर हया का पर्दा रहे सूरज की रोशनी से आंगन महका करें मुमकिन आशाओं सी खुली छत हो हर आसमां पर सितारों की गश्त हो ऐ मेरे हमसफर एक ऐसा आशियाना बनाना मन करता है हमारे आशियाने की बगिया में खो जाऊं तेरे कांधे पर सर रखूं और सो जाऊं चाहे जैसे भी हो हालात हो सुकून दिल में और छूटे ना अपना साथ धन्यवाद
1: बहुत सुंदर बहुत ही सुंदर अनीता जी हम आशा करते हैं कि ऐसे ही आशियाना हर एक के जीवन में हो और हम आपसे और भी बहुत सारी बातें सुनना चाहते हैं लेकिन अगली किसी बार अगली कोई कॉल में हम आपसे आपकी और कविताएं सुनेंगे आज लेकिन बताइए आप आपकी पसंद का कौन सा गीत सुनना चाहती हैं
0: आज मैंने ये कविता आशियाना पर सुनाई तो आप मुझे हर फिल्म का आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है वो सुना दीजिए
1: बिल्कुल चलिए सुंदर सा गीत आपके लिए प्रस्तुत है

0: हेलो सहेली।
1: हेलो मैडम
0: जी, किन से बात हो रही है हमारी?
1: साधना गजरे बोल रही हूँ मैडम, मैं नागपुर से।
0: नागपुर से साधना जी। साधना जी बताइए, कैसी हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ मैडम, आप लोग कैसे हैं?
0: बिल्कुल, हम सब अच्छे हैं। और इन दिनों क्या चल रहा है जीवन में अभी?
1: गर्मी के दिन है, विविध भारती है साथ में
0: जी,
1: गाने का मौज लेते हैं, दिन भर विविध भारती के साथ रहते हैं
0: जी। तो आप घर पर ही रहती हैं या कुछ काम किसी तरह का कोई काम करती हैं?
1: काम तो मतलब मैडम ऑर्डर लेके पापड़ अचार बना देती लोगों को, और घर में रहती हूँ, गृहिणी हूँ घर की
0: जी। मतलब आप अचार और पापड़ बनाने का भी काम करती हैं?
1: ऑर्डर दे, हाँ ऑर्डर पे बनाते
0: जी। तो ऑर्डर्स कैसे मिलते हैं आपको, किस तरीके से लेती
1: किलो
0: हैं?
1: से घर के, जैसे सब लोग जॉब पे रहते हैं ना, यहाँ लता मंगेशकर हॉस्पिटल है बहुत बड़ा है, तो यहाँ सब हॉस्पिटल के लोग रहते हैं
0: अच्छा
1: जॉब वाले, तो उन लोग ऑर्डर देते हैं तो उनका बना देती हूँ।
0: क्या बात है। तो इस साल कितना ऑर्डर मिला और मतलब अच्छी आपकी कमाई हो गई?
1: अभी 10 किलो का बनाई थी मैंने।
0: तो बहुत अच्छी बात है। तो आप घर का भी काम करती हैं, पूरा घर संभालती हैं, उसके अलावा इतने सारे आप ऑर्डर्स लेती हैं, और अचार और पापड़ बनाना ये हर एक की

0: की बात नहीं, इसके लिए भी कला होनी चाहिए। तो बताइए साधना जी, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: देवा श्री गणेशा, ये गाना सुनना है।
0: बिल्कुल, आप ही की पसंद का सुनते हैं ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: डॉक्टर श्रुति गुप्ता।
0: डॉक्टर श्रुति गुप्ता, कहाँ से बात कर रही हैं आप डॉक्टर श्रुति?
1: कोटपुतली जयपुर राजस्थान से।
0: कोटपुतली, ये तो नाम सुना सुना सा लग रहा है, लेकिन कैसा है ये?
1: हाँ जी, ये छोटा टाउन है, जयपुर और दिल्ली का हाईवे है, वहाँ पे एक छोटा टाउन है कोटपुतली
0: जी।
1: तो मैं वहीं पे रहती हूँ।
0: अच्छा, तो आपने बताया आप डॉक्टर हैं, तो किस विधा में आपकी स्पेशलाइजेशन है बताएंगी आप?
1: मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ।
0: आयुर्वेदा डॉक्टर, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और आप प्रैक्टिस कर रही हैं, करती हैं, कोटपुतली में करती हैं, किस तरह से हैं बताइए, आपके बारे में कुछ बताइए।
1: हाँ जी, मैं प्रैक्टिस करती थी पहले, बट अभी रिसेंटली लोकेट हुई हूँ तो अभी प्रैक्टिस कर रही हूँ, बट थोड़े टाइम बाद वापस प्रैक्टिस करने लग जाऊंगी।
0: अच्छा, तो यानी आप अभी यहाँ पे, आपका ट्रांसफर हुआ है किस तरह से, मतलब आप क्या हुआ है?
1: हाँ जी, एक्चुअली रिसेंटली मेरी शादी हुई है, मेरे हस्बैंड यहाँ पे अल्ट्राटेक में जॉब करते हैं,
0: अरे वाह,
1: तो इसलिए मैं यहाँ पे रिलोकेट हुई।
0: तो अभी अभी शादी हुई है, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई डॉक्टर श्रुति। और अभी अभी आपका ये वैवाहिक जीवन शुरू हुआ है ना?
1: जी जी बिल्कुल।
0: तो कैसा लग रहा है अब यहाँ पर नए शहर में है? पहले आप कहाँ रहती थी, मतलब मायका कहाँ का है आपका?
1: मेरा मायका कोटा राजस्थान का है।
0: अच्छा, तो प्रैक्टिस अब यहाँ पर नहीं हो पा रही है या आप अभी कर नहीं रही हैं?
1: नहीं, अभी मैं खुद ही नहीं कर रही हूँ, आई एम जस्ट टेकिंग टाइम फॉर मैरिज, फॉर सेटलिंग इन।
0: तो ससुराल वाले अलाउ करेंगे ना आपको, मतलब काम करने के लिए, इस तरह से कोई रोक टोक तो नहीं है?
1: नहीं, मेरे ससुराल वाले दे आर वेरी फॉरवर्ड माइंडेड, तो वहाँ पे कोई परेशानी नहीं है।
0: बहुत अच्छी बात है। तो पेशेंट को किस तरह से आप, शुरुआती आपका जो उपचार है वो कैसे होता है?
1: हाँ जी, एक्चुअली

0: शुरुआती उपचार में हम लोग आयुर्वेदा में सबसे पहले पेशेंट की पूरी हिस्ट्री लेते हैं। हम पेशेंट से पूछते हैं आपकी दिनचर्या क्या है, आप क्या खाते हैं, कैसे सोते हैं, किस समय क्या काम करते हैं उनका, और पहले की भी कोई बीमारी की अगर उनको हिस्ट्री रही हो, उनके परिवार में अगर किसी को कोई बीमारी रही हो, तो हम ये पहले ये सब कुछ जानते हैं। उसके बाद आपने सुना भी होगा कि आयुर्वेद उपचार जड़ से होता है, ऐसा सुना
1: जी
0: होगा। तो
1: बिल्कुल जी
0: इसीलिए जड़ से उपचार करने के लिए हम सबसे पहले वजह पे जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, किसी को भी कोई बीमारी हुई तो आखिर वो क्यों हुई है। फिर जैसे ही हमें वो पता चलता है, धीरे धीरे सवाल से पेशेंट कुछ बताता है, तो फिर उसके बाद में हम उसके इलाज पे जाते हैं।
1: जी तो डॉक्टर श्रुति, हमने सुना है ये उपचार में थोड़ा वक्त लगता है आयुर्वेदा में, तो क्या ये बात सही है?
0: जी नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उपचार में वक्त लगे। वो रोगी के ऊपर निर्भर करता है कि उसकी बीमारी कितनी पुरानी है। अगर वो
1: जी
0: बीमारी बहुत पुरानी होगी तो उसको सही करने में थोड़ा समय लगेगा। अगर वो हमारी दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करेगा तो समय लगेगा। और अगर ऐसा नहीं होता है, बीमारी भी नहीं है, वो सारी बातें भी जो भी हम निर्देश दे रहे हैं, खाना पीना ये सब वो मानते हैं, तो बहुत जल्दी भी उपचार हो जाता है।
1: जी बिल्कुल। तो आपकी ये जो नई विवाहिता जीवन है उसके लिए, और अब जब आप वापस से अपना काम शुरू करेंगे उसके लिए, दोनों के लिए हम शुभकामनाएं देते हैं।
0: बहुत धन्यवाद आपका।
1: बताइए, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
0: आज मैं सौदागर मूवी का तेरा मेरा साथ रहे गीत सुनना चाहती हूँ।
1: तो चलिए आप ही की पसंद का सुनते हैं ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली दीदी, नमस्ते।
0: नमस्ते, ये तो बताइए नाम क्या है आपका?
1: मेरा नाम सुनीता उइके।
0: क्या बात है सुनीता जी, तो बताइए कैसी हैं आप और कहाँ से बात कर रही हैं?
1: मैं सिकंदरा

0: तारा सिंह जिला बालाघाट से बोल रही थी दीदी
1: जी। सिकंदरा से, तो ये इसके आसपास कौन सा बड़ा शहर है?
0: ये पास में वाराणसी है।
1: अच्छा।
0: और बालाघाट है
1: जी, बालाघाट के पास में। तो क्या करती हैं आप सुनीता जी?
0: मैं गृहिणी हूँ दीदी।
1: गृहिणी है,
0: घर का काम, खेती में काम करती हूँ।
1: हम्म, तो आप तो खेती में भी काम करती हैं, घर का भी काम करती हैं, यानी कि दिन भर आपका व्यस्त ही निकलता होगा।
0: हाँ दीदी, हाँ जी जी
1: जी। तो सुनीता जी, हमें ये बताइए आपके परिवार में कौन कौन है?
0: देवर है दीदी, देवरानी है, मम्मी पापा है, पति है, दो बच्चे हैं
1: जी,
0: देवर के एक है, एक मेरा है।
1: हाँ। अच्छा, तो आपके बच्चे स्कूल जाते हैं या बड़े हो चुके हैं अब?
0: नहीं नहीं, छोटे हैं दीदी, एक है अभी 9 साल का है, अभी मतलब 14 तारीख को हो जाएगा 4 साल का बर्थडे है उनका।
1: जी, तो ये भी मुझे बताइए, अब तो बस कुछ ही दिनों में स्कूल शुरू होने वाले होंगे?
0: शुरू होने वाले हैं दीदी, अभी चालू नहीं हुआ है।
1: ये बताइए कि उनकी कॉपी किताबें जब आ जाएंगी तो सब कवर वगैरह चढ़ाने का काम आप ही का रहता होगा, क्योंकि बच्चे तो छोटे हैं अभी, है ना?
0: हाँ दीदी, हाँ मैं करती हूँ ना, फिर उनकी मम्मी को भी कभी मतलब ड्यूटी करते हैं।
1: अच्छा।
0: तो हाँ, उनको भी कभी कभी समय मिल जाता है तो वो भी कर देते हैं, लेकिन कवर चढ़ाना यानी इसका काम मैं ही कर देती हूँ।
1: जी जी, तो घर में बस अभी कुछ ही दिनों में ये सारा माहौल होने ही वाला है, है ना?
0: हाँ
1: जी, हाँ जी।
0: अभी तो बस 2 महीने से मस्ती कर दी है, बच्चे अब स्कूल चालू होने वाले हैं।
1: हाँ बिल्कुल, यही तो बातें हैं ना, यही सब जब बड़े हो जाएंगे तो हमारे लिए यादें बन जाएंगी कि किस तरह से बच्चे हाँ। गर्मी की छुट्टियों में मजे करते थे। सुनीता जी, आपसे बातें करके हमें बहुत मजा आया, आप ये बताइए आज कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
0: मुझे कभी कभी फिल्म का गीत सुनना था, मेरे घर आई एक नन्ही परी।
1: जी बिल्कुल, तो चलिए सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते,
1: मैं अमीना जी मंसूरी बोल रही हूँ, पालगाना का इंदौर से मैडम
0: जी। ये बताइए, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: एक नारी दो रूप का सुनना चाहती हूँ, गाने के बोले दिल का सुनना सा तारा ना ढूंढेगा, मोहम्मद रफी साहब की आवाज है
0: जी। तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: सखियो, आज हमने कुछ सुंदर कविताएं सुनी, बच्चों के वो स्कूल की छुट्टियों के बाद स्कूल वापसी की यादें ताजा की और कुछ हुई मन की बातें। आप भी शेयर कर सकती हैं अपने दिल की जुबां। हेलो सहेली में आज बातों का सिलसिला बस इतना ही। हेलो सहेली में रिकॉर्डिंग होती है हर मंगलवार सुबह 11 बजे से। कॉल करने के लिए आप नंबर नोट कर लीजिए, हिंदी में 02-2400-2462, मुंबई का एसटीडी कोड है 022, अंग्रेजी में 02-2400-2466, 022 मुंबई का एसटीडी कोड है। अन्य नंबर है हिंदी में 02-2867-0288, मुंबई का एसटीडी कोड है 022, अंग्रेजी में 02-2-2867-0288, 022 मुंबई का एसटीडी कोड है। हेलो सहेली कार्यक्रम में आज जिन सखियों के कॉल लगे हैं, हम उनसे अनुरोध करते हैं कि अगले 2 महीने के बाद ही कॉल करें, ताकि अन्य सखियों को कॉल करने का अवसर मिल सके। आज के हेलो सहेली में तकनीकी रूप से सहयोगी रही हमारी इंजीनियर अनुश्री गुप्ता, संपादन में सहयोग दिया नम्रता टिकोड़े ने, विविध भारती की ओर से प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आप सभी को दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह, हेलो सहेली।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज सुनिए अरगवान रबही की लिखी कहानी अंजलि। वाचन स्वर नेहा शर्मा का। दोपहर की तेज धूप से बचने के लिए अरविंद विकास नगर की मेन रोड की जगह गलियों से होकर अपनी दुकान पहुंचता था। लखनऊ के नए इलाकों की चौड़ी सड़कों में जून की गर्मी और मुश्किल महसूस होती थी, फिर भी इन मोहल्लों में बने छोटे बड़े पार्क और पार्क के किनारे लगे इक्का दुक्का पेड़ भी किसी राहत की तरह हैं। अरविंद इन्हीं इक्का दुक्का पेड़ों की वजह से गलियों वाले रास्ते से अपनी परचून की दुकान पर पहुंचता था। सुबह से लेकर 2 बजे तक उसके भाई दुकान पर बैठते थे और उसके बाद वो शाम के 5 बजे तक दुकान संभालता, फिर भाई आकर दुकान संभालते। 2 बजे से ठीक पहले वो तेज धूप से बचता बचाता सेक्टर 4 की अपनी दुकान पर पहुंचता था और इसी रास्ते वो शाम होने से ठीक पहले पहुंचता था। दोपहर में उसे पूरी गली खाली मिलती, कहीं कोई इंसान नजर ही नहीं आता। लेकिन जब वो शाम होने से पहले लौटता तो गली में हल्की चहल पहल दिखने लगती। कोई अपनी कार बाहर निकाल रहा होता, कोई दूध का पैकेट लेकर घर की ओर जा रहा होता, तो कोई अपने दफ्तर से वापस आ रहा होता। लोग इक्का दुक्का ही दिखते थे। रोज एक घर के बाहर 60 साल का एक आदमी अपना बड़ा सा गेट खोलकर पानी की बौछार लगा रहा होता। बौछार लगाकर फ्री होता तो कई बार यूं ही पाइप छोड़ देता और पानी अपनी रफ्तार से बहता रहता। एक रोज अरविंद के भाई दुकान पर देर से आए और उसकी छुट्टी 6 बजे हुई। वो दुकान से जब घर की तरफ बढ़ा तो उसे उस गली में पहले से कहीं ज्यादा चहल पहल दिखी। पानी बहाने वाले अंकल तो अपना काम ईमानदारी से कर रहे थे, लेकिन उसकी नजर 60 साल के अंकल की जगह उनके घर के बगल वाले घर की बालकनी में खड़ी 2 लड़कियों पर पड़ी। लंबे बालों में स्लीवलेस सफेद टॉप और काले शॉर्ट्स पहने लड़की अपने दाएं पांव को रेलिंग पर रखकर एक लड़की से बात कर रही थी। मेहंदी रंग का सूट पहने दूसरी लड़की की सिर्फ पीठ ही नजर आ रही थी, और हाँ, पीठ पर ठहरे उसके काले घने बाल भी। दूर से देखने पर टॉप और शॉर्ट पहनी हुई लड़की खूबसूरत लग रही थी। अरविंद ने एक नजर उस लड़की को देखा, लेकिन उसे दोबारा देखना ठीक नहीं लगा। हालांकि आज पहली बार गली कुछ ज्यादा अच्छी जरूर लगने लगी थी।

0: का।
1: कुछ दिन बाद फिर अरविंद दुकान से लेट में छूटा और इस बार उसकी नजर दूसरी लड़की पर पड़ी। नीली पेंसिल जीन्स और छोटे छोटे फूलों के प्रिंट से सजा फ्लोरल टॉप पहने लंबे बालों वाली इस लड़की के गाल सुर्ख थे। आंखें बड़ी बड़ी, माथा चौड़ा और कद उस दूसरी लड़की के मुकाबले लंबा। अरविंद की नजर उस खूबसूरत नौजवान लड़की पर ठहरी गई थी कि उसे बगल में खड़ी दूसरी लड़की दिखाई दी।

ये वही लड़की थी जिसे उसने एक और दिन देखा था। आज उसने मैली सी लाल टी शर्ट और सफेद शॉर्ट्स पहन रखे थे। उसके बाल बिखरे से थे और चेहरा सोया हुआ सा लग रहा था। अरविंद को ध्यान आया कि उसे इस तरह बहुत देर ऑब्जर्व नहीं करना चाहिए और उसने नजर रास्ते की ओर कर ली, लेकिन अगले ही पल फिर नजर उसकी बालकनी की ओर उठ गई, लेकिन इस बार उसकी नजर पकड़ी गई। दोनों लड़कियों ने उसे देख लिया और अरविंद ने झेपते हुए नजर दूसरी ओर की। लड़कियां बालकनी से गायब हो गईं। उनकी तरह तेजी से तो नहीं, लेकिन अपनी गति से शाम भी नजर से ओझल हो गई। एक नई सुबह। कमरे की खिड़कियां चमक रही थीं, लेकिन उनके किनारों पर धूल अपना घर बना रही थी। तेज धूप खिड़की के शीशों को पार करके बेड पर पड़ रही थी। खिड़की से सटाकर रखी मेज पर लैपटॉप, हेडफोन, A4 साइज के कुछ बिखरे पन्ने, उल्टी रखी एक किताब और मोटे लेंस वाला नजर का चश्मा रखा था। किनारे पर ही दूसरी छोटी मेज पर एक सफेद कवर की डायरी में पेन नजर आ रहा था और एक छोटा सा पेन स्टैंड भी वहीं पास में रखा था, जिसमें 2-3 पेंसिलें और काले नीले डॉट पेन रखे थे। इसके अलावा एक फोटो फ्रेम किसी 35 साल की महिला के पुरानी फोटो से सजा हुआ था। बाथरूम का दरवाजा आवाज के साथ बंद करते हुए काले शॉर्ट्स पहने अंजलि बाहर आई। उसने अपने लहराते बालों को दोनों हाथों से थाम कर बाएं हाथ से बेड पर पड़े रबर बैंड उठाकर बाल बांध लिए, कपड़े को एडजस्ट किया और कमरे का दरवाजा खोला। देखा तो दरवाजे के सामने ही घरेलू सहायिका नंदा दीदी उसे नाश्ते के लिए बुलाने खड़ी हैं। अंजलि पलटकर अपना चश्मा उठाते हुए साफ सुथरी मेज की ओर बढ़ी और वहां रखी डायरी लेकर कुर्सी पर बैठ गई। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अंजलि की डायरी। 20 साल की अंजलि जाने कितने सालों से डायरी लिखती रही है, और डायरी के कई पन्ने पलटते हुए अंजलि एक सादे पन्ने पर पहुंची और चश्मा लगाकर गुनगुनाती हुई डायरी पर कलम चलाने लगी।

0: अचानक डायरी छोड़कर अंजलि धड़धड़ाते हुए अपने कमरे से बाहर सीधे किचन की ओर बढ़ी और किचन में नाश्ता बना रही पल्लवी से लगभग बहस करने के अंदाज में कहा, बुआ मशीन अंदर नहीं रखवाई आपने? अरे हॉल में ठीक से रखी तो है, तुम्हारे कमरे में जगह भी कम है अंजलि।
1: बहुत जगह है मेरे कमरे में,
0: यही हॉल में सिल लो जो सिलना है। मैं हॉल में सिलाई नहीं कर सकती, आप प्लीज अंदर रखवा दो। वैसे तुम्हें क्या जरूरत है, जहाँ रखी है वहीं रहने दो, पल्लवी ने झुंझलाते हुए।

0: कहा, मुझे मम्मा के लिए साड़ी तैयार करनी है, आपको बताया तो था मैंने।
1: कोई जरूरत नहीं है।
0: आप अंदर रखवाती हो या नहीं?
1: नहीं।
0: आपको क्या परेशानी है मेरी माँ से?
1: तकरीबन 40 बसंत पार कर चुकी पल्लवी बुआ ने अंजलि की ओर हताशा से देखा और अपनी बात बदलते हुए कहा,
0: तुम पहले नाश्ता करो।
1: नहीं।
0: अच्छा, ऑफिस से आकर आज रखवा दूंगी, तुम नाश्ता तो करो।
1: पक्का ना?
0: हाँ पक्का।
1: अपनी बात मान लिए जाने से खुश अंजलि नाश्ता करने बैठी और बुआ अपने कमरे में जाकर ऑफिस के लिए तैयार होने लगी। बुआ जल्दी से कपड़े बदल कर चेहरे पर हल्का सा पाउडर और थोड़ा परफ्यूम लगाकर बैग लटकाए कमरे से बाहर आई तो डाइनिंग टेबल में अंजलि नहीं बल्कि उसकी जूठी प्लेट और कप रखे मिले। बुआ ने उन्हें किचन में रखा और ऑफिस के लिए निकल गई। अंजलि ने बुआ की स्कूटी की आवाज सुनकर एक बार खिड़की से बाहर झांका और गेट से निकलती स्कूटी से नजर हटाकर मेज पर सजी महिला की फोटो देखने लगी। फिर उस फोटो को उठाकर मोहब्बत से चूम कर वापस रख दिया। भरी दोपहरी फन रिपब्लिक मॉल के किनारे चाय के ठेले के पास अंजलि की बुआ पल्लवी ने अपनी स्कूटी खड़ी की। नीम के पेड़ के पत्तों से छनकर धूप जमीन पर बिखर रही है। धूप से जरा सा हटकर छांव में बहुत से कर्मचारी खड़े थे और कुछ किसी चीज से टिके बैठे गप्पे लगा रहे थे। वहीं पल्लवी भी चाय का गिलास पकड़े पैंट शर्ट पहने एक आदमी के बगल में खड़ी हो गई। दोनों बातें करने लगे।
0: तुम उसे बता क्यों नहीं देती?
1: क्या बताऊं?
0: यही कि उसकी माँ उसे भुला चुकी है।
1: चाय का एक और घूंट लेकर गिलास ठेले पर रखते हुए लगभग पल्लवी की ही उम्र का प्रेम बोला।
0: प्रेम कई बार बताने की कोशिश की है लेकिन वो ये बात सुनना ही नहीं चाहती।
1: पर बताना तो पड़ेगा ना?
0: पता नहीं।
1: उसके माथे पर आती लट को कान के पीछे करता हुआ प्रेम कहता है,
0: तुम परेशान मत हो पल्लो।
1: प्रेम? ठंडी आहें भरती हुई पल्लवी प्रेम के कंधे से सिर टिकाकर कहती है, फिर उसका हाथ थामते हुए अपना धड़कता दिल संभालते हुए रुककर अगले ही पल कहती है,
0: देखो वो छोड़ो, तुम किसी अच्छी लड़की से शादी कर लो।
1: मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो शादी भी तुमसे ही करूंगा।
0: तुम जानते हो मेरी हालत।
1: तुम मेरी बात तो कराओ अंजलि से, मैं उसे मना लूंगा।
0: मुझे डर लगता है प्रेम।
1: क्या डर लगता है? तुम अपने पापा मम्मी से बात नहीं करवा रही थी लेकिन वो तो एक ही बार में मान गए।
0: हाँ पर अंजलि की बात और है, तुम मेरी बात तो करवाओ।
1: प्रेम मैं नहीं चाहती कि वो तुम्हें कुछ कह दे।
0: अरे कुछ नहीं कहेगी यार, मैं संभाल लूंगा।
1: तभी मोबाइल पर नजर पड़ते ही पल्लवी चौंकी। ओफो, लंच टाइम खत्म हो गया, चलो काम कर लें, ये सब तो होता ही रहेगा। पल्लवी ने चाय वाले को पैसे दिए और दोनों मॉल की ओर बढ़ गए। एक बार पल्लवी की नजर पीछे देखती है और वो प्रेम के साथ कदम मिलाते हुए आगे बढ़ जाती है। हालांकि पल्लवी भी जानती है कि वो प्रेम के बिना नहीं रह सकती लेकिन अंजलि की सोच कर वो ये बात कहने में सकुचाती है।

आधी रात होने को है। स्ट्रीट लाइट जल रही है लेकिन घरों में अब लगभग अंधेरा हो चुका है। चौकीदार की सीटी कहीं दूर बज रही है। कहीं पास में किसी घर में रेडियो पर मोहम्मद रफी गा रहे हैं हुई शाम उनका ख्याल आ गया। बुआ की स्कूटी घर के बाहर ही खड़ी है। पूरे घर में अंधेरा है लेकिन पल्लवी के कमरे में हल्की रोशनी है। वो अपने बेड के कोने में नीम दराज होकर फोन पर प्रेम से बात कर रही है। कल के लिए आलू की सब्जी और रोटी ले आऊंगी। कल कुछ मत लाना, कल सैटरडे है, जल्दी छुट्टी होगी, उसके बाद कहीं खाने चलेंगे। अच्छा ठीक है, लेकिन अभी बाय, क्योंकि 12 बज चुके हैं और सुबह जल्दी उठना होता है। हाँ बाय, लव यू टू। प्रेम से ये कहते हुए पल्लवी को शर्मा जाती है और वो फोन काट कर अपने बिस्तर से उठ खड़ी होती है। पहले उठकर मोबाइल चार्जिंग पर लगाती है, फिर रोज की तरह सोने से पहले अंजलि को देखने उसके कमरे की ओर बढ़ जाती है। अंजलि के कमरे का दरवाजा तो लगा हुआ है लेकिन बंद नहीं है। पल्लवी कमरे के दरवाजे को हल्के हाथों से खोलती है कि नाइट बल्ब की रोशनी में सोती हुई अंजलि की मासूमियत से उसे दुलार आ जाता है। जैसे ही अंजलि को दुलारने के लिए उसके कंधे को हल्का सा उठाती है कि मम्मा, नींद में ही अंजलि के मुंह से निकलता है, या शायद ये कोई ख्वाब है। पल्लवी उसके कंधे से अपना हाथ हटाने की कोशिश करती है कि अंजलि एक बार फिर मम्मा कहती है, और गहरी नींद में डूबी अंजलि पल्लवी को ही अपनी माँ समझकर उससे लिपट जाती है। पल्लवी का चेहरा न जाने क्यों खिल उठता है। नाइट बल्ब की हल्की रोशनी में अंजलि के साथ उसकी माँ की तस्वीर भी साफ नजर आ रही है। पल्लवी एक ठंडी आह भरती है और उसके मुंह से निकलता है, तुझे कैसे समझाऊं गुड़िया। सुबह 7 बजते ही धूप अंजलि के बिस्तर पर उसे जगाने पहुंच गई। माथे पर पड़ती हल्की धूप की गर्माहट से अंजलि की आंख खुली तो रोज की तरह सबसे पहले अपनी माँ की तस्वीर को ही देखा। अच्छी नींद का सुकून उसकी आंखों और उसके भरे भरे गालों वाले चेहरे पर दिख रहा था। अंगड़ाई लेते हुए जब कमरे में देखा तो बगल में सिलाई मशीन रखी दिखी। चेहरे पर एक मुस्कान खिल उठी। दिन की शुरुआत जो अच्छी हो गई। आज खुश होकर मन से अंजलि जल्दी से बिस्तर छोड़ नहाकर तैयार होकर अपने आप ही हॉल में रखी डाइनिंग टेबल पर आकर पल्लवी बुआ के साथ नाश्ता करने लगी। दूध खत्म हो गया है, जब बाहर निकलना तो ले आना, बुआ नाश्ता करते हुए अंजलि से बोली। क्यों, दीदी नहीं आई? चाय का बड़ा कप हाथ में लेकर अंजलि ने सवाल किया। वो आज नहीं आई, फोन किया था, उसने बताया कि बीमार है। तो आपने अकेले सिलाई मशीन अंदर रखी है? हाँ, तो क्या हुआ? क्यों, मुझे उठा देती या मैं उठ जाती तब साथ में कर देते। तुम्हें और चाय चाहिए क्या? बुआ बात टालकर और चाय लेने किचन की ओर बढ़ गई। अंजलि चाय गर्म कर रही बुआ को एकटक देखती रही। 11 बजे अंजलि ने अलमारी से पैसे लिए और दूध लेने पास की दुकान पर पहुंच गई, लेकिन वहां दूध नहीं मिलने पर अलग अलग दुकानों में दूध पूछते पूछते अंजलि आखिर अरविंद की दुकान पहुंच गई। अंजलि तो उसे नहीं पहचान पाई लेकिन अरविंद ने उसे जरूर पहचान लिया। फिर भी ऐसे बात करता रहा जैसे उसने उसे कभी पहले देखा ही ना हो। दूध है? अंजलि ने खुद में खोए हुए ही पूछा। हाँ, कितना चाहिए? 1 लीटर। फ्रिज से दूध के पैकेट निकालकर अरविंद ने थैली में डालकर दे दिया। 100 रुपए का नोट अंजलि ने भी जेब से निकालकर उसके हाथ में थमा दिया और बाकी पैसे और दूध का पैकेट उठाकर अपने घर की ओर बढ़ने लगी। लेकिन अरविंद की नजरों से उसे कुछ तो संदेह हुआ। अरविंद भी उसे जाते हुए देख ही रहा था कि गली में मुड़ने से पहले अंजलि ने पलट कर देखा और

अगली शाम सफेद शॉर्ट्स और काला टॉप पहने अंजलि रोज की तरह अपनी बालकनी की रेलिंग पर पैर टिकाकर खड़ी थी कि गली के मोड़ से अरविंद आता दिखाई दिया। उसके घर के पास ही एक पेड़ के नीचे रुककर अरविंद अपने मोबाइल में कुछ देखने लगा और अंजलि की नजरें भी गहनता से उसकी ओर ठहर गईं। अरे ये तो वो दुकान वाला लड़का है, वो मन ही मन कह उठती है और बीते दिन की बात सोचकर उसके चेहरे पर एक लाली छाने लगी। वहां अरविंद ने मोबाइल पर अपना गाना बदलकर एयरफोन लगाने के बाद जैसे ही नजरें उठाई कि सामने के घर की बालकनी पर खड़ी लड़की दिखी। अरविंद का ध्यान गाने से हटकर उस ओर हो गया। दोनों की नजरें मिली, अरविंद झिझका लेकिन अंजलि ने एक मीठी सी मुस्कान दी। अरविंद ने भी अंजलि की मुस्कान का जवाब मुस्कुराकर दिया। दोनों में कोई बात नहीं हुई। अरविंद आगे बढ़ गया और अंजलि उसे जाते हुए देखती रही। अरविंद भी बार बार मुड़कर उसकी ओर देखता रहा। अरविंद के गली पार करने के साथ ही मानो अंजलि के दिल का एक हिस्सा भी उसके साथ गली के पार ही चला गया और उसकी नजरों के बारे में सोचकर ही अंजलि की धड़कन बढ़ गई और मन में एक अनोखी हलचल होने लगी। वो बालकनी से हटकर जल्दी से अपने कमरे में पहुंची और आईने के सामने बैठकर खुद को देखने लगी। अपने बालों को, होंठों को, आंखों को, अपने आप को देखते हुए उसके होंठों पर मुस्कान आ गई और जैसे उसके चेहरे से चिपक ही गई। इससे पहले शायद कभी खुद को इतने गौर से उसने देखा ही नहीं था। अब एक सिलसिला सा बन गया। अंजलि रोज इंतजार करती और अरविंद जब आता तो हाय हेलो का एक सिलसिला शुरू हो चुका था, लेकिन बात इससे आगे नहीं बढ़ी। एक रोज अरविंद जब दुकान से वापस आने लगा तो बालकनी पर प्लास्टिक की कुर्सी तो दिखी लेकिन अंजलि कहीं नहीं दिख रही थी। मासूम अरविंद पेड़ के पास तक पहुंचा ही था।

कि पेड़ के बगल के पार्क से अंजलि बाहर आई और उसके बिल्कुल सामने खड़ी हो गई। अरविंद की धड़कन तेज हो गई। अंजलि उसे ध्यान से देख रही थी। अंजलि ने ही हिम्मत करके बात की। हेलो, हाय, मेरा नाम अंजलि है, मैं अरविंद। फिर कुछ पल दोनों खामोश रहे। आखिर क्या कहें? मैं आपको देखती हूँ, अंजलि ने अचानक चुप्पी तोड़ते हुए यूं ही कहा। जी? अरविंद ने लगभग चौंकते हुए जवाब दिया। मेरा मतलब है आप मुझे देखते हैं। सॉरी, मेरा मतलब, अरविंद के जो मुंह में आया वो कहने लगा। नहीं नहीं, सॉरी की बात नहीं, मुझे अच्छा लगता है। अरविंद को सुकून। मेरा नाम अंजलि है, मैं अरविंद। फिर कुछ पल दोनों खामोश रहे। आखिर क्या कहें? मैं आपको देखती हूँ, अंजलि ने अचानक चुप्पी तोड़ते हुए यूं ही कहा। जी? अरविंद ने लगभग चौंकते हुए जवाब दिया। मेरा मतलब है आप मुझे देखते हैं। सॉरी, मेरा मतलब, अरविंद के जो मुंह में आया वो कहने लगा। नहीं नहीं, सॉरी की बात नहीं, मुझे अच्छा लगता है। अरविंद को सुकून आया। अंजलि उसे देखकर मुस्कुराई। दोनों कुछ और पल वहीं खड़े रहे। फिर यकायक जैसे अरविंद को होश आया। अब मैं जाता हूँ। तभी अंजलि ने हिम्मत करके अपना दायां हाथ बढ़ाया और अरविंद ने लगभग कांपते हुए हाथों से हाथ मिलाया और अंजलि की ओर देखे बिना मुस्कुराकर अपनी राह चल पड़ा। इसके बाद से अंजलि और अरविंद एक दूसरे को देखने भर के लिए बेकरार रहने लगे। सारा दिन अंजलि

0: बोली, सुनो क्या? मैं कर दूं मेकअप तुम्हारा? नहीं बुआ, मैं कर लूंगी। अच्छा, बुआ ने ज्यादा जोर ना देना ही उचित समझा, लेकिन अंजलि ने बुआ का मुंह देखा और बोली, गड़बड़ कर दी ना बुआ। अच्छा ठीक है, आप ही कर दो। आती हूँ चाय रखकर। पल्लवी बुआ अंजलि का मेकअप करते करते उससे सवाल भी करती जा रही थी, किसी लड़के से तो मिलने नहीं जा रही हो ना?
1: नहीं।
0: देखो अगर जा भी रही हो तो ध्यान रखना। नहीं जा रही। शाम से पहले घर आ जाना और देर हो तो मुझे बुला लेना। बुआ मैं आ जाऊंगी। पल्लवी बुआ ने अंजलि को अच्छे से तैयार कर दिया और जब अंजलि चिकन का जालीदार काले बूटों वाला सूट क्रीम सफेद दुपट्टे के साथ पहने सामने आई तो उसके खुले लहराते बालों को देख बुआ कह उठी, बाल तो बांध लो बेटा। बुआ मुझे खुले बाल पसंद हैं। अच्छा बाबा जैसी मर्जी, आराम से जाना। आपको क्यों लग रहा है कि जैसे मैं पहली बार घर से बाहर निकल रही हूँ? पल्लवी बुआ ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। अगर देती तो यही कहती कि पहली ही बार तो जा रही हो, क्योंकि इसके पहले तो अंजलि कभी इतना तैयार होकर कहीं गई नहीं थी। एक ओर बुआ अंजलि का ये रूप देखकर खुश थी तो दूसरी ओर अंजलि के घर से निकलने की देर थी कि बुआ को उसकी फिक्र सताने लगी। उन्हें लगा कि एक बार प्रेम से बात कर ले। तभी याद आया कि उनका भी तो प्रेम से मिलने का आज प्लान था, लेकिन ये तो ध्यान ही नहीं रहा। ध्यान आया तो उन्होंने एक मैसेज डाल दिया और मना कर दिया। घर से बाहर निकली अंजलि को अरविंद दो गली छोड़कर मिल गया। सफेद शर्ट, नीली जीन्स और स्पोर्ट शूज उसकी पर्सनैलिटी पर जंच रहे थे। दोनों ने हाथ मिलाया और एक ऑटो में बैठते ही दोनों ने एक दूसरे को देखकर मुस्कान दी। पहली बार अरविंद और अंजलि एक साथ कहीं जा रहे थे। ऑटो तो नॉर्मल स्पीड से थोड़ा स्लो ही चल रहा था, लेकिन उस पर सवार दो जवां दिल अपनी नॉर्मल स्पीड से कहीं तेज धड़क रहे थे।

थोड़ी देर बाद अंजलि और अरविंद हजरतगंज के कैफे में आमने सामने बैठे हुए थे। टेबल में एक बड़ी प्लेट में पिज्जा के कुछ पीस रखे हुए थे और एक एक पीस उनके हाथों में था। सामने ही अंजलि की फेवरेट स्ट्रॉबेरी शेक के दो गिलास भी रखे हुए हैं। शेक लो, अरविंद ने अंजलि की तरफ गिलास बढ़ाते हुए कहा। अंजलि ने हल्की मुस्कान के साथ हाथ बढ़ाकर शेक अपनी ओर रखा। कुछ बताओ, अरविंद ने बात छेड़ी। क्या बताऊं? कुछ भी, अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में। मैं बीकॉम कर रही हूँ यूनिवर्सिटी से, मेरी बेस्ट फ्रेंड शिवानी है, मुझे लिखना पसंद है। और इतना कहते कहते अंजलि की नज़र अरविंद की उस निगाह पर गई जो उसे ध्यान से देख रही थी। अंजलि ने अपनी शर्म छिपाते हुए आगे कहने की कोशिश की और टेबल पर रखे उसके दोनों हाथों को हल्के हाथों से छूते हुए अरविंद ने कहा, और? अंजलि का दिल जोर से धड़कने लगा और मुलायम हाथों को सहलाते हुए अरविंद ने छेड़ जारी रखी, और? हर पल अंजलि के चेहरे पर बहार बढ़ रही थी। वो किसी खुशनुमा फूल की तरह खिल रही थी जिसकी खुशबू सारे माहौल को रंगीन कर रही थी। उसने मारे शर्म के हाथ पीछे करने की कोशिश की लेकिन अरविंद ने उन्हें पकड़ा हुआ था। तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा? अरविंद के ये पूछने पर शर्म से लाल चेहरे को अंजलि ने ना में हिलाया। इसके बाद उसकी नजरें झुकी ही रहीं। वो चाहती थी कि अरविंद उसे अच्छे से देख ले लेकिन उसे अरविंद की निगाहों से बेतहाशा शर्म आ रही थी। वापसी में ऑटो में बैठते ही अरविंद ने अंजलि की ओर देखते हुए कहा, लेकिन मैं तुमसे नाराज हूँ। क्यों? अंजलि हैरानी से अरविंद की ओर देखती है। बस इसलिए कि मैंने तो तुम्हें जी भर कर देखा लेकिन तुम पीछे रह गई। अंजलि ने प्यार से एक हल्की चपत अरविंद के सीने पर लगाई। तो अरविंद कह उठा, हाँ अब कुछ अच्छा लग रहा है। तुम भी ना, कहते हुए अंजलि ने एक बार फिर शर्म से लाल होकर अरविंद के कंधे पे सिर टिका लिया। अंजलि अपने घर की गली में पैदल चलती आ रही थी। घर की बालकनी पर खड़ी पल्लवी बुआ उसका रास्ता देख रही थी। टेंशन में उनके हाथ रेलिंग पर ही चल रहे थे और दूसरे हाथ में मोबाइल के स्क्रीन पर अंजलि की तस्वीर चमक रही थी। अंजलि के जाने के बाद से ही वो कई बार फोन करने का सोचती रही लेकिन किया नहीं था। अंजलि को देखकर उनके चेहरे पर सुकून आया लेकिन अंजलि की नजर उन पर न पड़ जाए ये सोचकर वो बालकनी से हट गई। पल्लवी बुआ ने प्रेम के साथ देर रात वाली फोन कॉल पर भी इस बात का जिक्र छेड़ा। तुम क्यों इतनी टेंशन में हो? प्रेम ने पूछा। टेंशन में इसलिए हूँ क्योंकि मुझे फिक्र है। अरे बाबा, इस उम्र में अंजलि किसी लड़के से नहीं मिलेगी तो कब मिलेगी? अपने मोहल्ले में पैदल चलते हुए वो फोन पर पल्लवी को समझा रहा था। तुम नहीं समझोगे, पल्लवी हताश होकर कहती हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन अभी तो तुम्हें ये भी नहीं पता कि वो किसी लड़के से ही मिलने गई थी। मैं खुद औरत हूँ तो ये अच्छी तरह से जानती हूँ। वो जिस तरह से बनठन कर गई थी और जैसा उसका चेहरा खिला है, वो किसी लड़के से ही मिलने गई थी। अच्छा ठीक है, पहली बात तो अपने आप को औरत मत कहा करो, नहीं तो खूबसूरत हो तुम। वेरी फनी, पल्लवी ने झूठे गुस्से से कहा। अरे सच में, और दूसरी बात, तुम अंजलि को लेकर फिक्र मत करो। बस उसे समझा दो कि अगर रिलेशनशिप में जाए तो एक दूरी बना

0: कर रखे।
1: ठीक कहते हो, लेकिन पहले श्योर हो जाओ। पल्लवी को प्रेम की बातों से कुछ राहत सी मिली। हाँ शायद तुम ठीक कह रहे हो। हाँ मेरी पल्लो। कुछ भी, पल्लवी शर्मा कर बोली। अवध की खुशनुमा शाम की खिलती रात में प्रेम और पल्लवी अपनी मोहब्बत की बातों में लग गए।

जुलाई की उमस भरी सुबह मौसम में आने वाले बदलाव का संकेत देने लगी थी। रोशनदान से आती धूप दीवारों पर रंग बिखेर रही थी। कमर तक हल्की चादर ओढ़े अंजलि अपने बिस्तर पर थी और उसके पांव चादर से बाहर। उसकी आंखें एक सुकून भरा ख्वाब देखकर खुश हो रही थी। मेज पर माँ की तस्वीर मुस्कुरा रही है। माँ की तस्वीर के बगल में रखी अंजलि की डायरी के खुले पन्ने फड़फड़ा रहे थे, जिसमें से एक में लिखा था, किसी को भी नहीं। ये खत मैं किसी को भी नहीं लिख रही, लेकिन लिख रही हूँ। आज अरविंद ने मुझसे पूछा कि मम्मा पापा साथ रहते हैं क्या। मैं क्या कहती, मैं बहुत छोटी थी लेकिन मुझे याद है कि सुबह अच्छे भले गए मेरे पापा वापस नहीं आए, उनका शरीर आया। दादी का रो रो कर बुरा हाल था। बुआ तो कुछ बोल ही नहीं रही थी। दादू मुझे संभाल रहे थे और मम्मा पापा से लिपट कर रोए जा रही थी। फिर पापा का वो शरीर भी धुआं होकर भगवान के पास चला गया। धीरे धीरे सब नॉर्मल होने लगा। पापा नहीं थे पर दादू दादी बुआ थे और मम्मा तो थी ही। दादू दादी गांव लौट गए, बुआ मेरे साथ रहने लगी। फिर एक रोज घर में बड़ा झगड़ा हुआ। मम्मा किसी और से शादी करने की बात कर रही थी और फिर उनकी शादी हो गई। मम्मा कुछ बार आई लेकिन फिर उनका आना बंद हो गया। फोन भी अब नहीं करती। वो भी क्यों आती, जब आती थी तो बुआ झगड़ा करने लगती, फिर वो नहीं आती थी। लेकिन मुझे उनकी याद बहुत आती थी, अभी भी आती है। मम्मा शादी के लिए मुझे छोड़कर चली गई और बुआ ने मेरी वजह से शादी नहीं की। आज जब अरविंद ने पूछा तो सोचा कहूँ कि बुआ ही मेरी माँ है, पर वो मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ मेरी मम्मा है। अंजलि। आसमान घने बादलों से घिरा है और फिजा में उमस का साया है। हल्की बूंदाबांदी से सड़कें गीली हैं और सड़क के किनारे मिट्टी की रहगुजर से भीनी खुशबू आ रही है।

ही है। हजरतगंज के हलवासिया कंपाउंड के पास एक कैफे में हलचल दिख रही है। युवा लड़के लड़कियां अपने अपने ग्रुप बनाकर मेजों के पास लगी कुर्सियों पर बैठे हैं। इन्हीं में से एक टेबल पर अंजलि अरविंद के साथ बैठी है और साथ में एक और लड़की बैठी है। अंजलि ने गाढ़े नीले रंग का स्लीवलेस टॉप पहना था, सादा सा मेकअप किया हुआ है, बाल खुले और गले में एक चांदी की चेन थी। वो अच्छी लग रही थी, लेकिन अरविंद की नजर शायद कहीं और ही थी। वो अंजलि के सामने बैठा था, लेकिन उसका ध्यान उसके बगल में बैठी लड़की की ओर था। उसके काले घने बाल उसकी सुराहीदार गर्दन से होकर उसकी काली कुर्ती पर ठहर गए थे। उसकी बड़ी बड़ी आंखों का काजल अरविंद को आकर्षित कर रहा था। उसका चौड़ा माथा और अंजलि से थोड़ा लंबा कद भी अरविंद को भा रहा था। लड़की के गाल सुर्खी से भरे थे और होंठों पर गहरी मुस्कान थी। ये शिवानी है। अच्छा, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, बताया था ना, अंजलि ने चहक कर कहा। हाँ बताया था, अपने नानू के यहाँ गई थी, कल ही आई है। अंजलि कुछ ज्यादा ही खुश थी। अरविंद की गहराती नजर शिवानी को पहचान गई थी। ये वही लड़की है जिसे उसने बालकनी में अंजलि के साथ देखा था। अंजलि अपनी बातों में लगी थी, लेकिन शिवानी अरविंद के इस नजर का भाव समझ रही थी। शिवानी ने उस समय कुछ कहना ठीक न समझा और मेन्यू देखने लगी। क्या मंगाऊं मैं? कुछ भी अच्छा सा, अंजलि ने अरविंद को देखते हुए कहा। अरविंद इस बात को भांप गया कि शिवानी उसकी नजर का भाव समझ रही है। कुछ ही देर में तीनों कैफे से बाहर निकल आए। बूंदा बांदी रुक गई थी, लेकिन बादल घने थे। अंजलि कुछ और देर रुकना चाहती थी। वो चाहती थी कि कहीं कुछ देर बैठा जाए, लेकिन शिवानी ने आसमान की ओर देखा और फिर अरविंद की ओर देखकर जैसे अपने आप से ही कहा, इससे पहले कि तेज बारिश हो घर ही चलना चाहिए।

0: अंजलि ने ऑनलाइन एक ऑटो बुक किया और तीनों उसमें बैठकर घर की ओर निकल गए। अरविंद को उसके घर के पास गली में उतारा और शिवानी भी अंजलि के साथ उसके घर आ गई। दोनों कमरे में जाकर बैठी कि अंजलि उसे अरविंद के बारे में बताने लगी। शिवानी अंजलि की भावना को समझ भी रही थी, लेकिन अरविंद को लेकर उसके मन में शक आ चुका था। बाहर तेज बारिश होने लगी। कुछ देर में बुआ कमरे में पकौड़ियाँ और चाय देकर अपने काम में लग गई। ये मशीन यहाँ क्यों रखी है? शिवानी ने बात बदलते हुए पूछा। अरे ऐसे ही रखी है। ऐसे क्यों? पर इतनी जगह है घर में, यहाँ क्यों रखना? तू छोड़ ना उसे। ये बता, अरविंद कैसा लगा?
1: मुझे तो ठीक ठीक ही लगा, शिवानी इस बात को खत्म सा करती हुई बोली।
0: बस ठीक?
1: हाँ भाई ठीक
0: बस। अरे यार तेरा आशिक है, तुझे पसंद है ना, इतना काफी नहीं है क्या?
1: हाँ ये तो है, तू पहली बार मिली है ना इसलिए ऐसा कह रही है, एक दो बार मिलेगी तो समझ आएगा।
0: दोनों चाय का कप लेकर बालकनी में खड़े होकर बारिश देखने लगे। अंजलि उस पेड़ की ओर देखने लगी जहाँ वो पहली बार अरविंद से मिलने गई थी। शिवानी बादलों की गड़गड़ाहट को अपने अंदर महसूस कर रही थी। इस बात को दो दिन बीत गए। घर की

बालकनी पर खड़ी अंजलि की नजरें गली की ओर ही टिकी थी। उस मुलाकात के बाद से अरविंद नजर ही नहीं आया। उसने अंजलि से फोन पर भी ज्यादा बात नहीं की। जब सुबह अंजलि ने फोन किया तो अरविंद ने आज सुबह दुकान से वापसी में उससे मिलने की बात कही थी। अब अंजलि का मन हो रहा था कि किसी तरह समय जल्दी चलता हुआ उसी समय में पहुंच जाए। हल्के बादल थे लेकिन आज बारिश नहीं हुई थी। उमस ने मौसम में कसावट पैदा कर दी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई तूफान आने को है। हवा का तेज झोंका पेड़ की एक डाल से सूखे पत्ते बालकनी में फेंक रहा था। हवा से अंजलि के बाल उड़ने लगे और उसे सामने से अरविंद नजर आने लगा। दो दिन से परेशान अंजलि के चेहरे पर एक मुस्कान खिल गई। अंजलि अरविंद से मिलने नीचे आई तो दूर से ही धुंधलाती फिजा में भी उसे अरविंद के चेहरे से साफ नजर आ रहा था कि वो पहले की तरह खुश नहीं है, परेशान है। और ये सोचकर वो भी परेशान हो गई। अरविंद ने दूर से अंजलि को देखा और फिर पेड़ के पास रुक गया। अंजलि उससे कुछ पूछना चाहती थी लेकिन उसे समझ नहीं आया कि क्या पूछना है और कैसे। फिर उसने पूछा, कैसे हो? ठीक हूँ। परेशान हो क्या? हाँ, थोड़ा परेशान हूँ। बताओ मुझे, मैं दूर करूंगी तुम्हारी परेशानी, अंजलि ने आशा भरे शब्दों में कहा। नहीं, अपने आप दूर हो जाएगी। अरे हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है, बस कुछ समय में ठीक हो जाएगा सब। इसके बाद अंजलि बहुत कुछ कहना चाहते हुए भी कुछ ना कह सकी। अरविंद जाने लगा तो एक बार अंजलि का जी चाहा कि उसे रोक ले, लेकिन इसका भी क्या फायदा होता, यही सोचकर खुद को ही रोक लिया। अरविंद चला गया, अंजलि उसे दूर तक जाते हुए देखती रही। दोनों के बीच कुछ बदल चुका था। फोन पर अरविंद बात नहीं कर पाने का कोई न कोई बहाना बताता। अंजलि को भी एहसास होने लगा था कि या तो अरविंद को कोई बड़ी परेशानी है या फिर वो उससे दूर जा रहा है। यूनिवर्सिटी की छुट्टियां खत्म हो गई थीं। अंजलि दिन में यूनिवर्सिटी जाती लेकिन उसका सारा ध्यान अरविंद की ओर लगा रहता। यूनिवर्सिटी से आकर वो बालकनी पर ही खड़ी रहती। एक हफ्ते से ज्यादा समय बीत गया था, ना तो अरविंद ही उसे रास्ते पर नजर आया और ना ही उसकी आवाज ही फोन पर सुन सकी थी। लेकिन व्हाट्सएप पर वो छोटे छोटे रिप्लाई किया करता था। एक दो बार अंजलि ने अरविंद के भाई की दुकान पर जाकर उससे बात करने की कोशिश की लेकिन वहां उसने बिजी होने की बात कह दी। अंजलि को अरविंद का ये व्यवहार समझ ही नहीं आ रहा था। कहां तो वो प्यार भरे सपने सजा रही थी और कहां अरविंद उसकी खुली आंखों से ही दूर होता नजर आ रहा था।

हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलो हर्ट्ज पर। साथ ही हम उपलब्ध हैं मोबाइल सेट पर भी न्यूज़ ऑन एयर ऐप के माध्यम से। इस समय स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बजे हैं। हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है युवा दोस्तों को संबोधित कार्यक्रम तरुण कुसुम से।

तो नमस्कार, उपस्थित हो गए हैं आपके इस कार्यक्रम को लेकर जिसका नाम है तरुण कुसुम। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे और जब स्वस्थ होंगे तो मस्त भी होंगे। हाँ, बिल्कुल होना भी चाहिए, युवावस्था होती ही है इस बात के लिए कि आप चुस्त दुरुस्त और स्वस्थ रहें, साथ ही साथ मस्त रहें। तो इस कार्यक्रम का जब हो गया है शुरुआत और 5:40 तक हम रहेंगे आपके साथ, तो बता दें कि आज आपके लिए लाए हैं एक चर्चा, डिजिटल इंडिया तकनीक के माध्यम से सशक्त नागरिक, ये होगा विषय। दूसरी ओर हम आपको सुनाएंगे कुछ गैर फिल्मी गीत, जिसमें होगी गैर फिल्मी कव्वाली और गैर फिल्मी गाना भी होगा। तो शुरुआत करते हैं इस देवी गीत से जिसे गाया है जयप्रकाश यादव ने।

तो ये गीत आप सुन रहे थे जयप्रकाश यादव का गाया हुआ। और अब कुछ बातें आपसे कर लें दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि आज के आधुनिक युग में तकनीक हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन चुकी है। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई डिजिटल इंडिया पहल का उद्देश्य देश को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करना है। इसका शुभारंभ 1 जुलाई 2015 ईस्वी को किया गया था। डिजिटल इंडिया के माध्यम से नागरिकों तक सरकारी सेवाएं ऑनलाइन पहुंचाई जा रही हैं। आज लोग घर बैठे आधार, पैन कार्ड, बैंकिंग, बिजली बिल भुगतान, ऑनलाइन शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं। UPI और डिजिटल भुगतान प्रणालियों ने लेन देन को तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक बना दिया है। इस अभियान ने ग्रामीण क्षेत्रों में भी इंटरनेट और डिजिटल सुविधाओं का विस्तार किया है। कॉमन सर्विस सेंटर, डिजिटल साक्षरता अभियान तथा ऑनलाइन सेवाओं ने गांवों के लोगों को भी तकनीक से जोड़ने का कार्य किया है। इससे समय और धन दोनों की बचत हो रही है तथा पारदर्शिता बढ़ रही है। हालांकि डिजिटल इंडिया की सफलता के लिए साइबर सुरक्षा, डिजिटल साक्षरता और इंटरनेट की व्यापक उपलब्धता पर लगातार ध्यान देना आवश्यक है। नागरिकों को भी सुरक्षित और जिम्मेदार तरीके से डिजिटल संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। अंत में हम कह सकते हैं कि डिजिटल इंडिया केवल एक सरकारी योजना नहीं बल्कि एक ऐसा आंदोलन है जो प्रत्येक नागरिक को सशक्त बनाकर भारत को आत्मनिर्भर, आधुनिक और विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में अग्रसर कर रहा है। तो ये थी आज की हमारी आपसे बातचीत और अब सुनते हैं ये गीत।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा तब कितना कष्ट घटा होगा।
3: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: आपको पता है, जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
5: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
6: विज्ञापन से पहले आप सुन रहे थे ममता कुमारी के स्वर में लोकगीत, और अब सुनिए विभा सिन्हा का गाया ये झूमर।

ये गीत आप सुन रहे थे झूमर विभा सिन्हा का गाया हुआ, और अब हम आप तक पहुंचा रहे हैं ये गैर फिल्मी गाना जिसे गाया है कमल बारोट ने।

0: ये गैर फिल्मी गाना आप सुन रहे थे कमल बारोट का गाया हुआ। दोस्तों, आप में से बहुतों तक ये नाम पहुंचा है कि नहीं, कमल बारोट का। लेकिन कमल बारोट 60 नहीं कह सकते हैं, 1950 और 60 के दशक में हिंदी और गुजराती संगीत में इनका काफ़ी योगदान रहा। इनका जन्म हुआ था अफ्रीका के तंजानिया में, थी भारतीय लेकिन इनका जन्म हुआ था अफ्रीका के तंजानिया में एक गुजराती परिवार में। बाद में 1950 के दशक के उत्तरार्ध में ये मुंबई आ गई थी और पार्श्व गायन में इन्होंने प्रयास किया और शारदा फिल्म से, यानी उसमें इनका गीत शामिल हुआ। और इनका वो गाना आपने सुना होगा ना, वो कव्वाली, हंसता हुआ नूरानी चेहरा, काली जुल्फें, रंग सुनहरा, इन सब गाने में इनका योगदान रहा है। तो वो सुना। अब जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं वो है कव्वाली। ये कव्वाली हमारे बचपन के दिनों में दोस्तों काफ़ी बजा करती थी। इस कव्वाली को गाया है सलीम चिश्ती ने। तो ये कव्वाली बड़ी आम थी हमारे बचपन के दिनों में। आपका अभी युवावस्था आपकी चल रही है तो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी ये कव्वाली। ज़रा ध्यान से, ज़रा गौर से इसको पूरा सुनिएगा, आपको यकीनन अच्छी लगेगी।
1: दोस्तों, फिल्में बहुत आपने देखी होंगी जिनके असरात भी होंगे अभी जहनों दिल पर, जोरदार आपने डायलॉग सुने होंगे बहुत, अब भी आंखों में बसे होंगे हजारों मंजर, नक्श दिल होंगे रफिया और लता के नगमे, बाकी होगा

अभी नौशाद के साजों का असर, मैं भी आया हूं दिखाने के लिए। फिल्म नई देख सकती है जिसे सिर्फ तसव्वुर की नजर, साजो संगीत में काविश है जनाबे चिश्ती, गीतकार और कहानी के मुसन्निफ नश्तर। दोस्तों नाम है इस फिल्म का रखा पगली, पर्दा उठने को है अब हाथों को रख लो दिल पर।

अरे कितनी मानी खेज है इसकी निगाहे पुरमलाल, कितना हसरतनाक है इसके तकद्दुस का जलाल, कि हादसे की इसको परवाह न मर जाने का डर, बीच राहों में फिरा करती है बेखौफ खतर, इस तरफ ही आ रही है दौड़ती दीवानवार, पीछे पीछे वो है और आगे आगे कोई कार, उसको छू लेने की कोशिश कर रही है दौड़ कर, लो पहुंची हाथी चौरास्ते के मोड़ पर, उफ अचानक एक सवार रफ्तार मोटर आ गई, लो वो टकराई, अरे टकरा गई।

तरुण कुसुम सुन रहे थे युवा दोस्त, प्रसारण आकाशवाणी दरभंगा से किया गया। हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं, सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम। आपको बता दें, इस समय के कार्यक्रम में यानी 5:40 पर जो फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुनते हैं वो होता है नए फिल्म यानी नए फिल्म के गाने यानी नई फिल्म के जो गीत होते हैं वही हम आपको इस समय सुनवाते हैं। तो करते हैं इस गाने से शुरुआत।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: आपको पता है, जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
1: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: तो आप सुन रहे थे दोस्तों नई फिल्मों के गाने। आपको बता दें, फिर से बता दें कि 5:40 पर संध्या काल में जो आप सुनते हैं फिल्मी गाने, वो नई फिल्मों पे आधारित होते हैं, यानी नई फिल्मों के गाने होते हैं। तो कल फिर आप सुनेंगे नई फिल्मों के गाने इसी समय। और अब हम देख रहे हैं कि घड़ी की सुई इशारा कर रही है कि हम आपसे विदा लें। तो दोस्तों, चलते चलते आपसे जानना चाहेंगे हम कि ये जो कार्यक्रम आप तक पहुंचता है, इस कार्यक्रम में त्रुटि अगर कहीं होती है, आपको मिलती है, तो आप अवश्य हमें सूचित करें। और कार्यक्रम का नाम देने के बाद लिखें पते पे द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी दरभंगा। तो अब फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त हुआ। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं ये कहते हुए कि समय होने वाला है 6, यानी 6 बजने को हैं। कुछ ही क्षणों में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार अमरनाथ यात्रा करने वाले भक्तों के लिए सुरक्षा और सुगम तीर्थ यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ

0: CISF और सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक शामिल हुए। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के लिए राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। अमेरिका के साथ प्रस्तावित समझौते पर ईरान ने अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बातचीत में जल्द ही सफलता मिल सकती है। ईरान में उच्च स्तरीय वार्ताएं आगे बढ़ने के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर सैन्य हमले रद्द कर दिए हैं। इस बीच विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मिक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई अस्वीकार्य है। इसी तरह के हमले में जहाज पर तैनात 3 भारतीय मारे गए। विदेश राज्य मंत्री डॉ. कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि शंघाई सहयोग संगठन SCO केवल एक क्षेत्रीय समूह नहीं बल्कि यूरेशिया में भारत को उसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक साझेदारों से जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है। ताजिकिस्तान में आयोजित SCO अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि संगठन में सहयोग के लिए भारत का दृष्टिकोण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुरक्षा संपर्क और अवसर के सिद्धांत पर आधारित है। श्री सिंह ने बताया कि भारत 17 से 19 जुलाई तक कोलकाता में SCO सभ्यता संवाद मंच के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा। प्रधानमंत्री मोदी इस संवाद मंच का शुभारंभ करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 21 जून को नीट UG पुनः परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक चलेगी। एजेंसी ने कहा है कि NTA नीट UG परीक्षा निष्पक्ष सुरक्षित और उम्मीदवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित कराने के लिए प्रतिबद्ध है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत सिंह ने आज नई दिल्ली में समग्र ITI परिवर्तन के लिए गठित रणनीतिक परामर्श और सुधार कार्यबल सारथी की पहली बैठक की अध्यक्षता की। सारथी देश के ITI तंत्र में अगली पीढ़ी के सुधारों को गति देने के लिए केंद्र, राज्यों, उद्योग जगत और प्रमुख संस्थानों को एक साथ लाने वाला सहयोगात्मक मंच है। भारत AI मिशन ने आज वार्या नामक एक वीडियो मॉडल शुरू किया है। इससे कम खर्च पर प्रासंगिक और अत्याधुनिक वीडियो बनाए जा सकेंगे। नई दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव S. कृष्णन ने कहा कि भारत AI मिशन के अंतर्गत समर्थित मॉडलों में से एक का शुरू होना देश की AI यात्रा में महत्वपूर्ण है। PV सिंधु ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में सिंधु का मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं। आज के शेष प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। अब से थोड़ी देर बाद यानी 6:10 पर आप सुनेंगे हफ्तावार जायजा। पेशकश होगी रिजवान अहमद की। विद्यापति गीतों के कार्यक्रम में आज के कलाकार होंगे राम कुमार मल्लिक, प्रेम कुमार मल्लिक और समित कुमार मल्लिक। 6:25 पर आप सुनते हैं मैथिली संवाद। शाम 6:30 गांव घर कार्यक्रम के तहत आज होगा नन्हा मुन्ना राही। बच्चे सुनेंगे चर्चा जीवन में अनुशासन का महत्व। 7:00 खेती गृहस्थी कार्यक्रम में किसान भाइयों के लिए चर्चा होगी फसल में कीट नियंत्रण।

इसके अलावा मौसम संबंधी जानकारी भी दी जाएगी, साथ ही समसामयिक कृषि कार्यों के बारे में भी बताया जाएगा। 7:52 पर लेकर आएंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। 8:15 पर मैथिली कार्यक्रम सुनिएगा सिंगर हार।

रात 9:30 बजे लेकर आएंगे। जी हाँ, रात 9:30 बजे साहित्य की कार्यक्रम लेकर आएंगे। इसके लिए सूत्रधार होंगे अमलनाथ ठाकुर और प्रस्तुतकर्ता होंगे मितेश कुमार मिश्रा। और रात 10 बजे फरमाइशी फिल्मी गानों का फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी होगा। तो ये थे आज के शेष प्रमुख कार्यक्रम। हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं।

0: भोर होते उठ जाओ किएक तऽ इजोतक पहिल किरण संग फुलाय लगैत अछि, फूल प्रकृति में घुराय लगैत अछि, ऊर्जा आबे वाला काल्हि लेल
1: प्रगति तखने भऽ सकैए जखन पुरुष और महिला समान रूप से सब क्षेत्र में एक रंग हुनका अधिकार प्राप्त हेतनि।
2: आ मनुख लेल तो बुझो अत्यंत जरूरी, पानि बुन्नी नहि हैत तो खेती नहि हैत, आ खेती जँ नहि हैत उपजा नहि हैत तो हमरा लोकनि खायब की।
3: मामा बने जाने बाबा देने जादा।
4: नमस्कार मिथिला, सुबह 7:05 पर सुनते रहिए आकाशवाणी।

0: हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं। पेश है हफ्तावार जायजा, पेशकश रिजवान अहमद की है।
1: सामईन आदाब, जायजे के अहम इशारिये। दरभंगा में पौधा लगाकर प्रोग्राम का आगाज। भीका शाह सैलानी का 377वां उर्स हुआ इख्तिताम पजीर। शिहर में आला सतही जायजा मीटिंग। डीएम ने जेर तामीर आरओबी का क्या मुआयना। अब तफसील। दरभंगा ज़िला कलेक्टर कौशल कुमार ने कलेक्ट्रेट अहाते में पौधा लगाकर प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आलमी योम माहौलियात हमें फितरत के तई हमारी जिम्मेदारियों की याद दिलाता है। हर शहरी माहौलियाती तहफ़ को अपनी ज़िंदगी में बतौर आदत अपनाएं। सब्ज़ तरक्की को फ़रोग देने के लिए मकसद से एक पौधा माँ के नाम मुहिम के तहत पौधे लगाने के लिए अवाम को बेदार करने की ज़रूरत है। पौधे लगाना सिर्फ एक प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बल्कि आने वाली नस्लों के तई हमारी जिम्मेदारी है कि हमें न सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए बल्कि उनकी हिफाजत करना भी लाजिम है। नौजवानों की तवानाई और बेदारी माहौलियाती तहफ़ के लिए अवामी तहरीक को मज़ीद तकवीत देगी। डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर ने विकास भवन कैंपस में शजरकारी की और प्रोग्राम से ख़िताब किया। वहीं ज़िला प्रोजेक्ट ऑफिसर फारूक इमाम ने कहा कि गंगा और उसकी मुआविन नदियों के तहफ़ के साथ पौधे लगाने, सफाई और अवामी बेदारी जैसी कोशिशें माहौलियाती तवाज़ुन को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करती हैं। मिथिला की मशहूर दरगाह हज़रत मखदूम भीका शाह सैलानी रहमतुल्लाह अलैह का 377वां सालाना उर्स अकीदत मोहब्बत एहतराम और रूहानियत के माहौल में मुनाकिद हुआ। हर साल की तरह इस साल भी उर्स के मौके पर दरगाह के हाजरीन ने नहायत अकीदत और मोहब्बत के साथ मज़ार पर चादर पोशी की। रवायती तौर पर सफ़ेद

0: 90 वर्षों का शानदार सफर आकाशवाणी का।
1: आकाशवाणी दरभंगा ने भी पूरे कर लिए हैं अपने 50 साल।
2: एक से बढ़कर एक कार्यक्रम, साथ ही सदाबहार फिल्मी गाने समय समय पर।
1: सोमवार से शनिवार दोपहर 12 बजे और संध्या 5:40 पर कुछ तराने नए जमाने के।
0: आकाशवाणी दरभंगा, सुनते रहिए।
3: आकाशवाणी दरभंगा की प्रस्तुति गाम घर, संध्या 6:30 पर। आकाशवाणी दरभंगा की प्रस्तुति गाम घर, संध्या 6:30 पर।
4: हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं, लीजिए सुनिए विद्यापति गीतों का कार्यक्रम। आज के कलाकार हैं राम कुमार मलिक, प्रेम कुमार मलिक और समित कुमार मलिक।

आप सुन रहे थे राम कुमार मल्लिक, प्रेम कुमार मल्लिक और समित कुमार मल्लिक का गाया ये विद्यापति गीत। इसके साथ ही विद्यापति गीतों का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ।

0: हम एक हैं। भारत नेपाल मैत्रीपूर्ण संबंध जिसके तहत नागरिक बेरोक टोक इन दोनों ही देशों के बीच आवाजाही करते हैं। सीमा क्षेत्र के रहने वाले कभी घूमने निकल पड़ते हैं एक दूसरी ओर,
1: जनकपुर जाने के लिए आए,
0: कभी खरीदारी भी करते हैं। सामाजिक ताना बाना ऐसा कि इधर के लोग उधर या फिर उधर के लोग इधर करते हैं शादियां। हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे मैथिली संवाद।
2: नमस्कार, आकाशवाणी दरभंगा FM रेनबो पटना सो प्रस्तुत है संवाद। संवादक संग हम छी कामिनी ठाकुर। भाजपा के वरिष्ठ नेता आ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कहलनि अछि जे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकासक नव ऊंचाई के छूलक अछि। ओ कहलनि जे निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी सबसँ दीर्घ कार्यकालक रिकॉर्ड बनौलनि अछि जे जनता के विश्वासक प्रमाण अछि। श्री चौधरी मोदी सरकारक 12 वर्ष पूरा भेला पर पटना में आयोजित मीडिया संवाद के संबोधित कऽ रहल छलाह। श्री चौधरी कहलनि जे भारतीय जनता पार्टी जे कोनो संकल्प जनता के समक्ष राखलक ओकरा पूरा करबाक भरसक प्रयास कयलक अछि, जाहि में जम्मू कश्मीर सँ अनुच्छेद 370 आ 35A के समाप्त करब पार्टीक ऐतिहासिक प्रतिबद्धता छल, जकरा प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पूरा कयल गेल अछि। एकर अलावे अयोध्या में राम मंदिरक निर्माण के सपना सेहो पूरा भेल। श्री चौधरी कहलनि जे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपन कार्यकाल में बिहारक विकास के लेल अपन प्रतिबद्धता देखौलनि, जाहि कारण राज्य

0: आई प्रगति के पथ पर अग्रसर अछि। श्री चौधरी कहलनि जे केंद्र सरकार द्वारा राज्य के विभिन्न मद में 12,90,000 करोड़ टाका के मदद आ आवंटन भेटल अछि, जाहि सँ राज्य में आधारभूत संरचना आ विकास काज के गति भेटल अछि। केंद्र सरकार संस्थागत औद्योगिक आ वाणिज्यिक ग्राहक लोकनि के खुदरा विक्रेता सब सँ मोटर ईंधन आ हाई स्पीड डीजल किनबा पर रोक लगा देलक अछि। ई निर्णय पश्चिम एशिया संकटक कारणे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में आयल बाधा के मध्य स्थानीय स्तर पर ईंधनक कमी के रोकबाक हेतु लेल गेल अछि। पेट्रोलियम आ प्राकृतिक गैस मंत्रालय एक अधिसूचना में कहलक अछि जे ई प्रतिबंध 90 दिन धरि लागू रहत। खुदरा विक्रेता लोकनि के निर्देश देल गेल अछि जे ओ प्रति ग्राहक प्रतिदिन बेसी सँ बेसी मात्र 200 लीटर हाई स्पीड डीजल बेचथि। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA 21 जून के होबय वाला नीट UG पुनर्परीक्षाक परीक्षा अवधि के 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कऽ देलक अछि। नव समय दोपहर 2 बजे सँ साँझ 5:15 बजे धरि रहत। संशोधित परीक्षा अवधि में अनिवार्य परीक्षा औपचारिकता लेल आवश्यक समय सम्मिलित अछि। संगहि एजेंसी प्रश्न पत्र पुस्तिका के लेल देल जाय वाला रफ वर्कशीट के 2 पृष्ठ सँ बढ़ाकर 4 पृष्ठक कऽ देलक अछि। केंद्र सरकार प्याजक खरीद मूल्य के संशोधित कऽ 1,650 टाका प्रति क्विंटल कऽ देलक अछि। उपभोक्ता मामिला, खाद्य आ सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी एक सोशल मीडिया पोस्ट में ई जनतब देलनि। बेगूसराय जिलाक बखड्डा स्थित NH 31 पर सड़क हादसा में मधेपुरा जिलाक 3 थाना प्रभारी सहित 4 गोटे की मृत्यु भऽ गेलनि। बेगूसराय के पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार जनौलनि जे साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र में काल्हि राति 4 पहिया वाहनक अनियंत्रित भऽ कऽ ट्रक सँ टकरेबाक कारणे ई दुर्घटना भेल। ओ जनौलनि जे एहि घटना मे मधेपुरा जिलाक अरार थानाध्यक्ष अमरेंद्र कुमार, बेलारी थानाध्यक्ष नीरज कुमार तथा रतवाड़ा थानाध्यक्ष साजन कुमार आ कार चालकक मृत्यु भऽ गेलनि। सब पुलिसकर्मी पटना सँ आपस घुरि रहल छलाह। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एहि हादसा मे 3 थानाध्यक्ष सहित 4 लोकक भेल मृत्यु पर अपन दुख व्यक्त कयलनि अछि। सोशल मीडिया पोस्ट मे ओ कहलनि जे दुखक एहि क्षण मे सरकार शोक संतप्त परिवारक संग अछि। आई विश्व बाल श्रम निषेध दिवस अछि। विश्वभरि मे बाल श्रमक प्रथा के समाप्त करबाक आ लोक सब के ओकर प्रति जागरूकता बढ़ेबाक उद्देश्य सँ ई दिवस मनाओल जाइत अछि। एहि वर्ष एहि दिवसक थीम अछि बाल मजदूरी के रेड कार्ड, बच्चा सभक लेल निष्पक्ष खेल, वयस्क सभक लेल सम्मानजनक काज। बाल श्रम निषेध दिवसक अवसर पर प्रदेश भरि मे कतेको जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कयल जा रहल अछि। एहि अवसर पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी प्रदेशवासी लोकनि के बच्चा सब के सुरक्षित, शिक्षित, स्वस्थ आ सम्मानपूर्ण बचपन के आर बेसी सशक्त बनेबाक आग्रह कयलनि अछि। प्रदेश में मॉनसूनक प्रभाव सँ वर्षाक स्थिति बनल अछि। मौसम विभाग जनौलक अछि जे अगिला 2 दिनक दरमियान राज्यक बेसीतर भाग में वर्षा हेबाक संभावना अछि। विभाग सँ प्राप्त जनतबक अनुसार कटिहार जिलाक प्राणपुर में सबसँ बेसी 82.8 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड कयल गेल। राज्यक शेष भाग सब में हल्का सँ मध्यम वर्षा भेल अछि, जाहि सँ अधिकतम तापमान में 3 सँ 6 डिग्री सेल्सियस धरि कमी दर्ज कयल गेल अछि। ओतहि मौसम पूर्वानुमान में कहल गेल अछि जे काल्हि राज्यक पूर्वी, उत्तर पश्चिमी आ उत्तर मध्य भाग में वर्षा भऽ सकैत अछि। एहि दरमियान दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर सहित राज्यक आनो आन जिला सब मे भारी वर्षा की चेतावनी जारी कयल गेल अछि। एहि संग आकाशवाणी दरभंगा FM रेनबो पटना सँ प्रसारित संवादक ई अंक समाप्त भेल।
1: हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं, लीजिए सुनिए ग्रामीण श्रोताओं को संबोधित कार्यक्रम गाम घर।

गाम घर सुननिहार सुधी श्रोता लोकन के विजय कुमार सिन्हाक नमस्कार। श्रोतागण, आई शुक्र दिन आजुक दिन श्रोता लोकन गाम घर कार्यक्रम के अंतर्गत नन्हा मुन्ना राही जे बच्चा सबक कार्यक्रम ओ लोक आयल छी, जाहिमे किछु गीतनाद

आ गपशप सेहो करब, मुदा ताहिसँ पूर्व कऽ ली अपनामे किछु गपशप। देखू श्रोता लोकनि, जीवनमे अनुशासनक बड़ बेसी महत्व अछि, खास कऽ नैना भुटका जे सब छथि बच्चासभ, हुनका लेल तऽ आओर बड़ बेसी महत्व अछि। जीवनमे अनुशासनक अर्थ नियम, सिद्धांत आ समय सीमाके पालन केनाइ अछि। ओ व्यक्तिके स्पष्ट लक्ष्य तय करबा, समय प्रबंधन नीक करबाक आ मानसिक तनावसँ दूर राखि कऽ सफलता दिस लऽ जेबाक सबसँ सशक्त माध्यम अछि। अनुशासनक मुख्य लाभ एहि प्रकारे अछि, जेना पहिल भेल समयक बचत। ई हमरा सबके जीवनक हर पलक सही उपयोग केनाइ सिखबैत अछि, जाहिसँ महत्वपूर्ण काज समय पर पूरा होइत अछि, समय प्रबंधन। दोसर भेल चरित्र निर्माण। श्रोतागण, अनुशासित व्यक्ति

0: एहि प्रकारे अछि जेना पहिल भेल समयक बचत। ई हमरा सबके जीवनक हर पलक सही उपयोग केनाइ सिखबैत अछि जाहिसँ महत्वपूर्ण काज समय पर पूरा होइत अछि, समय प्रबंधन। दोसर भेल चरित्र निर्माण। श्रोतागण, अनुशासित व्यक्ति अपन कर्तव्य के प्रति निष्ठावान रहित अछि जाहिसँ समाज आ परिवार में सम्मान बढ़ैत अछि। तकर बाद भेल मानसिक शांति। नियम में बनला सँ जीवन में अस्पष्टता आ संतुलन अबैत अछि जाहिसँ नकारात्मकता आ तनाव दूर होइत अछि। तहिना भेल लक्ष्यक प्राप्ति। ई केंद्रित रहबा आ अपन आदत पर नियंत्रण पाबा में मदद करैत अछि। श्रोतागण, देखियो जे जीवन में अनुशासनक भेनाय बड़ आवश्यक अछि, किएक तऽ ई व्यक्ति के व्यक्तित्व आ सफलताक कुंजी थिक। अनुशासनक अर्थ अछि नियम आ कर्तव्यक पालन केनाय। बच्चा सब, खास कर बच्चा सब जे छथि से इसकुल मे बड़ नीक सँ अपन अनुशासनक आ कर्तव्यक पालन करैत छथि, अपन माता पिता के बात मानै छथि, जाहिसँ जीवन में संतुलन आ व्यवस्था बनल रहैत अछि। बिना अनुशासन के जीवन में अव्यवस्था आ असफलता के सामना करऽ पड़ैत अछि। जखन हमसब अनुशासनक पालन करै छी तऽ हमरा समय आ ऊर्जा दुनू के सही उपयोग होइत अछि। ई हमरा सबके लक्ष्य प्राप्तिक दिशा में प्रेरित करैत अछि और हमरा कठिनाईक सामना धैर्य आ संयम सँ करबाक शक्ति दैत अछि। स्कूल, कॉलेज या कार्यस्थल में अनुशासनक पालन केनाई से केलासँ नहि केवल हमरा व्यक्तित्व निखरैत अछि बल्कि अनुशासन जे अछि ओ जीवनक आधार थिक। अनुशासित व्यक्ति अपन समय आ ऊर्जाक सही उपयोग करैत अछि जाहिसँ पैघसँ पैघ लक्ष्य हासिल केनाय आसान भऽ जाइत अछि। तहिना भेल समयक सदुपयोग। बच्चा सबके अनुशासन हमरा सबके हर काज सही समय पर करबाक प्रेरणा दैत अछि जाहिसँ जीवन में अव्यवस्था नहि पसरैत अछि। तनाव सँ मुक्ति। योजनाबद्ध तरीका सँ काज करबा सँ मानसिक दबाव कम होइत अछि और हम मानसिक रूप सँ स्वस्थ रहै छी। तहिना भेल चरित्र निर्माण। तऽ चरित्र निर्माण हमरा सबके पैघक आदर केनाय, विनम्रता आ धैर्य जेना मानवीय गुण सिखबैत अछि जाहिसँ एक नीक व्यक्तित्वक विकास होइत अछि। आ भेल सफल विद्यार्थी जीवन। छात्र आ बच्चा सभक लेल अनुशासन हुनक भविष्य नीव होइत अछि। ई हुनका एकाग्रचित भऽ कऽ पढ़ाई करबा और परीक्षा में नीक परिणाम प्राप्त करबा में सहायता करैत अछि। शिक्षा आ विकास के क्षेत्र में अनुशासन एकटा महत्वपूर्ण विषय अछि। अनुशासन मानवीय संसाधनक एकटा मूल तत्व अछि जे व्यक्ति के संगठित, नियमित आ सफल बनबैत अछि। ओ व्यक्ति के स्वयं सँ नियंत्रित करबा आ समय प्रबंधन करबा लक्ष्य प्राप्तिक लेल कर्मठता और संगठनशीलता विकसित करैत अछि। श्रोतागण, अनुशासन मनुख के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभावैत अछि। ई एकटा गुण थिक जे सफलता के मार्ग में मदद करैत अछि। ई सही दिशा दैत अछि, समयक नीक व्यवस्था करैत अछि, दृढ़ता आ समर्पणक विकसित करैत अछि। अनुशासन व्यक्ति के संयमित रखैत अछि आ सामरिक जीवन में नियमितता लबैत अछि। अनुशासन एकटा महत्वपूर्ण गुण अछि जे हमर जीवन में बड़ बेसी महत्व रखैत अछि। ई हमरा सबके संयमित, संगठित आ नियमित बनबैत अछि और हमर सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दैत अछि। तऽ गपशप करब, मुदा हमरा लोग के छोट छिन विराम लऽ लै छी।
1: पता है, दुनिया के कई विकसित देश

0: से भी है, जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: छोट छंद विराम के संग हम छी विजय कुमार सिन्हा। श्रोता लोगन, अखन हम सब गप कर रहल छी, हमरा लोगन के एक अनुशासन के जीवन में बड़ बेसी महत्व अछि। आ देखू जे अनुशासन के द्वारा हम समय प्रबंधन, काजक नियमितता, स्वस्थ जीवन शैली आ संगठित सोचक पालन कऽ सकै छी। ई हमरा सबके अपन आत्मनियंत्रण में मदद करैत अछि आ समाज में उच्च स्थान प्राप्त करबाक लेल आवश्यक अछि। त अनुशासनक पालन कयला सँ हमरा लोकनि अपन क्षमता के विकसित करै छी आ अपन जीवन में संतुष्टि आ सफलता प्राप्त करै छी। एकर बिना जीवन अव्यवस्थित, अनियमित आ अव्यवहार देखाई दैत अछि। तैं अनुशासन व्यक्ति के आदर्श रवैया, समय प्रबंधन, स्वास्थ्यपूर्ण आहार, कर्तव्य निष्ठा, सामाजिक नियम के पालन करबाक क्षमता प्रदान करैत अछि। तऽ ई गप सबके विराम देत, आब देखू आइ बच्चा सबके नमना राही कार्यक्रम हमरा लोकनि सुनि रहल छी। तऽ एहिमे सुनी हमरा लोकनि एकटा बालगीत स्वरचंद मृदुला मिश्र के, सुनल जाए।

0: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: श्रोतालोकन, एखन अपने सब ये छोट छन संदेश सब पूर्व मृदुला मिश्र के स्वर में ये बच्चा सबक गीत सुन रहा छल, बाल गीत। अब हम लोग सुनै छी एक कार्यक्रम वायु ध्वनिंकन पदार्थ किसलय उत्क्रमित मध्य विद्यालय गोसा गोसाघाट। वाचन आ संकलन छन आशुतोष कुमार झा के, आ प्रस्तुति छन असद दाऊद के। तो सुनी हमरा लोकन ही

0: मौवा पुस्तकस्थातु या विद्या पर हस्तगतं चौधनम कार्य काले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम। अर्थात पुस्तक में राखल विद्या आ दोसर के हाथ में गेल धन ई दुनू जरूरत के समय कखनो अपना सभा काज नहीं आबैत अछि। आजुक किसलय कार्यक्रम अछि उत्क्रमित मध्य विद्यालय गौसा गौसाघाट से। एतो बहुत रास धियापुता बैसल छथि आ बहुत किछु सुनाबऽ चाहे छथि तऽ आब हिनके सबसे गपशप करी। बुआ की नाम छी अहाँके?
1: श्वेता कुमारी।
0: आजुक कार्यक्रम में अहाँ की सुनाबऽ चाहे?
1: गीत
0: सुनाओ।
1: हम आनंदे रहबैया बम्भो लाके दरबार।

0: देखबै ले स्वरूप हम आनन्दे रहबै।
1: वो की नाम छी अहाँके?
2: राजीय परवीन।
1: आज कार्यक्रम में अहाँ की सुनाबे चाहे छी?
2: राष्ट्रीय गीत
1: सुनाओ।
2: मेरे प्यारे वतन तुझको सत सत नमन,

0: प्यारे वतन तुझको सत सत नमन, दिल मेरा पुकारे बंदे मातरम। तेरी मिट्टी की खुशबू मेरे सांसों में, तेरा एहसास दिल मेरे एहसासों में। तुझ पे ने उछावड़िए मेरे सारे जन्म, दिल मेरा पुकारे बंदे मातरम। मेरे प्यारे वतन तुझको सत सत नमन, दिल मेरा पुकारे वंदे मातरम।
1: बुआ की नाम छी यहाँ का?
2: मोहम्मद किस्मत।
1: आज कार्यक्रम अहाँ की सुनाबा चाहे छी?
2: राष्ट्रीय गीत
1: सुनो।
2: मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निशान है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन।
1: बुआ की नाम छी यहाँ का?
3: फातमा।
1: आज कार्यक्रम आके सुनावा चाहे?
3: ट्विंकल ट्विंकल
1: सुनो।
3: ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आर वंडर व्हाट यू आर, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक ए डायमंड इन द

0: نبی.
1: बुआ की नाम छी अहाँ के?
2: गुलफशा परवीन.
1: आज कार्यक्रम में अहाँ की सुनाबे चाहे छी?
2: राष्ट्रीय गीत
1: सुनो.
2: ए वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे. फूल क्या चीज है, तेरी कदमों पे हम भेंट अपने सरों के चढ़ा जाएंगे. ए वतन, ए वतन.

0: फायदा।
1: वो की नाम छी अहाँ?
0: मोहम्मद सलमान।
1: आज कार्यक्रम में अहाँ की सुनाबा चाहे छी?
0: कविता
1: सुनाओ।
0: जहाँ नहीं मैसूर वाला के गौन में गुथा जाऊ, जहाँ नहीं प्रेमी माला में प्यारी को लल चाहूँ, जहाँ नहीं देवो के सिर पर चटू भाग्य पर इटला, मुझे तेल लेना बनवाली देना उस पर तो तुम फेक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जाए वीर अनेक।
1: वो की नाम छी अहाँ?
2: राजिया परवीन।
1: आज कार्यक्रम में अहाँ की सुनाबा चाहे छी?
2: राष्ट्रीय गीत
1: सुनाओ।
2: बतन।

0: बउआ श्रावस्ती का हाथी अपन ताकत बहादुरी आ लड़ाई के मैदान में अड़ल रहबाक लेल बहुत बेसी प्रसिद्ध छल। श्रावस्ती के राजा ओकर पीठ पर बैस के बहुतो रास लड़ाई जीतलनि आ अपन राज्यक विस्तार कयलनि। एक दिन जंगल भ्रमण के दौरान पैर फिसलबाक कारणे ओ हाथी एकटा दलदल वाला डबरा में फंसि गेल। साँझ होते महल में हाथी के खोज प्रारंभ भ गेल। सैनिक सब ओकर पैरक निशान ताकत ताकत डबरा तक पहुँचला आ ओत पहुँचला के बाद बाँसक फट्ठा आ रस्सी सबक सहायता से सब गोटे ओकरा निकालबाक बहुत प्रयास सेहो कयलनि, मुदा सब गोटे असफल भ गेला। हाथी सेहो फसल लाचारी के नोर बहाबऽ लागल। जखन राजा तक ई समाज पहुँचल तखन ओ दौड़ले जंगल अयला आ स्थित देखला के बाद आदेश देलनि जे नगारा आ तुरही एहन बाजा सब आनि के जंगल के बाहर बजाओल जाय। अहिना कयल गेल। अपन आदत के अनुसारे हाथी जखन युद्धक रणभेरी आ नकारक तुमुल ध्वनि सुनलक जोर के चिंघार लगाबैत एकटा भारी प्रयासक संग दलदल के ओ बाहर आबि गेल। जखन राजा से पूछल गेल तखन ओ हंसत बजला जे बस हम ओकर मूल स्वभाव के ओकरा याद दिया देलिए। कहबाक तात्पर्य यह जे एकटा नीक आदर्शवादी व्यक्ति आ रोल मॉडल सेहो यह करै छथिन, ओ गुरु होथि वा माता पिता या आनो कोनो विशिष्ट व्यक्ति। हुनकर यह कार्य छनि जे अपना सबके मोन पारने रहथि जे प्रत्येक मनुष्य में बेस क्षमता आ असीम शक्ति नुकायल रहै छै। हुनके सबक प्रेरणा अपना सबके उत्साहित करैत अछि आ संगहि सफलता प्राप्त करबा में सेहो सहायता करैत अछि।
1: एक संग हम आजुक कार्यक्रम के विराम दै छी। एक बेर फेर एहि विश्वासक संग विदा लै छी जे फेर भेंट होयब अगिला शुक्र दिन अहिना कोनो आन विद्यालय के बच्चा के मुख सँ किस लाइक संग धियापुता जय हिंद।

श्रोता लोकनि एखन अपनेसभ किछु लए सुनि रहल छलहुँ एहि कार्यक्रम अन्तर्गत उत्क्रमित मध्य विद्यालय गौसा गौसाघाट। वाचन एवं संकलन छलनि आशुतोष कुमार झाके, प्रस्तुतकर्ता छलाह असद दाऊद। देखू श्रोता लोकनि, जे डिजिटल सशक्तिकरण आ बदलैत ग्रामीण भारतक सीधा सम्बन्ध डिजिटल इंडियासँ अछि। भारतमे सुगम जीवन आ डिजिटल अर्थव्यवस्था पहिनहिसँ अछि, जे आधुनिक तकनीक जेना स्मार्टफोन, इंटरनेट आ ई गवर्नेंस के माध्यमसँ ग्रामीण क्षेत्रक सामाजिक आर्थिक तस्वीर बदलि रहल अछि। हमर सबके देशमे डिजिटल परिवर्तन आ ओकर विकास, एहिसँ ग्रामीण नागरिक धरि सरकारी योजना, बैंकिंग सेवा आ कृषि सम्बन्धी जानकारी पहुँच आसान भऽ गेल अछि। ग्रामीण भारतमे भऽ रहल एहि डिजिटल बदलावके मुख्य बिंदु द्वारा आसानीसँ बुझल जा सकैत अछि, जेनाकि डिजिटल वित्तीय समावेशन, एहिमे कैशलेस लेन

लेन यूपीआई इत्यादि जेना माध्यम गाम के छोट दुकानदार आ किसान सब के सेहो डिजिटल भुगतान सँ ई जोड़ने अछि। दोसर भेल कृषि आ मौसमक सटीक जानकारी। किसान ऐप आ डिजिटल कृषि ई एआई सक्षम सलाहकार के माध्यम सँ किसान भाई लोकनि के लेल मौसम चेतावनी, कीट नियंत्रण जानकारी आ मंडीक भाव सीधा मोबाइल पर मिलत अछि। तकर बाद भेल मृदा स्वास्थ्य कार्ड। कृषि के गुणवत्ता के सुधारक लेल डिजिटल डेटाबेसक उपयोग भऽ रहल अछि। तैं अखन के समय में डिजिटल सशक्तिकरण बड आवश्यक अछि आ एहिसँ हमरा श्रोता लोकनि के आ किसान भाई लोकनि के सेहो बेसी से बेसी लाभ भेटतनि। आ देखियौ श्रोतागण, जे देखिए रहल छी गर्मी बड बेसी पड़ि रहल अछि। गर्मी में स्वास्थ्यक देखभाल आ लू सँ बचबाक लेल हमरा लोकनि के बचेनाइ बड़ आवश्यक अछि। तऽ गर्मी में स्वस्थ रहबाक आ लू सँ बचबाक लेल शरीर के हाइड्रेटेड रहनाइ, धूप सँ बचाव केनाइ आ हल्लुक पौष्टिक आहार लेनाइ सबसँ आवश्यक अछि। बढ़ैत तापमान आ गर्म हवा थकान, डिहाइड्रेशन आ गंभीर बीमारी के कारण बनि सकैत अछि। लू सँ बचाव आ स्वास्थ्यक देखभालक लेल बड़ जरूरी उपाय सब अछि, जेना भेल कि हाइड्रेशन आ खान पान, पर्याप्त पानि पीबी, दिन भरि में कम से कम 3 से 4 लीटर पानि जरूर पीबी, सादा पानि के अलावा नींबू पानि आ ORS, छाँछ आ नारियलक पानिक सेवन अवश्य करी, मौसमी फल खाए, ओहिमे जेना भेल तरबूज, खरबूजा, खीरा आ ककड़ी जेना पानि सँ भरपूर फलक अपन डाइट मे शामिल करी, हल्लुक भोजन करी, ओहिमे तरल, भूजल, मसालेदार आ भारी खाना पचेबा मे बड़ मुश्किल होइत अछि। हल्का आ ताजा घरक भोजन बनायल खाना खाए आ दुपहरिया मे धूप सँ बची। दिनक सबसे गर्म समय अर्थात सुबह 11 बजे सँ शाम 4 बजे के बीच घर सँ निकलनाय बड दिक्कत भऽ जाइत अछि। तैं बिना काज के बाहर नहि निकली, जँ निकलै छी तऽ हल्लुक रंग के सूती कपड़ा पहिरी। ई पूरा शरीर के अहाँके ढकै वाला कपड़ा सेहो पहिरी। घरेलू आ कार्यस्थल पर सेहो सावधानी रखी आ सीधा हवा सँ बची, सीधा धूप सँ घर लौटलक तुरंत बाद एकदम ठंडा पानि पीबी, आराम करी आ चिलचिलाती धूप में बेसी नहि निकली। तऽ एहि संग आज गाम घर कार्यक्रम सम्पन्न भेल। आब हमरा लोकनि खेती गृहस्थी कार्यक्रम में प्रवेश कऽ गेल छी। तऽ श्रोता लोकनि, सबसे पहिने हमरा लोकनि खेती गृहस्थी कार्यक्रम में किसान भाई लोकनि के स्वागत करै छियनि। आ देखू किसान भाई लोकनि, हमरा लोकनि अखन गप करब फसल में कीट नियंत्रण। तऽ एहिसँ किसान भाई लोकनि के बेसी से बेसी जानकारी के लाभ हेतनि। श्रोतागण देखियौ, जे फसल में कीट सँ बचावक लेल एकीकृत कीट प्रबंधन सबसे नीक तरीका अछि। एहिमे जैविक, यांत्रिक, सांस्कृतिक आ रासायनिक उपायक सही तालमेल होइत अछि। कीड़ाक पहचान कऽ कऽ सही समय पर सही दवाक उपयोग उपज के भारी नुकसान सँ बचबैत अछि। फसिल के अनुसार कीटक नियंत्रित करबाक मुख्य प्रभावी तरीका एहि प्रकार अछि, जेनाकि जैविक नियंत्रण। ई जे अछि हानिकारक कीड़ा के खाएवला मित्र कीट जेना लेडी बर्ड बीटल आ जैविक दवा जेना नीमक तेल, बेवेरिया बेसियाना या ट्राइकोग्रामा एकर उपयोग करी हमरा लोकनि।
सांस्कृतिक

0: विधि भेल अहाँके फसल चक्र, एहिमे गहीर जुताइसँ नुकायल कीड़ाके धूपमे नष्ट करी आ खेतके खरपतवारके मुक्त राखी। कीट नियंत्रणसँ आशय कीटके रूपमे परिभाषित प्रजातिक नियंत्रण वा प्रबंधनसँ अछि, किएक तँ ई आमतौर पर हुनका व्यक्तिके स्वास्थ्य, पारिस्थितिकी या अर्थव्यवस्थाके लेल हानिकारक मानल जाइत अछि। देखियौ श्रोता लोकनि, जे कीट नियंत्रणक इतिहास सेहो लगभग ओतबे पुरान अछि जतबा कि कृषिक, किएक तँ फसलके हमेशासँ कीट मुक्त रखबाक आवश्यकता रहल अछि। खाद्य पदार्थके उत्पादनक बेसी करबाक लेल फसिलके पौधाके प्रतिस्पर्धी प्रजातिके सङ्ग सङ्ग मनुष्यके सङ्ग प्रतिस्पर्धा करयवला शाकाहारी पशु पक्षीसँ बचेबाक सेहो लाभप्रद होइत अछि। कीट नियंत्रणके प्राकृतिक तरीकामे परजीवी आ परजीविक उपयोग कऽ कऽ जैविक नियंत्रण, भौतिक अवरोध, स्वच्छता जेना सांस्कृतिक प्रथा आ यांत्रिक जाल सेहो शामिल अछि। ई तरीका कृत्रिम रसायनसँ बचैत प्रभावी कीट प्रबंधन प्रदान करैत अछि। सब्जीक फसिलमे किछु सामान्य कीटमे एफिड्स, सफेद मक्खी, कैटरपिलर, थिप्स आ भृंग सेहो शामिल अछि। तऽ गपशप कनि करब थमिकऽ, मुदा हमरा लोकनि सुनी किछु संदेश।
1: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
2: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: छोट छिन विराम के संग हम छी विजय कुमार सिन्हा, हमारा लोकन खेती गृहस्थी कार्यक्रम सुन रहल छी। आ देखियौ श्रोतागण, जे एहि कीट नियंत्रण जे अछि ओ जैविक कीट नियंत्रण, प्राकृतिक परजीवी तथा परभक्षीके नियंत्रण एवं प्रबंधन द्वारा प्राप्त कयल जाइत अछि। उदाहरणक लेल, मच्छर पर नियंत्रित करबाक लेल बेसिलस नामक एकटा बैक्टीरिया डालि देल जाइत अछि, जे मच्छरके लार्वाके संक्रमित कऽ कऽ नष्ट कऽ दैत अछि। प्रजनन क्षेत्रक अनुपूर्ण, एहिमे उचित अवशिष्ट प्रबंधन आ रुकल पानिक उचित निकासी कतेको कीटके प्रजनन क्षेत्रके उन्मूलनमे सहायक होइत अछि। कृषिमे कीटक यांत्रिक, सांस्कृतिक, रासायनिक आ जैविक तरीकासँ नियंत्रित कयल जाइत अछि। तौकसँ पहिने माटिक जोताइ आ खेती करबासँ कीटक प्रकोप कम होइत अछि, आ फसल चक्रणसँ कोनो विशेष कीट प्रजातिके फैलावके कम करबामे मदद मिलैत अछि। कीट नियंत्रक अधिकांश विशिष्ट विधिके निम्न प्रमुख श्रेणीमे वर्गीकृत कयल जा सकैत अछि, जेना सांस्कृतिक नियंत्रण, मेजबान प्रतिरोध, भौतिक नियंत्रण, यांत्रिक नियंत्रण, जैविक नियंत्रण आ रासायनिक नियंत्रण। सब्जी फसलके प्रमुख कीट सब अछि तना छेदक, पत्ती मोड़क, फल मक्खी, अप्पू आ व्हाइट फ्लाई। फसलक लेल हानिकारक कीट ओ होइत अछि जे पौधाके विभिन्न हिस्सा जेना पत्ती, तना, फूल आ फलके खा कऽ वा ओकर रसके चूसि कऽ भारी नुकसान पहुँचबैत अछि। एहिमे प्रमुख कीट, ओकर प्रजाति आओर ओहिसँ प्रभावित होमयवला फसलक विवरण एहि प्रकारे अछि।

जेना एफिड्स, ई भेल एफिड्समे फसल गहूम सरसो सब्जी आ फल, एकर नुकसान ई बड़ छोट कीड़ा होइत अछि जे पौधाके रस चूसैत अछि जाहिसँ पत्ती मुड़ि जाइत अछि आ पौधाक विकास रुकि जाइत अछि। जैविक कीट नियंत्रण जकरा अक्सर बायो कंट्रोल सेहो कहल जाइत अछि, ई कीटके नियंत्रित करबाक एक विधि अछि जाहिमे प्राकृतिक परजीवी आ रोगजनक उपयोग कयल जाइत अछि। ई दृष्टिकोण प्रकृतिके सङ्ग साझेदारी कऽ कऽ पारिस्थितिकी तंत्रके संतुलितके बनाएल रखैत अछि आ हानिकारक रसायनके सहारा लेल बिना फसल रक्षा करैत अछि। जैविक कीट नियंत्रणमे प्रजनन क्षेत्रक उन्मूलन, उचित अवशिष्ट प्रबंधन आ रुकल पानिक उचित निकासी कतेको कीटक प्रजनन क्षेत्रके उन्मूलनमे सहायक होइत अछि। एकरा भेल जहरीला चारा, जहरीला स्प्रे, जाल, जीवाणुमुक्त बननाइ इत्यादि, ई सब कीट नियंत्रणके प्रकार अछि। एकर जे मुख्य उद्देश्य अछि मानव स्वास्थ्य पर्यावरणके हानिकारक कीटसँ ई सुरक्षित रखैत अछि। तऽ हमरा लोकनि एखन सर्च कऽ रहल छलहुँ अपना लोकनि फसलमे कीट नियंत्रण, तब किसान भाई लोकनि अपना सबके देख रहल छी, अपना सब गीत सुनल बड़ उग्र भेल छी। तऽ सुनी हमरा लोकनि एकटा गीत स्वरछन्द अरविन्द कुमार झाके, सुनल जानका सुनमी गीत।

0: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: श्रोता लोकन, एखन हमरा लोकन रविन्द्र कुमार झा के स्वर में ये गीत सुन रहल छलहुँ। आब हमरा लोकन सुनै छी एकटा भेंट वार्ता बांस कला अर्थात बेम्बू आर्ट से जुड़ल कलाकार, भेंट वार्ताकार छथि राम केवल प्रसाद, आ भेंटकर्ता छथि आशुतोष कुमार झा, प्रस्तुति असद दाऊद के छनि। तो सुनी हमरा लोकन ई भेंट वार्ता।

0: आकाशवाणी दरभंगा सुनानिहार समस्त अन्नदाता किसान लोकन का आशुतोष कुमार झा दिस स्वागत और नमस्कार। किसान भाई लोकन, कृषि में जे किसान भाई नवीनतम तकनीक अपनावे छथि आ बेहतर उत्पाद करे छथि, हुनका अपना सब कहे छियनि प्रगतिशील किसान। प्रगतिशील किसान कृषि से जुड़ल क्षेत्र में अपन उपलब्धि के लेल जानल जाय छथि। ई कृषि में नवीनतम तकनीक का अपनाबे छथि, बेहतर उत्पादन करे छथि और संगहि कृषि से जुड़ल क्षेत्र में उपलब्धि सेहो हासिल करे छथि। त आओ आजुक दिन अपना सब गप करे छी एकटा एहने प्रगतिशील किसान सब। एखन हमरा संग छथि बैम्बू आर्ट से जुड़ल एकटा कलाकार, हिनके से आई गप करे छी। जी की नाम छी अहाँके?
1: मेरा नाम राम केवल प्रसाद हुआ, मेरा घर हुआ ग्राम निसरपुरा थाना नवतपुर जिला पटना। मेरा पिताजी के नाम है मुंदिरका मंडल के नाम से लोग भी जानते हैं।
0: अहाँ बैम्बू आर्ट से जुड़ल छी।

0: का समय में जखन कि बाँसक ओतेक बेसी उपलब्ध तो नहीं है, पहले तो गामे गाम हो बस बिट्टी, तो केना अहाँ के मन में आयल जे अई कला से जुड़ी?
1: हमरे यहाँ सर जो घर जो है वो बांस के बगल में ही है, बांस छोटा छोटा बांस होता है, फिर भी आंगन में ही वो टपकता है बांस, माने कि एकदम झूलते रहता था, हुआ चीज से कुछ बनाया जाए, क्योंकि गाँव में लोग उसका छड़ी काट करके लोग टोकरी बनाते थे, हम भी तो कुछ कर सकते हैं। और उस समय हम मैट्रिक में पढ़ रहे थे, लेकिन दिमाग में बच्चे से रहते कुछ ही, उसको घेरनी उड़नी बना करके बेचते थे दशहरा मेला में, वो 2 रुपया में बिक जाता था, 2 रुपया मेरे लिए मायने रखता था, लगता था कि नहीं हमारा उपलब्धि अगर 10 गो बिक गया था 20 रुपया, उस समय 4 रुपये 5 रुपये की जिलेबी मिलता था, समय 2 रुपया मेरे लिए मायने रखता था, 2 रुपया बिक गया और दशहरा में हम 20 रुपया के बेच देते थे, अपने आप को राजा समझते थे कि मेरे पास 20 रुपया है, इतना मज़ा आता था। और जब ट्राइसम योजना का प्रशिक्षण निकला तो उस समय 100 रुपया स्टाइपर मिलता था 1991 में, उसमें वो ब्लॉक स्तर से था, वो 6 महीना का प्रोग्राम था, तो उसमें हमने रामनाथ शर्मा टीचर थे, वह कहे कि अरे बांस में बहुत कुछ करने को मिलेगा, से ट्रेनिंग ले लीजिए, हम ठीक है सर ऐसे भी पढ़ाई लिखाई कर ही रहे हैं, ट्रेनिंग ले लेते, और ट्रेनिंग आज जो है से मेरे बहुत काम का है।
0: तो की परेशानी से आजुक समय में अई कला से जुड़ल आदमी के?
1: हाँ, दिक्कत होता है कि बांस समय समय पर रॉ मटेरियल जो चाहिए वो तरह तरह की बांस नहीं मिलता है गांव में, लेकिन जब पटना में आए तो बांस बहुत तरह के देखे, जो कि पूरे इंडिया में बांस 102 तरह का होता है। उस समय जब गांव में थे और ट्रेनिंग ले रहे थे तो उस समय माल तो कम मिलता था, लेकिन जिस तरह का माल मिलता था उसी मटेरियल में मिलता था, 4-5 आइटम ही बनाते थे।
0: तो जेना अहाँ के सर कहल जो अहाँ एक कला से जुड़ू, तो केना अहाँ जुड़लिए और की अहाँ के लिए से कनी कहूँ?
1: बांस कला से क्या कहूँ, उस समय तो घर नहीं बना पाया था, लेकिन आज के डेट में हमने 22 कट्ठा जमीन खरीदा है। एक कला असंख्य है सर, इसमें आप बुढ़ारे तक आप सीख ही सकते हैं, टीचर भी हो सकते हैं, स्टूडेंट भी हो सकते हैं, उसमें कभी खत्म होने वाला चीज ना है। तो उससे हमने ब्लॉक स्तर से बढ़ करके हम स्टेट स्तर में आए, तो पटना में उपेंद्र महारथी इंस्टीट्यूट, उसमें 2008 में हमने प्रशिक्षण लिया, जिसमें उसमें केमिकल क्या क्या लगेगा, कौन सा वराइटीज की जरूरत पड़ता है, बांस मोड़ने में क्या क्या आवश्यकता पड़ता है, ये पूरा जानकारी वहाँ से मिला। तब से हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा और हमारे पीछे बहुत लोग आज जुड़े हुए हैं जो इस कला में निपुण हुए हैं, काम कर रहे हैं।
0: अही एहन बहुत एहन युवा छथि जे एहि कला से जुड़े चाहे छथि, तो युवा केना जुड़ता एहि कला से?
1: हाँ सर, ये बात बहुत अच्छे छेड़े, और जहाँ भी प्रोग्राम लगता है, मेला वगैरह लगता है, सब जगह हम जाते हैं, और जो इच्छुक स्टूडेंट है उनको कहते हैं सीख लो, इसके लिए आपको पटना में इंस्टीट्यूट है, वहाँ आपको 6 महीना का प्रशिक्षण मिलता है, तो आप उससे फायदा उठा सकते हैं। और हम कहते हैं कि आप दिल्ली बम्बई में जाके काम करते हैं, वो आप घर में एक कलाकार हो गए तो आपका पूरा घर कलाकार ही होगा।
0: बड़ा नीक अहाँ कहलहुँ, लेकिन एकटा चीज छै, एखुनका समय में सोचे छथि लोग जे छिटा पथिया घर में रखले रहि जाइ छथि, हुनका तऽ पता नहि छनि कि बांस से असंख्य कला बनायल जा सकै छै।
1: सर देखिए, हम मेला में इसीलिए आते हैं कि लोग देखते तमाक खुलता है, लगता है अभी देखिए हम 50 रुपया में कप बेच रहे हैं, अगर हम खाली कप बना दे एक बांस से कम 5,000 का बन जाएगा। 10 रुपया से मेरे यहाँ आइटम शुरू है, चाभी रिंग बना दिए 10 रुपया का, कोई भी ले लेता है, चाभी रिंग रखेगा 6 महीना रखेगा तो भी असूल हो गया, चूड़ी है, क्लिप है, पेन स्टैंड है, लेटर बॉक्स है, ट्रे है, सोफा तक ले बनाते हैं हम।
0: बहुत नीक नीक कलाकृति सब इतना रखल छे ये सोच नहीं सके छे जी केना बनाए।
1: हमें सर 150 तरह का आइटम मेरे पास है और सभी बच्चे लोग मिल के बनाते हैं, और जहाँ मेला में गए कस्टमर को डील तो करते ही है, साथ में उनको माइंड को भी पढ़ते है कि उनको क्या चाहिए, तो उस तरह के आइटम हर मेला में हर समय हम उतारते हैं, साल में चाहते हैं कि नया से नया आइटम बने ताकि मेरा डिमांड बढ़ते रहे और हम लोग का बिजनेस चालू रहे।
0: मतलब युवा सब के यो बुझना जरूरी छन कि बांस में केवल उन्हीं कलाकृति नहीं बनाल जा सके छे, में किछ केमिकलो लागे छे, ओकरा लेल अहाँ को प्रशिक्षण भेटना जरूरी है, तो एमे की अवसर छे, केना केना आदमी बना के केना कमा सके छे?
1: कमाई की बात कहे तो हम खुद अपने आप को कहे, दूसरों को क्या कहेंगे, हम अपने आप का 2-2 बेटा मेरा पढ़ लिखा गया और बिजनेस में भी हरेक प्रोग्राम में जाते हैं, इसमें सरकार निःशुल्क देती है हम लोग का, प्लस रहने का भी व्यवस्था सरकार देती है।
0: युवा का ये कहियो जे युवा अहाँ से मान लिया जुड़ा चाहे तो केना जुड़े?
1: हमसे संपर्क कीजिए, जो भाई दिल्ली बम्बई में जाके कमाते हैं उनसे कहें कि आप घर में बैठ के कमाइए, उससे ज्यादा कमाई करेंगे।
0: केवल सपना देखला से किछ नहीं होइ छे, मेहनत करला से होइ छे। अहाँ बड़ा नीक कहलो हाँ, एतो जतेक कलाकृति छे बनायल बांसे से छे, मुदा ओकरा लेल माल अलग अलग छे, केमिकल अलग अलग छे, ई सब केवल प्रशिक्षणे से ज्ञात भो सकैत अछि। तो केवल इनारक मेढक नहीं बनि, हम सब अगर घर से बाहर निकली तो अपन कला के अनंत ज्ञान जे से लऽ सकै छी। तो युवा कहाँ की कह चाहे छे?

0: युवा लोग के यही कहेंगे कि आप प्रशिक्षण लीजिए और ज्यादा से ज्यादा एक के जी नौकरी से ज्यादा अवसर इसमें, नौकरी में आपका बंधा हुआ पे आता है। आप 20,000 कमाते हैं या 50,000 कमाते हैं, वो बंधा हुआ पे है। हम लोग जो है से घर में रात दिन ठंडे में बैठ के काम करते हैं, 4 घंटा या 6 घंटा या जो मिला टाइम, पार्ट टाइम में भी करते हैं, फुल टाइम में भी करते हैं। और एक साथ सरकार प्रोग्राम देता है, मेला में जाइए, एक मेला में लाखों रुपए का सेल होता है।
1: तो बिजनेस बहुत नीक है, केवल बुझेबाक जरूरी
0: है। जी, इसका कोई लिमिट नहीं कि आपकी कमाई कितना में जाएगा। और नौकरी में है कि आप बंधा हुआ है, आप दूसरे के अंदर में वर्क कर रहे हैं। आप रात में भी 2 घंटा खट सकते हैं, सुबह में भी खट सकते हैं, इसका कोई लिमिट नहीं है। और इसका कमाई आप सोच ही नहीं सकते कि नौकरी वाले उतना कर पाएगा।
1: आंगन में लटकल बांस का देख कर जो यहाँ का ललक जागल, वो अहाँ का करोड़पति बना देला।
0: जी जी जी जी,
1: तो सपना वह देखी जे लोग पास में रहे।
0: जी जी,
1: और वैसे जुड़ल अगर जमीनी सपना रहे छे तो यथार्थ में लाभ में अपना सबके बेसी प्रयास नहीं करो पड़े और आगू बढ़ना आसान हो। एखन हमारा संग चलते बैम्बू आर्ट से जुड़ल कलाकार राम केवल प्रसाद जी।

खेती गृहस्थी किसान भाइयों को संबोधित था। यह आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार होंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: दूसरी पड़ोसी है। पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर
3: करते हुए फील्डर से नहीं रुकी है गेंद सीमा रेखा के बाहर,
2: मन की बात के संवाद तक
4: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प।

0: बोले अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: और इस गीत के बाद छाया की

0: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
1: जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाए
2: नमस्कार ये आकाशवाणी पटना है अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए पहले मुख्य समाचार मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों के कारण भारत के साथ साथ बिहार लगातार प्रगति पथ पर आगे बढ़ रहा है बेगूसराय जिले के पखट्टा स्थित NH 31 पर सड़क हादसे में मधेपुरा जिले के 3 थाना प्रभारियों समेत 4 लोगों की मौत 14 जून को होने वाली मद्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा में धांधली की साजिश को पुलिस ने किया नाकाम 2 लोगों की गिरफ्तारी कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जब्त और मौसम विभाग का पूर्वानुमान अगले 2 दिनों में राज्य के अधिकतर हिस्सों में शुरू हो जाएगी मॉनसून की बारिश अब समाचार विस्तार से भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है उन्होंने कहा कि निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने सबसे लंबे कार्यकाल का रिकॉर्ड बनाया है जो जनता के विश्वास का प्रमाण है श्री चौधरी मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर पटना में आयोजित मीडिया संवाद को संबोधित कर रहे थे
3: आज लगभग 12 साल आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हुए हैं साथियों और 12 साल के इतिहास में मैं सर्वप्रथम उनको बधाई भी देता हूं कि आज इस देश के लोकतंत्र की व्यवस्था में जब से आजादी मिली और लोकतंत्र स्थापित हुआ 1952 में तब से सबसे लंबे समय तक कोई प्रधानमंत्री के पद पर रहे हों इसके लिए इस मंच के माध्यम से मैं देश के यशस्वी

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं।
1: श्री चौधरी ने कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35 ए को समाप्त करना भाजपा की ऐतिहासिक प्रतिबद्धता थी, जिसे प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पूरा किया गया। इसके अलावा अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का सपना भी पूरा हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल में बिहार के विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखाई। राज्य को विभिन्न मदों में 12,90,000 करोड़ रुपए की सहायता

0: मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल में बिहार के विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखाई। राज्य को विभिन्न मदों में 12,90,000 करोड़ रुपए की सहायता और आवंटन मिला। श्री चौधरी ने बताया कि राजगीर और मुंगेर में डिफेंस कॉरिडोर विकसित करने की योजना है, जिससे औद्योगिक विकास और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने एक वर्ष में 5,00,000 करोड़ रुपए निजी निवेश का लक्ष्य रखा है और इस दिशा में लगातार प्रगति हो रही है।
1: बिहार में उद्योग लग रहे हैं और आगे के दिनों में लक्ष्य है कि हर हालत में 20 नवंबर को जब एनडीए सरकार का एक साल पूरा होगा तो लगभग 5,00,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट को जमीन पर उतारने का काम, इसकी व्यवस्था पर हम लोग चिंता कर रहे
0: हैं। राज्य के वित्तीय प्रबंधन से जुड़े मुद्दे पर श्री चौधरी ने कहा कि वित्तीय स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और सरकार नियोजित तरीके से अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, हेल्थ केयर, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और गवर्नेंस तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं और पूरे देश में विकास परिदृश्य बदल रहा है। केंद्र सरकार ने संस्थागत औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों को खुदरा विक्रेताओं से मोटर ईंधन और हाई स्पीड डीजल खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। खुदरा विक्रेताओं को निर्देश दिया गया कि वे प्रति ग्राहक प्रतिदिन अधिकतम 200 लीटर हाई स्पीड डीजल ही बेचें। केंद्र सरकार ने प्याज के खरीद मूल्य को संशोधित करके 1,650 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की परीक्षा अवधि को 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दिया है। ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: संशोधित परीक्षा अवधि में अनिवार्य परीक्षा औपचारिकताओं के लिए आवश्यक समय शामिल है। एजेंसी ने कहा है कि ये सुधार पिछले कई वर्षों में उम्मीदवारों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर किए गए हैं। इसके अलावा एजेंसी ने प्रश्न पत्र पुस्तिका के साथ दिए जाने वाली रफ शीट को 2 पृष्ठ से बढ़ाकर 4 कर दिया है। पुराने लेआउट के असुविधाजनक होने की प्रतिक्रिया के बाद कुछ छात्रों, विशेषकर बाएं हाथ से लिखने वाले छात्रों के लिए यह सुधार किया गया है। एनटीए ने कहा कि परीक्षा डिजाइन में छोटे छोटे सुधार भी एक महत्वपूर्ण परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों के अनुभव पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए निष्पक्षता और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और उम्मीदवार अनुकूल बनाने के उद्देश्य से ये उपाय लागू किए गए हैं। इसके साथ ही उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए परीक्षा कर्मचारियों के साथ सहयोग करें। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
3: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है। देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: AIR at 90. प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। बेगूसराय जिले के बखड्डा स्थित NH 31 पर सड़क हादसे में मधेपुरा जिले के 3 थाना प्रभारियों समेत 4 लोगों की मौत हो गई। बेगूसराय के पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार ने बताया कि साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र में देर रात चार पहिया वाहन के अनियंत्रित होकर ट्रक से टकराने के चलते हादसा हुआ। उन्होंने बताया कि मधेपुरा जिले के अरार थानाध्यक्ष अमरेंद्र कुमार, बेलारी थानाध्यक्ष नीरज कुमार तथा रतवारा थानाध्यक्ष साजन कुमार और कार चालक की मौत हो गई। सभी पुलिसकर्मी पटना से वापस लौट रहे थे।
1: देर रात में ये एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें 4 लोग की दुखद मृत्यु हुई। इसमें 3 पुलिस ऑफिसर्स मधेपुरा पुलिस के सर्विंग SHOs और एक जो ड्राइवर थे, इस गाड़ी से लौट रहे थे, उसका एक्सीडेंट हुआ है ट्रक से साहेबपुर कमाल थाना अंतर्गत हाईवे पे। उसका इन्वेस्टिगेशन जारी है। गाड़ी पटना से होते ही मधेपुरा की तरफ जा रही।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हादसे में 3 थानाध्यक्षों समेत 4 लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में सरकार शोक संतप्त परिवारों के साथ है। बेगूसराय में 14 जून को होने वाली मद्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा में धांधली की साजिश नाकाम हुई है। तकनीकी शाखा और पकड़ी थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए परीक्षा में सेटिंग कराने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि छापेमारी कर आरोपियों के पास से बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बरामद किए गए। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान राजेश रोशन और दुलार चंद यादव के रूप में हुई है। पुलिस ने उनके पास से वॉकी टॉकी, ब्लूटूथ डिवाइस लगा चप्पल, मोबाइल फोन, माइक्रोफोन, चार्जर तथा कई अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र समेत अन्य उपकरण जब्त किए हैं। इससे पहले बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा में भी धांधली और अवैध लाभ पहुंचाने के खिलाफ पटना के सचिवालय थाने में 563 अभ्यर्थियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इस मामले में मुंगेर और अरवल से 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सचिवालय थाना की अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अनु कुमारी ने बताया कि धांधली और साइबर गैंग की संलिप्तता की जांच की जा रही है।
2: कुल 10 अभ्यर्थी को अरवल एवं मुंगेर जिले से गिरफ्तार किया गया है तथा इसमें अग्रतर कार्रवाई करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष उन्हें उपस्थापित किया जा रहा है। अभी तक इस कांड में कुल 88 अभियुक्तों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की गई है। इनमें से कुछ जो हैं वो स्कॉलर हैं, कुछ जो हैं वो अभ्यर्थी हैं, इन सबका सत्यापन किया जा रहा है।
0: मुजफ्फरपुर के एक निजी अस्पताल में पिछले दिनों हुए भीषण अग्निकांड मामले की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट में कई अनियमितता सामने आई है। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सिंह ने बताया कि अस्पताल भवन का निर्माण स्वीकृत नक्शे के अनुरूप नहीं हुआ था। उन्होंने बताया कि इस मामले में नगर निगम ने अस्पताल प्रबंधन को नोटिस भेजा है। भारतीय निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का आज नई दिल्ली के एक अस्पताल में निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, खेल मंत्री मनसुख मांडविया और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उनके निधन पर गहरा शोक जताया है। आज विश्व बाल श्रम निषेध दिवस है। दुनिया भर में बाल श्रम की प्रथा को समाप्त करने और लोगों को उसके प्रति जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष इस दिवस की थीम है बाल मजदूरी को रेड कार्ड, बच्चों

0: के लिए निष्पक्ष खेल, वयस्कों के लिए सम्मानजनक काम। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव तथा श्रम संसाधन और प्रवासी श्रमिक कल्याण मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार बाल श्रम मुक्त बिहार बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। हमारे संवाददाताओं ने बताया कि इस अवसर पर राज्य भर में कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले दो दिनों में राज्य के अधिकतर हिस्सों में मॉनसून की बारिश शुरू हो जाएगी। विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान कटिहार जिले में भारी बारिश हुई है। जिले के प्राणपुर में सबसे अधिक 82.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। राज्य के अन्य हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। बारिश होने से अधिकतम तापमान में 3 से 6 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। इधर विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि कल राज्य के पूर्वी, उत्तर पश्चिमी और उत्तर मध्य भागों में बारिश हो सकती है। इस दौरान किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर और बांका जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।
1: राज्य के पूर्वी भाग के अनेक स्थानों पर वर्षा की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिम एवं उत्तर मध्य कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना है, जबकि शेष भाग के एक या दो स्थानों पर वर्षा की संभावना है। राज्य के दक्षिणी और उत्तर पश्चिमी जिलों में कुछ जगहों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर मध्य एवं पूर्वी भाग के जिलों एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर और बांका जिलों में एक दो जगहों पर भारी बारिश की संभावना है।
0: राजधानी पटना में बिहार इंटरवेंशनल काउंसिल का चौथा वार्षिक अधिवेशन कल से शुरू हो रहा है। दो दिवसीय इस अधिवेशन में देश विदेश के कई जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ शामिल होंगे। भोजपुर जिले के धनगाई थाना क्षेत्र अंतर्गत महोरही ओवरब्रिज के पास से उत्पाद विभाग और राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो की टीम ने एक ट्रक से 1,35,00,000 रूपये मूल्य की शराब के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों के कारण भारत के साथ साथ बिहार लगातार प्रगति पथ पर आगे बढ़ रहा है। बेगूसराय जिले के बखड्डा स्थित NH 31 पर सड़क हादसे में मधेपुरा जिले के 3 थाना प्रभारियों समेत 4 लोगों की मौत। 14 जून को होने वाली मद्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा में धांधली की साजिश को पुलिस ने किया नाकाम, 2 लोगों की गिरफ्तारी, कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जब्त। और मौसम विभाग का पूर्वानुमान, अगले 2 दिनों में राज्य के अधिकतर हिस्सों में शुरू हो जाएगी मॉनसून की बारिश। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है औरंगाबाद जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता कमल किशोर।
1: औरंगाबाद जिले में चालू खरीफ मौसम में धान की खेती के लिए विभाग और किसानों के स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जिले में इस वर्ष 1,72,000 हेक्टेयर भूमि में धान की खेती का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिला प्रशासन और कृषि विभाग की ओर से किसानों को धान की खेती के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध कराने की तैयारी की गई है। इसी क्रम में बीते दिनों खरीफ कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए जिलाधिकारी अभिलाषा शर्मा ने कहा कि धान का अधिक उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए किसानों को हर प्रकार का सहयोग दिया जाएगा। जिला कृषि पदाधिकारी संदीप राज ने कहा कि धान की खेती के लिए किसानों को खाद, बीज और अन्य आवश्यक संसाधन समय पर उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरा होने के अवसर पर पार्टी कार्यकर्ताओं, समर्थकों और आम लोगों में उत्साह का माहौल है। केंद्र सरकार द्वारा जनहित में उठाए गए कदमों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की व्यापक रूप से सराहना की जा रही है। पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह ने कहा कि भारतीय राजनीति के समकालीन इतिहास में पिछले 12 वर्षों को ऐसे दौर के रूप में दर्ज किया जाएगा जिसमें सत्ता, सुशासन, विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक सुधार और तकनीकी परिवर्तन के अनेक अध्याय एक साथ लिखे गए हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के निर्वाचित प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक बने रहने का रिकॉर्ड स्थापित करने पर एनडीए के जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं ने खुशी व्यक्त की है। पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह, विधायक प्रमोद कुमार सिंह, त्रिविक्रम नारायण सिंह, प्रकाश चंद्रा तथा भाजपा के वरिष्ठ नेताओं कृष्ण बल्लभ सिंह बबुआ जी, अनिल कुमार सिंह और सतीश कुमार सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के तहत पूरा भारत विकास के पथ पर अग्रसर है तथा देश में आधारभूत संरचनाओं के विकास में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। ग्रामीण बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एनटीपीसी की ओर से सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बालिका सशक्तिकरण अभियान का आयोजन किया गया जिसका उद्घाटन सीआईएसएफ के आईजी प्रबोध चंद्र, एनटीपीसी के क्षेत्रीय कार्यकारी निदेशक और परियोजना प्रमुख एलके बेहरा तथा स्वरा महिला क्लब की अध्यक्ष आरती बेहरा ने किया। इस अभियान के तहत चयनित 61 ग्रामीण बालिकाओं के सर्वांगीण विकास के लिए एक माह का विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। वहीं भारतीय रेल बिजली कंपनी की ओर से बालिका सशक्तिकरण अभियान के तहत 40 ग्रामीण बालिकाओं के सर्वांगीण विकास के लिए विशेष आवासीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक रंजन देहुरी ने बताया कि यह अभियान ग्रामीण बालिकाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाला एक प्रेरक प्रयास साबित होगा। इधर भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रमोद कुमार चंद्रवंशी को पार्टी के ओबीसी मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। बीते दिनों श्री चंद्रवंशी औरंगाबाद जिले के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने जिले के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण किया। श्री चंद्रवंशी ने बताया कि वे केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी जन जन तक पहुँचा रहे हैं ताकि समाज के पिछड़े वर्गों को भी इन योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके। पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह ने 9 जून को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात कर औरंगाबाद पटना सड़क को 4 लेन बनाने, जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना शीघ्र कराने तथा उत्तर कोयल नहर परियोजना के कार्यों में तेजी लाकर किसानों को सिंचाई का लाभ जल्द उपलब्ध कराने की मांग की। इस पर मुख्यमंत्री ने तत्काल संज्ञान लेते हुए संबंधित विभागों के सचिवों को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। वहीं रफीगंज से जदयू विधायक प्रमोद कुमार सिंह ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात कर क्षेत्र के विकास, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य योजनाओं को तेजी से लागू करने का अनुरोध किया। औरंगाबाद डाल्टनगंज पथ पर बटाने नदी पर बने पुल के क्षतिग्रस्त होने के कारण भारी वाहनों का परिचालन बंद है। इससे आम यात्रियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जिला प्रशासन ने वैकल्पिक आवागमन के लिए डायवर्सन निर्माण की दिशा में पहल की है ताकि जल्द से जल्द सामान्य यातायात बहाल किया जा सके और लोगों को राहत मिल सके। औरंगाबाद जिले में अपराध नियंत्रण और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रात्रि गश्त तथा वाहन जांच अभियान पर विशेष जोर दिया जा रहा है। मगध प्रक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक विकास वैभव के निर्देश और पुलिस अधीक्षक अम्बरीश राहुल के मार्गदर्शन में सभी थाना क्षेत्रों में लोक संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। औरंगाबाद के जिला पार्षद नीतू सिंह तथा कुटुम्बा प्रखंड के प्रखंड प्रमुख धर्मेंद्र कुमार को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए नई दिल्ली में आयोजित एक भव्य समारोह में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह सम्मान पंचायत स्तर

0: पर बेहतर प्रशासन, जनहित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और ग्रामीण विकास में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया गया।
1: अभी आप सुन रहे थे औरंगाबाद जिले की हलचल, इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता कमल किशोर।
2: हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं, पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

साधना, जी हाँ, इस फिल्म में आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को। गीत लिखा था साहिर लुधियानवी ने और संगीत था एन दत्ता का। अब जो गाना आप सुनेंगे उसे गाया है मोहम्मद रफ़ी, क्षमा करेंगे महेंद्र कपूर और आशा भोसले ने इस गाने को गाया है। शब्द रचना है SH बिहारी की और धुन बनाई है OP नैयर ने। फिल्म का नाम है कहीं दिन कहीं रात।

आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर और आशा भोसले को, फिल्म थी कहीं दिन कहीं रात। अब जो गाना आप सुनेंगे उसे लिखा है अल्लामा इकबाल ने, धुन बनाई है मदन मोहन ने, आवाज़ लता मंगेशकर की, और फिल्म का नाम है दुल्हन एक रात की।

आप सुन रहे थे फिल्म किनारा में लता मंगेशकर और भूपेंद्र सिंह को। इस गाने को लिखा था गुलजार ने और संगीतकार थे आरडी बर्मन। इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी दरभंगा से लीजिए सुनिए मैथिली कार्यक्रम सिंगरहार।

नमस्कार, कार्यक्रम सिंगरहार सुनिहार समस्त गोटे के स्वागत साहित्य के कार्यक्रम में, जो तो साहित्य आ साहित्य कारक संबंध में चर्चा करी छी। ते अपने लोकन न्यूज ऑन एयर ऐप के माध्यमे व रेडियो सेट पर आकाशवाणी दरभंगाक विविध कार्यक्रमक आकर्षण बढ़बे में हमरा लोकनिक संग जुड़ल रही। यह ओ माध्यम अछि जाहिसँ रचनाकारक साहित्यकारक विभिन्न रचना गीत संगीत अपने सब धरि नियत समय पर पहुँच जाइत अछि। जतः खट मधुर अनुभव अछि, खट मधुर स्मरण अछि, रचनाकारक व साहित्य के यह तो विशिष्टता अछि जे ओ रहैत तँ अपन रचनासँ समाज में नव जागृति उत्पन्न करै छथि अपन मौखिक आ लिखित भाषासँ। मुदा ओहन कवि जे अपन रचनासँ अमर अजर भऽ गेला, हुनको श्रद्धा सुमन अर्पित करबाक माध्यम आकाशवाणी दरभंगा दिससँ हमरा लोकनि करै छी। एहने सन एकटा महान आत्मा छलाह दीनानाथ पाठक बंधु। बेगूसराय जिलाक ठुनही गाम में उजके दिन 12 जून के हुनक जन्म भेल छलनि। दीनानाथ पाठक बंधु द्वारा रचित चाणक्य मैथिलीक नवतामूलक महाकाव्य थिक। ऐतिहासिक कथानक पर आधारित एहि महाकाव्यक नायक छथि प्रसिद्ध कूटनीतिज्ञ, त्यागी, कर्तव्यनिष्ठ, विविध शास्त्र ज्ञाता

0: जननेता धीरोदात्त नायकक सकल गुणसँ अलंकित दृढ़वती चाणक्य आ हिनकहि नामक आधार पर महाकाव्यक नामकरण सेहो भेल अछि। सम्पूर्ण आर्यावर्तक साम्राज्यसँ अनाचार अन्याय भ्रष्टाचार के समाप्त कय एकटा पराक्रमशील प्रतिभा सम्पन्न युवक के सिंहासन पर बैसायब हिनका जीवनक मूल व्रत छल। शास्त्रीय लक्षणक दृष्टिसँ एहिमे प्रसिद्ध कथानक धीरोदत्त नायक अंगिरसक रूपमे वीर संध्या प्रभात रजनी वासर प्रदोष षट ऋतु राजसभाक वर्णन त भेट अछि, मुदा एहि महाकाव्यक नवीनता परिलक्षित होइत अछि ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमे वर्तमानक सजीव चित्रक अंकनमे राष्ट्र निर्माणक दिशा निर्देश करबामे नेता चिंता क्रांति कर्मवीर विज्ञान राजनीतिक विवेक समस्त लक्षण प्रस्तुत करबामे देश पर आयल संकटक बेर जनताक कर्तव्य निर्धारण करबामे आधुनिक सुधारवादी विचारधाराक प्रतिपादन करबामे ओज आ प्रसाद गुणक उपयोग करबामे मंगलाचरणक त्याग मुदा भरत वाक्यक उपयोग करबामे आ प्रवाहमय भाषाक प्रयोग करबामे नवीनता परिलक्षित होइत अछि। ओहि पुण्यात्मा के शत शत नमन करैत सुने हुनक जयंती पर विशेष कार्यक्रम मिथिला विभूति दीनानाथ पाठक बंधु संकलन आ वाचन स्वर छनि राकेश चंद्र नंदन के।
1: रविसम दीप्त अनलसम दाहक पविषम कठिन कठोर कोनो गूढ़तम भाव मग्न चिंतासों आत्मविभोर कालकूट घट पीब सुधारस जगमे बाँटि सकैछ मर्तिलोक सँ देवलोक धरि नेता ओ कहबैछ अंग अंग सँ चुबे टप टप सुदृढ़ आत्मविश्वास पाटलिपुत्रक जनपथ पर के घूमि रहल कत्रास। एहि पंक्तिक उद्घोष के निहार मैथिली साहित्यक जाज्वल्यमान नक्षत्र छथि पंडित दीनानाथ पाठक बंधु जे चाणक्य सदृश ऐतिहासिक महाकाव्य लिखि अपन ओजपूर्ण भाषा सँ संपूर्ण मैथिली जगतक ध्यान अपना दिस आकृष्ट कयलनि। ओ मात्र इएह टा महाकाव्य लिखि मैथिली साहित्यमे अमर भऽ गेलाह। ओना ओ नाटक उपन्यास ओ पत्रिकाक सम्पादन सेहो केने छलाह, किन्तु अपन जीवन कालमे एकोटा प्रकाशित पोथीक रूपमे अपन कृतिकेँ नहि देख सकलाह, तकर लालसा लगले रहि गेलनि। हिनक निधनक बाद एकमात्र कृति प्रकाशित भेलनि ओ थिक चाणक्य महाकाव्य, जे प्रकाशित होइते चर्चित प्रशंसित होबय लागल आ देखते देखते विभिन्न विश्वविद्यालयक मैथिली पाठ्यक्रममे सेहो स्थान पाबि गेल। अपन ओजपूर्ण भाषा सरसता सरलता ऐतिहासिकता एवं वर्तमान परिवेशमे अपन गुणवत्ताक कारणे ई भविष्योमे अपन स्थान सुरक्षित रखने रहत से पूर्ण विश्वास अछि। पंडित दीनानाथ पाठक बंधु अल्पायु भेलाह, मात्र 34 वर्षक हुनक जीवन काल छलनि। एहि अवधिमे ओ बहुत रास काज कऽ लेलनि। अध्ययन अध्यापनसँ लऽ कऽ साहित्यिक लेखन धरिमे अपन छाप छोड़ि देलनि। हुनक जन्म राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकरक जिला बेगूसरायक बखरी प्रखंडक दुनही नामक गाममे भेल छलनि। हिनक जन्मक प्रसंग अनेक ठाम भ्रामक तथ्य उल्लेखित अछि, किन्तु आब साफ भऽ गेल अछि जे बंधुजीक जन्म श्रावण शुक्ल अष्टमी सोम संवत 1985 11 बजे दिनमे भेल छलनि। एहि हिसाबे हिनक जन्म 12 अगस्त 1928 ईस्वीकेँ भेल छलनि। हिनक पिता छलथिन पंडित रामजी पाठक आ माय छलथिन नुनुवती देवी। हिनका लोकनिकेँ 3 संतान भेलथिन, ओहो पछता। सबसँ जेठ छलथिन दीनानाथ, दोसर शिवनाथ आ तेसर शशिनाथ। किन्तु परिवारक स्थिति नीक नहि छलनि, ताहिपर 3-3 संतान। तैँ पंडित रामजी पाठककेँ पौरोहित्यक कार्य कऽ जीविकोपार्जन कऽ घर चलबऽ पड़ैत छलनि। एतऽ इहो कहि दी जे शशिनाथक अल्पायुएमे निधन भऽ गेलनि। ई देखि पंडित रामजी ठाकुर क्लान्त भऽ गेलाह आ अपन शाखा संततिक श्रीवृद्धि हेतु ज्येष्ठ बालक दीनानाथक विवाह 10 वर्षक अवस्थामे

नरहन निवासी राम खिलावन चौधरी कन्या कामा देवीक संग करवा देलथिन, जाहि में 3 पुत्र आ 2 पुत्री भेलनि। दीनानाथ पाठकक आरंभिक शिक्षा गढ़पुरा मध्य विद्यालय में भेलनि। ओहिठाम सँ ओ प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कयलनि। तकर बाद हिनका संस्कृत शिक्षा दिस पिता मोरि देलथिन। एकर पाछू 2 गोट कारण रहल हेतनि। पहिल तँ ई जे अपने पुरोहित छलाह, तँ हिनको देव पितर कर्मक हेतु संस्कृतक ज्ञान रहब आवश्यक बुझलनि। दोसर ई जे अंग्रेजिया स्कूल में नाम लिखायब व्यसाध्य छल। परिणाम ई भेल जे संस्कृत टोल पाठशाला मेहदा में हिनक नाम लिखवा देल गेलनि, जतऽ सँ दीनानाथ प्रथमा उत्तीर्ण कयलनि। प्रथमा नीक अंक सँ पास कयलाक बाद आब ई करता की? आर्थिक स्थिति तेहन नहि छलनि जे एतऽ रही ओ आगू पढ़ाई कऽ सकतथि। हितोपदेशक नीति वाक्य पढ़ने रहथि। ओकरे प्रेरणा सँ ई काशी विश्वनाथक स्मरण करैत आ पिताकेँ बोल भरोस दऽ माता अन्नपूर्णाक नगरी काशी पहुँच गेलाह। कहल जाइ छै विश्वासः फलदायकः, हिनकामे विश्वास छलनि आ तकर फल सेहो भेटलनि। ओहिठाम गोयनका संस्कृत महाविद्यालयमे नामांकन भऽ गेलनि आ मारवाड़ी समाजमे रहबाक आ भोजनक व्यवस्था सेहो। तखन की छलनि, दीनानाथ पूर्ण मनोयोगसँ अध्ययन करऽ लगलाह आ व्याकरणसँ मध्यमा परीक्षा उत्तीर्ण भेलाह। ओतहि रहि आगाँ पढ़तथि, मुदा से भेलनि नहि। दीनानाथ कायासँ दुर्बल छलाहे, परिश्रम करबाक कारणे ई आरो दुर्बल भऽ गेलाह। तँ सोचलनि काशी रहबासँ नीक गामे चलि जाय। से ई गाम आबि गेलाह। एतय आबि हिनक जीवनक धार बदलि गेलनि। पंडित चंद्रनाथ मिश्र अमर हिनका पर लिखल साहित्य अकादमी से प्रकाशित विनिबंध दीनानाथ पाठक बंधु में लिखे छथि, दीनानाथ के अग्रिम शिक्षा प्राप्त करबाक उत्कट अभिलाषा हृदय के उद्वेलित करैत रहैत छलनि। ज्ञात भेलनि जे बखरी स्थित गौरीशंकर संस्कृत विद्यालयक अध्यापक पूर्ण सुयोग्य विद्वान छथि, अतः बखरी आबि हुनका सँ भेंट कयलथिन। वस्तुतः ओहि विद्यालयक अध्यापक पंडित भुवनेश्वर झा जेहने गंभीर विद्वान तेहने नैष्ठिक आ सहृदय व्यक्ति छलाह। ततबे नहि, ओ परम पारखी लोक सेहो रहथि। यद्यपि दीनानाथ पाठककेँ ने कोनो तेहन साहित्यिक परिवेश छलनि ने वंशानुगत साहित्यिक संस्कार, तथापि भारतीय एक विश्वास जे पूर्व जन्मार्जिता विद्या पूर्व जन्मार्जितं यशः रहलैक अछि, से हिनका पूर्व जन्मार्जित संस्कारवश बाल्यकालेसँ साहित्यक प्रति स्वाभाविक रुचिक सङ्ग सृजनात्मक प्रतिभा सेहो प्रकृति प्रदत्ते छलनि। वार्तालापक क्रममे छात्र दीनानाथक स्फुट वाणी ओ वाक चातुरीसँ पारखी पंडित भुवनेश्वर झा बहुत प्रभावित भेलथिन आ हिनकामे अन्तर्निहित ओहि प्रतिभाकेँ पूर्ण रूपेँ विकसित करबाक उद्देश्यसँ साहित्य पढ़बाक परामर्श देलथिन। उत्तम बीजकेँ यदि उपयुक्त भूमि ओ अनुकूल जलवायु भेट जाइत छैक, तखन ओकरा अंकुरित पल्लवित पुष्पित ओ फल समन्वित होइत विलम्ब नहि लगैत छैक। से दीनानाथ अपन गुरुक समुचित प्रोत्साहन पाबि साहित्य दिस उन्मुख भेलाह आ मैथिली साहित्यक भण्डारकेँ पल्लवित कयलनि। हुनके संसर्गमे रहि ओतहिसँ साहित्य शास्त्री तथा 1950 ईस्वीमे साहित्याचार्य परीक्षा उत्तीर्ण भेलाह। एतऽ इहो कहि दी जे विद्या अध्ययनक हिनक उत्कण्ठा एतहि नहि शान्त भेलनि। बादमे ई हिन्दी विद्यापीठ देवघरसँ साहित्य रत्न आ 1959 ईस्वीमे तत्कालीन बिहार विश्वविद्यालयसँ स्नातक परीक्षा सेहो उत्तीर्ण कयलनि। एहि अवधिमे हिनका साहित्यिक मित्र भेटलथिन पंडित चंद्रकांत झा नवेन्दु। ई दुनू गोटे मिलि अपन गुरुक परामर्श एवं प्रेरणा पाबी। एतहिसँ बाल किरण नामक हस्तलिखित मासिक पत्रिका बहार करऽ लगलाह, जकर सम्पादक दीनानाथ पाठक भेलाह आ सहायक सम्पादक पंडित चंद्रकांत झा। जखन दुनू मित्र साहित्यकार ओ पत्रकारक रूपमे उपस्थित भेलाह, तखन दुनूके अपन नामक सङ्ग उपनाम रखबाक इच्छा प्रबल भेलनि, जेनाकि ओहि समयमे आनान साहित्यकार लोकनिक नामक आगू देखल करथिन। इहो लोकनि बहुत तारतम्यक बाद अपन नामक आगू उपनाम दीनानाथ पाठक दीन आ चंद्रकांत झा नवेन्दु राखि लेलनि। जेनाकि पत्रिकाक नामेसँ स्पष्ट अछि जे एहिमे नव प्रतिभाकेँ प्रोत्साहित करब मुख्य उद्देश्य छलैक, तथापि प्रौढ़ व्यक्तिक रचना सेहो संकलित कयल।

जाइत छल। ई पत्रिका किछुए दिन में खूब चर्चित भेल, खूब पढ़ा जाय लागल। मुख्य स्वर राष्ट्रवादी होबाक कारणे एकर नाम परिवर्तनक आवश्यकता बुझेले। पश्चात एकर नाम परिवर्तन क ज्वाला राखल गेल। एहि पत्रिकाक माध्यम सँ उभय मित्र बेस लोकप्रिय भ गेलाह। मुदा दीनानाथ पाठक एक उपनाम आरो रखलनि, ओ छलनि बंधु। दीन उपनामे ओ हिंदी में रचना करथि आ बंधु उपनामे मैथिली में। बंधुजी में किछु आरो करबाक ललक रहनि। ओ अपन लोकप्रियता के देखैत बंधु परिषद नाम सँ एकटा सांस्कृतिक सामाजिक संस्थाक स्थापना कयलनि, जाहि संस्था द्वारा समय समय पर सांस्कृतिक आयोजन तऽ होइते रहैत छल, क्रमिक नाटकक मंचन सेहो होइत छल। दीनानाथ के एतहि सँ नाटक लिखबाक प्रेरणा भेटलनि। ओ महात्मा गांधीक ग्राम स्वराज्यक परिकल्पना के दृष्टि में राखि ग्राम देवता नामक नाटक लिखलनि, जाहि में गांधी जीक सोच के साकार करबाक आवश्यकता पर बल देल गेल छल। हुनक मानव छलनि जे अपन देश कृषि प्रधान देश थिक, जाहिठाम मनुष्यक आवश्यकता लेल अन्न आ वस्त्र हेतु श्रमिकक आवश्यकता छैक, तैं एहिठाम श्रम शक्तिक सम्मान करब पहिल दायित्व अछि। एहि बात के ग्राम देवता नाटक में खूब नीक सँ उजागर कयल गेल अछि। हालांकि ई पोथी प्रकाशित नहि भेलनि। एकर अतिरिक्त एगोट हिंदी नाटक भारतीय शिक्षा पद्धतिक विशेषता पर आधारित गुरुकुल सेहो लिखबाक सूचना भेटैत अछि, मुदा इहो उपलब्ध नहि अछि। एकर बाद हिनक एगोट उपन्यास बरसाइत सेहो भेटैत अछि। कहल जाइत अछि जे ई उपन्यास मध्यमा करैत काल काशी में लिखने छलाह। ओ समय छल हैत 1946 ईस्वीक। ओ समय छल प्रसिद्ध उपन्यासकार युगानंद झा आ उपेन्द्रनाथ झा व्यासक, जिनक भलमानुस आ कुमार उपन्यास प्रकाशित भ गेल छलनि। ओहन समय में बंधुजी सन अपरिपक्व अवस्थाक लोकक उपन्यास लिखब साहसिक डेग छल। से साहस क ओ अप्रतिम प्रतिभाक सेहो परिचय देलनि। एहि उपन्यास में ओ बाल विवाह तथा एहि कुरीति सँ समाज में घटित विभिन्न दुर्घटना सँ कोना वैमनस्यक आगि पजरैत अछि आ ओहि आगि में कोना समाज के झड़काओल जाइत अछि, तकर सजीव चित्रण कथा वस्तुक माध्यम सँ कयल गेल अछि। पंडित चंद्रनाथ मिश्र अमर एहि उपन्यासक प्रसंग कहै छथि जे लोभ सँ ग्रस्त अपन कैल दुष्कर्म के भाग्यक नाम पर थोपी, अपना के निरपराध सिद्ध करबाक दुश्चेष्टा कोना भाग्यवादी एहि समाजक लोक करैत छल, तकर चित्रण खोइचा छोड़ा क बंधुजी एहि उपन्यास में कयलनि अछि। अपन छात्रावस्थे में एहन परिपक्व सोच रखनिहार बंधुजीक इहो उपन्यास उपलब्ध नहि छनि, प्रकाशितो नहि भेलनि। खंडित अवस्था में अमर जी के देखल छनि, जकर सूचना ओ हुनका पर लिखल निबंध में देने छथि। एहि पुस्तक में हिनक लिखल एकटा खंड काव्यक सेहो चर्चा केने छथि, जकर नाम थिक मैथिली। मुदा दुखद स्थिति अछि जे इहो कोनो रूप में उपलब्ध नहि अछि। बंधुजीक एकमात्र प्रकाशित पोथी छनि चाणक्य महाकाव्य, मुदा ई ओकरो पुस्तकाकार नहि देख सकलाह। निधनक लगभग 2.5 वर्षक अभ्यंतर एकर प्रकाशन वैदेही पत्रिका में भेल, जे वैदेहिक महाकाव्यक विशेषांकक रूप में आयल तथा सूर्य नारायण झाक सहयोगे ई पुस्तकाकार रूप में आयल 1965 ईस्वी में। प्रकाशित होते लगले ई चर्चित भ गेल आ 1967 में मिथिला सांस्कृतिक प्रतिष्ठान नामक संस्था द्वारा 500 टाकाक पुरस्कार एहि पुस्तक के प्रदान कयल गेल। एकर प्रकाशन यात्रा बहुत रोचक अछि। बंधुजीक मित्र पंडित चंद्रकांत झा नवेंदु अपन संस्मरण में लिखै छथि, चाणक्यक रचना कयलाक बाद दीनजीक विचार भेलनि जे एक दू अनुभवी मैथिली साहित्यकार के ई काव्य देखाओल जाय। एहि प्रसंग ओ एक पत्र कवि चूड़ामणि काशीकांत मिश्र मधुब जी के 1960 केर सितंबर मास में लिखलथिन, जे हम दक्षिणाहा भ कऽ मैथिली में एकटा चाणक्य महाकाव्य लिखबाक धृष्टता कयने छी। अतः अपने सँ निवेदन जे एक बेर पांडुलिपि देखबाक कष्ट कयल जाओ। मधुब जी एहि पत्रक उत्तर 22 अक्टूबर 1960 के पद्य में देलथिन, जेनाकि बुझल हैत जे मधुब जी चिट्ठी पत्री धरि पद्य में लिखै छलाह। मधुबजीक ई पत्र पाबि बंधुजी आश्चर्यचकित भ उठला। तकर बाद हिनका मधुबजी सँ भेंट करबाक उत्कंठा आर तीव्र भ गेलनि आ दुनू मित्र नियारि कऽ पैरे बखरी सँ विदा भेलाह।

दोसर दिन पहुँचला। मधुबजीक संग बड़ी राति धरि चाणक्य पर गपशप होइत रहलनि। दुनू प्रसन्न भऽ ओतऽसँ विदा भेलाह, मुदा प्रकाशन लेल अहुछिया कटिते रहि गेलाह बंधुजी। किछु दिनका बाद एक दिन पांडुलिपि लऽ कऽ पहुँच गेलाह मिश्र टोला दरभंगा, पंडित चंद्रनाथ मिश्र अमरक ओहिठाम। एतहिसँ येन केन प्रकारेण हिनक मृत्युक बाद चाणक्य महाकाव्य प्रकाशमे आयल। ओज गुणसँ परिपूर्ण ई महाकाव्य चकित करबाक क्षमता रखैत अछि। 11 सर्गमे निबद्ध एहि महाकाव्यक नायक

0: कुशल अर्थशास्त्री सेहो छथि, त्यागी आ संगठनकर्ता छथि। अत्याचारी नंदवंशक समूल नाश कऽ चंद्रगुप्त सदृश मेधावी युवक के मगध साम्राज्यक सिंहासन पर बैसा अपन प्रतिज्ञा पूर्ण करैत समस्त आर्यावर्त के संगठित कऽ सुदृढ़ समाजक स्थापना करैत अपन शेष जीवन मातृभूमि मिथिला में बितेबाक हेतु ई कहैत विदा होइ छथि। भेल प्रतिज्ञा पूर्ण हमर ओ फूजल शिखा बन्है छी, ई कहि बानी शिखा निज कहलनि सत्य आब चलै छी। एहि प्रसंग डॉक्टर भीमनाथ झा लिखै छथि, चाणक्य जानि बुझि कऽ आजुक युगक राष्ट्रीय समस्याकेँ सोझा राखि लिखल गेल अछि। आगुक युगक राष्ट्रीय समस्याक माने अछि राजनीतिक समस्या, स्वदेश नीति आ विदेश नीतिक समस्या। वर्तमान राजनीतिक शासन प्रणाली में खास कऽ अपन देश आ मोटा मोटी समस्त संसार एहि दुनू समस्या सँ ग्रस्त अछि। देश में विघटनकारी तत्व माथ उठा रहल अछि, आतंकवाद सँ राष्ट्र त्रस्त अछि, सर्वत्र आंदोलन हिंसा आ प्रतिहिंसाक आगि धधकि रहल अछि। एक देश दोसर देश पर अपन श्रेष्ठता थोपऽ चाहैत अछि, ताहि लेल नीति अनीतिक कूटनीतिक चालि चलल जा रहल अछि। किएक एकर जड़ि में की अछि? जड़ि में अछि सत्ताक भूख, व्यक्तिगत स्वार्थ। नेता तँ सब बनऽ चाहैत अछि, मुदा वास्तविक नेताक गुण क्यो अपनाबऽ नहि चाहैत अछि। ओहिमे कष्ट छैक, से कष्ट के उठाबै? तैं ई पराभव, ई संकट, ई उत्पात, ई आशंका, ई आतंक चाणक्य एहि समस्या के उठबै छ आ तकर समाधानो दै छ। बंधु जी, अमर जी के लिखल अपन अंतिम पत्र में चाणक्य महाकाव्यक उपयोगिता के अपन अटूट विश्वासक संग व्यक्त केने छलथिन। ओ लिखने छथिन, हम रही वा नहीं रही ओ कृति अवश्य रहत। से ठीके, जाधर देश में एहन परिस्थिति रहत चाणक्य महाकाव्यक प्रासंगिकता बनल रहत, जाधर चाणक्य महाकाव्य रहत बंधु जी सब ठाम ठाड़ भेटता, कीर्ति यस्य सह जीवति।
1: मिथिला विभूति दीनानाथ पाठक बंधु पर विशेष कार्यक्रम संकलन आवाचन छलन राकेश चंद्र नंदन के। दीनानाथ पाठक बंधु के मानव छलन जे भारतीय जनतंत्र पद्धतिक आदर्श अछि, शासक होइ छ न जन्मजात क्यो, नहि अदृष्ट फलभोगी, राजनीति दृढ़ पथ अनुगामी, सतत कर्मरत योगी, जनता सँ विश्वास प्राप्त नर शासन सूत्र सम्हारय, जनहितकारक कार्यव्यूह सँ जन मर्यादा पालय। अहिना जखन बंधुजी प्रकृति चित्रण करय लगै छथि तँ ओतौ अपन अद्भुत वर्णन कौशलक परिचय देने छथि। जलमे किरण, किरणमे लाली, लालीमे सौन्दर्य अपार, सुखमे खग, खगमे कलरव, कलरवमे मुदमोद प्रचार, सरमे कमल, कमल पर मधुकर, मधुकरमे कलमद गुंजार, तरुमे दल, दल पर कोकिल कुल, कोकिल कुल कलनाद उचार। चाणक्य एकटा राष्ट्रीय महाकाव्य अछि जकर सफलता कवि के उच्चतम शिखर धरि पहुँचा देलक अछि। जाहि प्रकार सँ मनुष्य में गुण आ दोष होइत अछि, ओहि प्रकारे काव्य में सेहो गुण आ दोष होइत अछि। जेना गुण सँ व्यक्तित्वक उत्कर्ष आ दोष सँ अपकर्ष होइत अछि, अहिना गुण सँ काव्यक उत्कर्ष आ दोष सँ अपकर्ष होइत अछि। भारतीय पंडित लोकनि गुण के आत्माक धर्म माने छथि। काव्य में सेहो आत्मा होइत अछि जकरा रस कहल गेल अछि, तैं काव्य में गुण रसक धर्म अछि। गुणक संख्या तीनटा मानल गेल अछि, माधुर्य गुण जतय काव्यपाठ सँ सहृदयक अंतःकरण द्रवित भऽ जाइत अछि ओतय माधुर्य गुण होइत अछि, श्रृंगार करुण अशांत रसक संग ई गुण विद्यमान भऽ सकैत अछि। एहिमे कठोर वर्ण सभक प्रयोग नहि भऽ कऽ कोमल कांत पदावलीक प्रयोग होइत अछि। जाहि काव्य के पढ़बा सँ सहृदयक चित्त में तेज आ स्फूर्तिक संचार भऽ जाय ओकरा ओज गुण कहल जाइत अछि, आ ई गुण वीर विभत्स आ रौद्र रसक संग उपस्थित रहैत अछि। आ जतय कविताक अर्थ आ भाव सुनते ही बुझऽ में आबि जाय आ सहृदयक चित्त में व्याप्त भऽ जाय ओहिठाम प्रसाद गुण होइत अछि। प्रसाद गुणयुक्त कविता में अर्थक स्पष्टता ओकर प्रधान विशिष्टता होइत अछि। भावक अनुसारे ओहिमे कोमल आ कठोर सब तरहक वर्ण सभक प्रयोग कयल जा सकैत अछि। सब रसक

कर्समे ई गुण सहायक भ सकैत अछि। दीनानाथ पाठक बंधु जे स्वयं तँ नहि मुदा अपन उत्कृष्ट रचनासँ काव्यक सबटा एहने गुणकेँ परिलक्षित करबैत सतत अमर रहला। पुनः ओहि पुण्यात्माके शत शत नमन।

समवेत स्वर में सुन रहा छलहुँ हैं ई देवी गीत। कार्यक्रम के अंत में सुने छी शब्द विमर्श। एकटा शब्द अछि धुक चुक। कखनो के मोन धुक चुक करऽ लगैत अछि जे की करूँ कि नहि करूँ, माने दुविधा में पड़ि गेनाइ। एकटा शब्द अछि बिखिन। बड़की बाबी के मोन बेसी काल बिखिन बिखिन रहै छनि, कखनो मुँह पर मुस्किन नहि, प्रसन्न नहि, खाली बिखिन बिखिन, माने मोन व्यथित भेनाइ। एकटा शब्द अछि ढूस। कते गोटे के देखबन देह में दम नहि मुदा मजबूत गोटे से ढूस लड़े लेल औता, माने आगू के लड़े लेल आबि गेनाइ। एहि शब्द विमर्शक संग आब अपने लोकनि से चाहै छी आज्ञा। नमस्कार।

0: आप सुन रहे थे मैथिली कार्यक्रम सिंगरहार। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ क्षणों में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व में विकास को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का काम शुरू। भारत ने अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब कर भारतीय नाविकों वाले वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी हमलों का कड़ा विरोध किया। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने उत्तर कोरिया में ड्रोन घुसपैठ और शक्ति के दुरुपयोग के लिए पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 30 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। और पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम विदेश नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार के कदमों पर जानकारी दे रहे हैं।
2: पिछले 12 वर्षों में भारत अपनी साहसिक पहलों के दम पर एक मजबूत ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। इन पहलों में बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का जज्बा और काम करने की लगन दोनों शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन कोशिशों को जिम्मेदारी और सबको साथ लेकर चलने की भावना से जोड़ा गया है, जिससे भारत की आवाज पूरी दुनिया में गूंज रही है। भारत ने इंडिया फर्स्ट के सिद्धांत को सबसे ऊपर रखते हुए अपनी विदेश नीति में नई ऊर्जा भरी है, पुराने रिश्तों को मजबूत किया है और नए दोस्त भी बनाए हैं। दुनिया भर में भारत के जुड़ाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य है। 2025 में श्रीलंका के पूर्वी तट पर चक्रवात दित्वा टकराया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े होकर भारत ने उन्हें तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इस बचाव और राहत कार्य में भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और आपदा प्रतिक्रिया के दलों ने मिलकर काम किया। भारत ने श्रीलंका को हर तरह की मदद दी, पानी साफ

0: करने वाली किट, दवाएं व सर्जिकल उपकरण और 60 टन विशेष मशीनें शामिल थी। भारतीय नौसेना के जहाजों ने तमिलनाडु से 1000 टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 264 लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित निकाला और 50 टन सामग्री एयरलिफ्ट की। इसके अलावा वहां फंसे 2500 से ज्यादा भारतीयों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। चक्रवात दित्वा के बाद प्रभावित इलाकों में रास्तों को फिर से जोड़ने और मजबूत करने के लिए भारत ने 14 लोहे के अस्थायी पुल भेजे। भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए श्रीलंका के बंदरगाह और नागर विमानन उप मंत्री जनित रवान कोदितवक्कू ने कहा कि भारत ने श्रीलंका के लोगों के प्रति प्यार और अपनापन दिखाया है। भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता कोविड महामारी के दौरान देखने को मिली। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की, जो इंसानों को ध्यान में रखकर की गई भारत की कूटनीति का एक बड़ा उदाहरण है। जनवरी 2021 से भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज सप्लाई की है। इसमें 50 से ज्यादा देशों को तोहफे में दी गई और कोवैक्स पहल के जरिए दी गई डोज शामिल है। वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने अपनी पड़ोसी प्रथम नीति के अंतर्गत अपने पड़ोसी देशों को सबसे आगे रखा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बांग्लादेश के रहने वाले फिजियोथेरेपिस्ट और योग शिक्षक डॉक्टर ज्योतिष को विश्वास ने कहा,
1: इंडिया जो किया हमारे लिए वैक्सीन, वो टाइम पे फास्ट रिस्पॉन्स किया और भेज दिया, हम भी वो वैक्सीन लिया तो हमारे भी बहुत अच्छा हुआ। हमारा रिलेटिव्स और देशवासी को लिए वो एक बहुत अच्छा तोहफा था इंडिया से, तो इसलिए हम बहुत कृतज्ञ हूँ।
0: पिछले 12 वर्षों में वैक्सीन मैत्री, ऑपरेशन सागर बंधु जैसी पहलों के जरिए भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में आगे आया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्ष के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
3: भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
2: देश में 2014 में स्टार्टअप की संख्या लगभग 350 थी, अब 2,35,000 से अधिक स्टार्टअप और 131 यूनिकॉर्न है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत अब स्टार्टअप के मामले में विश्व का तीसरा प्रमुख देश है।
4: पिछले 12 वर्षों में सरकार द्वारा किए गए अनेक सुधारों, जैसे स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत, अटल इंक्यूबेशन सेंटरों की स्थापना, फंड ऑफ फंड्स की व्यवस्था तथा अनुपालन प्रक्रियाओं को सरल बनाने जैसे कदमों ने भारत के उद्यमिता परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया है। आज देश का स्टार्टअप इकोसिस्टम डीप टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष, रक्षा, कृषि प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी और स्वच्छ ऊर्जा जैसे विविध क्षेत्रों तक विस्तारित हो चुका है। शिखर सम्मेलन में जिन स्टार्टअप्स को विशेष रूप से प्रदर्शित किया जाएगा उनमें मेडेव प्लस भी शामिल है। भारत फ्रांस इनोवेशन ईयर के अंतर्गत आयोजित यह सम्मेलन दोनों देशों के बीच उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप्स और वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत बनाने का प्रयास है। आकाशवाणी समाचार के लिए नीस फ्रांस से शैलेश मेनन जी की रिपोर्ट के साथ सकलेन अख्तर।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: हमेशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की और तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। एक रिपोर्ट।
2: बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने ड्रोन, सीसीटीवी और आधुनिक निगरानी प्रणाली जैसी तकनीकों का उपयोग कर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने पर जोर दिया। श्री शाह ने कहा कि सीएपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पूरी यात्रा के दौरान शिविर स्थलों पर प्रबंधों की लगातार निगरानी करेंगे। उन्होंने तीर्थयात्रियों के पंजीकरण, रहने की व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाओं और आपदा प्रबंधन सहित सभी जरूरी सेवाओं के लिए पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित करने पर

0: जोर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री ने मौसम की मौजूदा स्थितियों और पूर्वानुमान के अनुसार तीर्थयात्रियों के जत्थों की आवाजाही को नियंत्रित करने के भी निर्देश दिए। यह भी कहा गया कि यात्रा से जुड़े सभी स्थानीय लोगों और जानवरों का पंजीकरण किया जाए और उन्हें QR कोड वाले पहचान पत्र जारी किए जाएं। दीपेंद्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में ये जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जमीन के बदले आम आदमी को उचित कीमत दे रही है।
2: जमीन हैंडओवर करने का काम कर दिया, डेली हैंडओवर हो रहा है। अब तो 100 किलोमीटर के आसपास की जमीन हम लोग हैंडओवर कर दिया है। नॉर्थ बंगाल में कुछ एरिया जो चिकन लेग से लगा हुआ है उसमें फेंसिंग का काम BSF चालू भी कर दिया है। हम लोग समयबद्ध तरीके से ये भी पूरा करने का काम करूँ, ये देश की सुरक्षा का सवाल है।
1: कैबिनेट सचिव डॉक्टर TV सोमनाथन ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनः परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनः परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। नीट पुनः परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच NTA ने 21 जून को नीट UG पुनः परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि असैन्य जहाज पर जानलेवा हमला और खतरनाक साधनों का उपयोग गंभीर चिंता का विषय है और ये बात अमरीका राजनयिक को बताई गई। इसी तरह के हमले में जहाज पर तैनात 3 भारतीय मारे गए। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। ईरान ने कहा है कि अमरीका के साथ प्रस्तावित समझौते पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इससे पहले अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बातचीत में जल्द ही सफलता मिल सकती है। एक रिपोर्ट।
4: पश्चिम एशिया के लिए ये नई कूटनीतिक कोशिश बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पर हो रही है। राष्ट्रपति ट्रंप के हमले रद्द करने की घोषणा से कुछ समय के लिए ये उम्मीद जगी थी कि इलाके में बड़े टकराव को टाला जा सकता है। हालांकि ईरान का कहना है कि किसी भी अंतिम समझौते को मंजूरी नहीं मिली है और कई बड़े मुद्दे अब भी नहीं सुलझे हैं। मुख्य अड़चनों में ईरान का परमाणु कार्यक्रम, रोकी गई संपत्ति की बहाली और हॉर्मुज जल डमरू मध्य से जुड़ी भविष्य की सुरक्षा व्यवस्था शामिल है। भले ही बातचीत करने वाले पर्दे के पीछे काम कर रहे हों, लेकिन पूरे इलाके में सैन्य गतिविधियां जारी हैं, जिससे ये खतरा बना हुआ है कि कोई भी गलत कदम कूटनीतिक प्रगति को तेजी से पटरी से उतार सकता है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हॉर्मुज जलडमरू मध्य में भारतीय नाविकों वाले जहाजों पर ड्रोन हमले करने का आरोप लगाया है। उनका ये बयान भारत में अमेरिकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मिक्स को तलब कर हमलों का कड़ा विरोध करने के बाद आया है। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को आज 30 वर्ष की जेल की सजा सुनाई। अदालत ने उन्हें उत्तर कोरिया के साथ तनाव बढ़ाने के लिए ड्रोन घुसपैठ का आदेश देने और दिसंबर 2024 में मार्शल लॉ लागू करने को उचित ठहराने का दोषी पाया। पूर्व रक्षा मंत्री किम योंग ह्यून को भी इस मामले में 30 वर्ष की सजा सुनाई गई है। PV सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपेई की चेन सू यू को हराया। सेमीफाइनल में उनका सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट में आज ग्रुप बी के मैच में सह मेजबान कनाडा का मुकाबला बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। 10वां ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप

0: आज से इंग्लैंड और वेल्स में शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच रात 11 बजे से इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। मौसम विभाग ने कल असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल पूर्वोत्तर क्षेत्र, बिहार, केरल, माहे, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों में तेज वर्षा की आशंका है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून आज उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी, पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा तथा झारखंड में और आगे बढ़ गया है। कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कोंकण और गोवा में बिजली चमकने और तेज हवा चलने की संभावना है। अगले दो दिनों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह के मौसम की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व में विकास को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का काम शुरू। भारत ने अमरीकी दूतावास के उपप्रमुख जेसन मीक्स को तलब कर भारतीय नाविकों वाले वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी हमलों का कड़ा विरोध किया। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने उत्तर कोरिया में ड्रोन घुसपैठ और शक्ति के दुरुपयोग के लिए पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 30 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। और पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी and I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi highlights government's efforts to further women-led development across diverse sectors. Home Minister Amit Shah says government is fully committed to ensure highest level of security and smooth pilgrimage experience to devotees of Amarnath Yatra. Fencing work begins in border areas of West Bengal, says Chief Minister Shubhendu Adhikari. New Delhi summons US Charge d'Affaires Jason Meeks to lodge strong protest over US strikes on commercial vessels carrying Indian mariners. Seoul court sentences former South Korean President Yoon Suk-yeol to 30 years in prison over drone incursions into North Korea and abuse of power. And in badminton, PV Sindhu storms into women's singles semi-finals of Australian Open tournament in Sydney. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today highlighted that from financial inclusion and entrepreneurship to education, healthcare, sanitation, housing, sports, science and governance, women are playing a prominent role across diverse sectors. In a social media post, Mr. Modi said, the growing participation of women in emerging fields such as drone technology is opening new avenues of opportunity and transforming the development landscape across the nation. He noted that over the last 12 years, the NDA government has worked to further women-led development, and this is visible across sectors. Union Home Minister Amit Shah has said that the government is fully committed to ensuring the highest level of security and a smooth pilgrimage experience for devotees undertaking the Amarnath Yatra. He said this while chairing a high-level meeting in New Delhi to review the preparedness of the Sri Amarnath Yatra. Mr. Shah directed for creating impregnable multi-layered security grid along the pilgrimage route with the coordinative efforts of the Central Armed Police Forces, Jammu and Kashmir Police and all security agencies. Our correspondent reports that the Amarnath Yatra will begin on 3rd of July and conclude on the 28th of August.
2: Union Home Minister emphasized to further strengthen the security framework with extensive use of modern technologies such as drones, CCTV surveillance and advanced monitoring systems. Mr. Shah added that the senior officers of CAPF and the Jammu and Kashmir Police will continuously monitor arrangements at campsites throughout the pilgrimage route. He also emphasized for ensuring adequate arrangements for all essential services including pilgrim registration, accommodation, healthcare facilities and disaster management. With Dipendra Anand Kumar, Akashwani News, Delhi.
1: Fencing work in the border areas of West Bengal has started. West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari today informed the media at a program in Kolkata on the occasion of 12 years

0: वैक्सीन मैत्री पहल का आगाज किया। भारत ने जनवरी 2021 से 99 मुल्कों और अक्वामे मुत्तहदा के दो इदारों को 30 करोड़ 12 लाख से ज़्यादा कोविड-19 से बचाव के टीके फराहम किए हैं। ऑपरेशन सागरबंधु और वैक्सीन मैत्री जैसी मुतासिर कुन पहल के इम्तिजाज की बदौलत भारत गुज़िश्ता 12 साल में आलमी कायद बनकर उभरा है। इंसानी बुनियाद पर मदद और इलाकाई साझेदारी के तई अहदबस्तगी की जड़ें भारत की वसुधैव कुटुंबकम जैसी सकाफती इकदार में पैवस्त हैं। नई दिल्ली से अमन यादव की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
1: पीवी सिंधु सिडनी में जारी ऑस्ट्रियन बैडमिंटन ओपन टूर्नामेंट में ख्वातीन के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। तीसरे दर्जे की भारतीय खिलाड़ी ने चीनी ताइपी की चिन सू यू को एक तरफा क्वार्टर फाइनल मुकाबले में 21-6 और 21-9 से शिकस्त दी। आखिर में इस बुलेटिन की खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुतनव्वे शोबों में ख्वातीन की क्यादत वाली तरक्की को मजीद मुस्तहकम करने की हुकूमत की कोशिशों को उजागर किया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि हुकूमत अमरनाथ यात्रा के लिए जाने वाले यात्रियों के लिए इंतहाई आला दर्जे की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने और उन्हें यात्रा का एक बिला रुकावट तजर्बा फराहम करने के तई मुकम्मल तौर पर पुरअज़्म है। मगरबी बंगाल के वजीर आला शुभिंदु अधिकारी ने कहा है कि मगरबी बंगाल के सरहदी इलाकों में बाढ़ लगाने का काम शुरू हो गया है। वजारत खारजा ने आज अमरीका के शॉज डिफेयर जैसन मीक्स को तलब किया और भारतीय मल्लाहों को ले जा रहे कमर्शल जहाज़ों पर अमरीकी बहरी फोर्सेज के जारी हमलों के मुतालिक सख्त एहतजाज दर्ज किया। इसी के साथ खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
2: ये आकाशवाणी दरभंगा है, प्रस्तुत है कार्यक्रम साहित्य की।

0: साहित्य की। श्रोताओं नमस्कार, साहित्य के आज के इस अंक में आप सुनेंगे प्रोफेसर चंद्रभानु प्रसाद सिंह की वार्ता आम जन के कवि नागार्जुन। इसके बाद सुनिएगा गगनदेव चौधरी की कहानी संगत से गुण होते हैं और कार्यक्रम के अंत में आशा प्रभात से काव्य पाठ। लेकिन पहले संपादकीय। श्रोताओं, साहित्य में विभिन्न ऋतुओं का वर्णन किया गया है। साहित्यकारों ने अलग अलग ढंग से उसे प्रस्तुत किया है। श्रोताओं, ये जून का महीना है, ऐसे में गर्मी को लेकर क्या कहने। साहित्यकारों ने हिंदी साहित्य में ग्रीष्म ऋतु का वर्णन बहुत ही विविधता और गहराई से किया है। उन्होंने इसे केवल चिलचिलाते मौसम के रूप में नहीं बल्कि प्रकृति के एक महत्वपूर्ण चक्र और मानवीय भावनाओं के दर्पण के रूप में चित्रित किया है। साहित्य में ग्रीष्म ऋतु की दोपहर को सूर्य की आग बरसाने और प्रचंड गर्मी के रूप में दिखाया गया है। कवि सुमित्रा नंदन पंत ने अपनी कविताओं में गर्मी की दोपहरी को स्वर्ण सी चमकती और धरती को तपा देने वाली ऋतु के रूप में चित्रित किया है। भक्तिकालीन और रीतिकाल के कवियों ने गर्मी को प्रेम और विरह की तीव्रता के साथ जोड़ा है। आधुनिक हिंदी साहित्य में गर्मी का मौसम किसानों, मजदूरों और आम लोगों के कठिन संघर्ष को दर्शाया गया है। चिलचिलाती धूप में खेत जोतना, पानी की किल्लत और पसीने से तर बतर जीवन का यथार्थ चित्रण साहित्य को सामाजिक गहराई देता है। लोक गीतों में गर्मी की झुलसाने वाली धूप का जिक्र मिलता है। वहीं आधुनिक बाल साहित्य में गर्मी की छुट्टियां, आम और ठंडी हवा की मस्ती का भी सुंदर वर्णन मिलता है। श्रोताओं, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि साहित्य में गर्मी का अंत अक्सर वर्षा ऋतु के आगमन के रूप में होता है। झुलसी हुई धरती पर जब पहली बारिश की बूंदें गिरती है तो साहित्यकार उसे जीवन के पुनरुत्थान, नवनिर्माण और आशा के प्रतीक के रूप में दर्शाते हैं। अभी आप सुन रहे थे संपादकीय। साहित्य में लीजिए अब प्रस्तुत है प्रोफेसर चंद्रभानु प्रसाद सिंह की वार्ता आम जन के कवि नागार्जुन।
1: भारतवर्ष के भूखे अधनंगे लोगों की आकांक्षाओं और अनुभूतियों को स्वर देने वाले कवि हैं नागार्जुन। इन लोगों के पक्ष में कई कवियों ने कवि

कविताएं लिखी हैं, पर उन्हें आत्मसात कर कविता लिखने वाले नागार्जुन अपने ढंग के अकेले कवि हैं, इसलिए उनकी कविताएं लोक चित्त से सीधे जुड़ती हैं। वे आंदोलन धर्मी लेखक थे। वे सुविधायुक्त बंद कमरे में संघर्ष का तूर्यनाद करने वाले लेखक नहीं थे। वे आम लोगों की बेहतरी के लिए संघर्ष करने वाले लेखक थे। इसलिए उनकी रचनाएं बौद्धिक विलास नहीं, संघर्ष की आग में तपी तपाई रचनाएं हैं। आम जनों की बेहतरी के लिए प्रतिहिंसा उनकी कविताओं का स्थायी भाव है। प्रतिहिंसा ही अस्थायी भाव है मेरे कवि का। जन जन में जो ऊर्जा भर दे, उद्गाता हूँ उस रवि का। समाज की हर विषमता, हर असंगति की ओर उनकी दृष्टि जाती है और वे उस पर करारी चोट करते हैं। नागार्जुन का साहित्य के क्षेत्र में पदार्पण स्वाधीन

स्थाई भाव है मेरी कवि का, जन जन में जो ऊर्जा भर दे, उद्गाता हूँ उस रवि का। समाज की हर विषमता, हर असंगति की ओर उनकी दृष्टि जाती है और वे उस पर करारी चोट करते हैं। नागार्जुन का साहित्य के क्षेत्र में पदार्पण स्वाधीनता आंदोलन के उत्कर्ष काल में हुआ। अंग्रेजी राज में किसान मजदूर, अंग्रेजी राज और भारतीय जमींदारों के दोहरे शोषण के शिकार थे, इसलिए अंग्रेजी राज के साथ साथ भारतीय जमींदारों के खिलाफ आंदोलन चल रहा था। नागार्जुन अविभाजित दरभंगा जिला किसान सभा के अध्यक्ष थे, जिसमें आज के मधुबनी और समस्तीपुर जिले भी समाहित थे। माछ मखान और पान के लिए प्रसिद्ध मिथिला में मछुआरों के हक हुकूक के लिए संघर्ष किया, जिसका रचनात्मक प्रतिफलन उनका उपन्यास वरुण के बेटे है। राहुल सांकृत्यायन के साथ 1939 में छपरा के अमवारी किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। जमींदार के गुंडों ने जानलेवा हमला किया, राहुल जी का सर फूट गया। तब प्रिंसिपल मनोरंजन ने युवकों को उद्वेलित करने वाली कविता लिखी थी, राहुल के सर से बहे खून, फिर ये खून क्यों न उबल उठे। नागार्जुन को जेल की सजा हुई और उन्हें 10 महीने तक हजारीबाग और छपरा की जेलों में रखा गया। पुनः 1941 में भागलपुर जेल में 8 माह सजा काटी। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद अवसरों की बाढ़ आई, कई लेखक इस बाढ़ में बहे भी, पर नागार्जुन संघर्ष की टेक पर अड़े रहे। तेलंगाना के भूमि संघर्ष में सक्रिय भागीदारी दी। इस प्रसंग में उनकी लाल भवानी कविता याद आती है, खेत हमारे भूमि हमारी सारा देश हमारा है, प्रकट हुई है लाल भवानी सुना है तेलंगाना में। नागार्जुन को जनसाधारण की हर पीड़ा, हर बेबसी की प्रत्यक्ष अनुभूति थी और उस पर अपनी गहरी प्रतिक्रिया वे निर्भीक होकर व्यक्त करते थे, जनसंघर्ष में अगुवाई भी करते थे। 1974 में जब शासन में अनीति और भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच रहे थे और जनता की आवाज़ को दबाने की साजिशें शुरू हो चुकी थी, तब रेणु के साथ नागार्जुन प्रतिरोध की आवाज बनकर सामने आए। प्रतिकार में पद्मश्री लौटाई। 1975 में उन्हें जेल की सजा हुई, किंतु जनता शासन की स्थापना हो जाने पर नागार्जुन ने महसूस किया कि केवल झंडा और नारा बदला है, आम आदमी की हालत नहीं बदली, इसीलिए वे इसके भी खिलाफ हो गए। खिचड़ी विप्लव की अधिकांश कविताएं इसी मोह भंग की स्थिति की हैं। नागार्जुन वस्तुतः चिर विद्रोही थे, लेकिन परंपरा भंजक नहीं थे। वे रूढ़ के विरोधी थे, पर मिथिला की महान परंपरा के दाय को स्वीकार करते थे। बहुत पहले मैथिली में लिखा, निखिल विश्व प्रिय, निखिल भूमि प्रिय, निखिल लोक प्रिय हमरा, तैयो अपने माटिक सौरभ, लय आकुल मन भमरा, सबसों प्रिय निज देश। इनकी पहली कविता 1929 में मिथिला मैथिली भाषा में प्रकाशित हुई थी। इनकी पहली हिंदी कविता राम के प्रति 1933 में लाहौर से निकलने वाली विश्वबंधु में प्रकाशित हुई। जनक नंदिनी का स्मरण भूमिजा में है। कामदेव रति को केंद्र में रखकर भस्मांकुर लिखा, मुक्त छंद की कविताएं लिखी तो बरवे छंद में भस्मांकुर। युगधारा से लेकर अपने खेत में तक के कुल 14 कविता संग्रहों में लोक धुन के साथ क्लासिकी सौंदर्य भी है। अकाल और उसके बाद का दारुण चित्रण है तो हिमालय के उज्जवल शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। नागार्जुन जन कवि होने के साथ अत्यधिक अधिक

0: हित व्यक्ति थे। उनका लोक जीवन से जितना घनिष्ठ संबंध रहा उतनी ही अपनी विशाल सांस्कृतिक परंपरा और वांग्मय से भी इसका गहरा प्रभाव उनकी रचनाशीलता पर पड़ा। भस्मांकुर कालिदास के कुमार संभव के तीसरे और चौथे सर्गों पर आधारित है, जिसमें शिव की समाधि, कामदेव का उनके मन में विक्षोभ उत्पन्न करना और महादेव की कोपाग्नि से उसका भस्म हो जाना वर्णित है। पर कवि ने अपने युग की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए काव्य का संदेश बदल दिया है। इसमें विराग पर राग, मरण पर जीवन का जयगान अंकित है। नागार्जुन जर लेखक नहीं थे, आजीवन एक ही विचार सरणी में बंधकर नहीं रहे। स्वामी सहजानंद सरस्वती, राहुल सांकृत्यायन और कार्यानंद शर्मा से संपर्कित होकर अंग्रेजी राज में किसान आंदोलन में सक्रिय हुए। राहुल जी के साथ श्रीलंका गए और बौद्ध हो गए, नाम तक बदल लिया। वैद्यनाथ मिश्र से नागार्जुन हो गए और केदार पांडे से परसागढ़ के महंत बने रामउदार दास राहुल सांकृत्यायन हो गए। श्रीलंका के परिवीन विश्वविद्यालय में पाली भाषा और बौद्ध दर्शन का अध्ययन किया और अंततः मार्क्सवाद को विश्व दृष्टि के रूप में स्वीकार किया। बिहार आंदोलन में शिरकत की और जेल गए, फिर उस आंदोलन से मोह भंग भी हुआ। वस्तुतः नागार्जुन की विचारधारा के केंद्र में है लोकाभिमुखता। वे उसी के अगल बगल चलने वाले लेखक हैं। वे आधुनिक कबीर हैं जो अपना घर जलाकर अन्याय के घरों को जलाने के लिए लुकाठी लेकर आजीवन घूमते रहे।
1: आम जन के कवि नागार्जुन, अभी आपने प्रोफेसर चंद्रभानु प्रसाद सिंह की ये वार्ता सुनी। आइए अब सुनते हैं गगनदेव चौधरी की कहानी संगत से गुण होते हैं।
2: इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने के बाद मनोरथ का नामांकन दरभंगा के चंद्रधारी विज्ञान महाविद्यालय में कराया गया। दरभंगा से सिमरिया गांव की दूरी लगभग 85 किलोमीटर है। इस गांव से दरभंगा आने जाने के दो साधन, रेल पथ एवं सड़क पथ। घर से रोज पढ़ाई के लिए दरभंगा आना जाना मुश्किल जानकर मनोरथ के पिता कमला ने मनोरथ को किराए पर एक कमरा ले लेने की सलाह दी थी। महज एक दिन के प्रयास से मिर्जापुर पेट्रोल पंप के पीछे एक कमरा मिल गया। प्रतिमाह 2000 रुपये का भुगतान करना कमला बाबू के लिए आसान नहीं था, फिर भी साग सब्जी, धोबी हजाम, ट्यूशन, गैस आदि खर्चों को लेकर कुल 5-6 हज़ार रुपये भुगतान करने पड़ते थे कमला बाबू को। घर से दरभंगा चलने के दौरान मनोरथ को अपनी माँ से भी 200-400 रुपये मिल ही जाते थे। मनोरथ के सिमरिया गांव का एक और लड़का चंद्रधारी कला महाविद्यालय में नामांकित था। उसका नाम तो मौलेश्वर था, परंतु उसे सभी मौला कहकर पुकारा करते थे। मौला 3 लड़कों के साथ मिलकर एक कमरा ले रखा था, जिसमें उसके खर्च प्रति माह 2-3 हज़ार रुपये ही आते थे। 2000 रुपये वह घर से लाता था, शेष खर्च ट्यूशन पढ़ाकर पूरा करता था। इन दोनों की यदाकदा भेंट घाट होती रहती थी। एक शहर में रहने के कारण दोनों एक दूसरे को जानने पहचानने भी लगे थे। मनोरथ पहली बार अकेला घर से बाहर रह रहा था, इस कारण उसे बार बार घर की याद सताने लगी थी और वह मौका मिलते ही घर की ओर रवाना हो जाया करता था। घर जाने के लिए रेल और बस साधनों में उसे बस से यात्रा करना अधिक पसंद था। कदाचित उसके मानस में कौनता रहता कि मैं सामान्य से अलग हूँ। इसके साथ उसके व्यवहार भी अलग हुआ करते थे। वह अपने को खर्चीला दिखाकर अगल बगल के लोगों पर अपना प्रभाव जमाने की चेष्टा भी करता रहता था। मनोरथ के पिता मध्यम वर्गीय किसान थे। आज़ादी के बाद भी यह वर्ग शोषण का शिकार होता रहा है। परिवार की मौजूदा आर्थिक स्थिति काफ़ी सुधरी हुई नहीं थी, इसके बावजूद कमला बाबू अपने पुत्र की फरमाइश पूरी करने में कभी कोताही नहीं करते थे। परंतु मनोरथ अपने परिवार की परिस्थितियों से बेफिक्र था। वह कभी यह नहीं सोचता कि पिताजी किन परिस्थितियों से संघर्ष करते हुए कॉलेज की पढ़ाई के खर्च जुटा रहे हैं। अपने पुत्र की कमाई से कमला बाबू काफ़ी आशान्वित थे। उन्होंने उससे यह कभी नहीं पूछा कि तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है अथवा तुम्हारा भविष्य कैसा होगा। मनोरथ के मिलते ही वे तपाक से पूछ बैठते कि तुम्हें खर्चा वर्षा के लिए

0: कितने रुपए चाहिए। हमेशा मनोरथ के पास 200-400 रुपए ही रहते थे। संभवतः इसी वजह से उसे रेल की अपेक्षा बस से यात्रा करना अधिक पसंद था, जबकि उसे पता था कि रेल किराया से बस किराया चौगुना है। उसका स्वभाव कोई काम आनन फानन में करने का था। प्रतीक्षा उसे कतई पसंद नहीं था। दैनिक उपयोग के लिए सामान खरीदते समय वह बाजार में खरीदे जाने वाले सामानों की उपयोगिता अथवा अपने बजट पर कभी विचार नहीं करता था। सप्ताह में एक बार वह घर अवश्य जाता था। घर जाने आने के बस किरायों में उसके 1000 रुपये से अधिक खर्च हो जाते थे। बस की जगह यदि रेल से यात्रा की जाती तो प्रतिमाह 200-250 रुपये में ही काम चल जाता। परंतु मनोरथ की सोच थी कि रेल में सामान्य श्रेणी अर्थात गरीब व्यक्ति ही सफ़र किया करते हैं। मेरे पास जब रुपये मौजूद हैं तो सामान्य लोगों के साथ रेल में सफ़र क्यों करूं? मज़े के साथ बस में सिनेमा देखते देखते यात्रा क्यों न करूं? एक टिकट में 2 खेल, यात्रा के साथ साथ मनोरंजन भी। इस प्रकार एक वर्ष बीत गया। मनोरथ एक धनवान पिता के पुत्र की भांति बेफिक्र जिंदगी जिया करता था। उसे मनोयोगपूर्वक पढ़ाई से अधिक अपने स्टाइल एवं स्टेटस का ध्यान रहता था। परिवार की आर्थिक स्थिति से वह सदैव बेफिक्र रहा करता था। मनोरथ का साथी मौला सिमरिया के बाबा टोल में था। वह भी सामान्य परिवार से आता था। मनोरथ जब भी उससे घर चलने की बात करता तो वह मना कर देता था। मौला को जब भी घर जाना होता तो वह मनोरथ के साथ साथ बस से नहीं जाता बल्कि रेलगाड़ी से ही यात्रा करना पसंद करता था। एक बार चौसंदा के मौके पर दोनों को घर जाना था। दोनों में बातचीत हुई परंतु मनोरथ साथ साथ चलने से मना कर दिया, क्योंकि वह जानता था कि मौला तो रेलगाड़ी से जाएगा। मनोरथ के बार बार मना करने के बावजूद मौला नहीं माना और साथ साथ चलने पर आमादा रहा। मित्र के दबाव में विवश होकर अपने स्टेटस को नज़रअंदाज कर मनोरथ साथ चलने को राजी हो गया। उस दिन कदाचित रेलगाड़ी में काफ़ी भीड़ थी। भीड़ के कारण गाड़ी में मौजूद असहजता को देख देख कर मनोरथ भीतर ही भीतर मौला पर खींच रहा था। खींच के बावजूद चुपचाप वह समझना चाहता था कि आखिर मौला रेलगाड़ी से ही यात्रा क्यों पसंद करता है। बहरहाल हायाघाट स्टेशन गुजरने के बाद दोनों को जगह मिल गई। मनोरथ के खींचते हुए बूट को उतार कर मौला आहिस्ते से कहता है, तुम तो मेरे घर की स्थिति से परिचित हो और अपने घर के हाल से भी। कभी तुमने यह सोचा है कि आखिर तुम्हारे पिताजी तुम्हारी पढ़ाई का खर्च कैसे जुटा पाते हैं? वे तो किसी प्रकार तुम्हें स्नातक देखना चाहते हैं, इसी कारण वे आँखें मूंद कर तुम्हें मुँह मांगा दे दिया करते हैं। मौला के इस जादू के प्रभाव से कुछ समय के लिए मनोरथ मानस के चिंतन प्रदेश में चला गया। अब बार बार उसे अपने घर की फटेहाली आँखों के सामने कौंधने लगी। वह मौला का मुंह देखता रह गया। मनोरथ को अब मौला दोस्त नहीं बल्कि सच्चा मार्गदर्शक दिखाई देने लगा। अब वह जब भी कोई खर्च करता तो उसके कानों में मौला के वचन कौंधते और आँखों के सामने अपने परिवार की फटेहाली का चित्र तैर जाता था। अब मौला के सहयोग से मनोरथ भी एक कोचिंग में पढ़ाने लगा। कोचिंग की आमदनी से उसका अपना ट्यूशन खर्च निकल जाता। धीरे धीरे वह अनावश्यक खर्चों से भी परहेज करने लगा। उसे पढ़ने की लगन लग गई। अब वह प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में जुट गया। मनोरथ में आए अचानक इस परिवर्तन को देखकर पिता समेत अन्य परिजन भी चकित थे। पढ़ाई के प्रति उनकी तन्मयता एवं बदले स्वभाव की चर्चा जगह जगह होने लगी। उस दिन मंदिर के पास स्थित ब्रह्मस्थान की छांव में मनोरथ की चर्चा शुरू ही हुई थी, तभी एक राही सुस्ताने के लिए पीपल की छांव में आ रुका। पूर्वा हवा चल रही थी। चुपचाप वह कहानी सुनता रहा। कहानी समाप्त होते ही वह अचानक बोल उठा, संगत से गुण होत है।
1: संगत से गुण होते हैं। अभी आपने गगनदेव चौधरी की ये कहानी सुनी। कार्यक्रम के अंत में प्रस्तुत है आशा प्रभात से काव्य पाठ।
2: कविता का शीर्षक है अर्श और फर्श। अर्श और फर्श के बीच खींची गई है हमारे दरमिया जो वर्गों की खाई। अर्श और फर्श के बीच खींची गई है हमारे दरमिया जो वर्गों की खाई, जिसे पाट न सकी सदियां। फर्श से जो भी धूल कण उड़कर पहुंचा अर्श

वह भी आकाश की महानता में शुमार हो गया। फर्श से जो भी धूल कण उड़कर पहुंचा अर्श पर, वह भी आकाश की महानता में शुमार हो गया। मुड़कर नहीं देखा कभी फर्श की तरफ, जहाँ उसकी तरह के तमाम धूल कण रौदे जा रहे हैं पैरों तले। मुड़कर नहीं देखा कभी फर्श की तरफ, जहाँ उसकी तरह के तमाम धूल कण रौदे जा रहे हैं पैरों तले। कितनों की उम्मीद भरी निगाहें ताक रही हैं उसकी तरफ, जो अर्श तक पहुँचने में असमर्थ हैं। कितनों की उम्मीद भरी निगाहें ताक रही हैं उसकी तरफ, जो अर्श तक पहुँचने में असमर्थ हैं। और अगर पहुँच भी गए तो वहाँ भी सीढ़ियाँ होंगी, वर्ग होंगे, और होंगी फर्श और अर्श की गहरी खाई। और अगर पहुँच भी गए तो वहाँ भी सीढ़ियाँ होंगी, वर्ग होंगे, और होंगी फर्श और अर्श की गहरी खाई। कविता का शीर्षक है लड़की और समंदर। लड़की के सपनों में नहीं आता अब दादी की कहानियों का कोई सुंदर राजकुमार। लड़की के सपनों में नहीं आता अब दादी की कहानियों का कोई सुंदर राजकुमार, जो कराता उसे भूख और गुर्बत से आज़ाद। लड़की के सपनों में नहीं आता अब दादी की कहानियों का कोई सुंदर राजकुमार, जो कराता उसे भूख और गुर्बत से आज़ाद, जिसका करती वह समंदर के साहिल पर बैठकर इंतज़ार। लड़की के सपनों में नहीं आता अब दादी की कहानियों का कोई सुंदर राजकुमार, जो कराता उसे भूख और गुर्बत से आज़ाद, जिसका करती वह समंदर के साहिल पर बैठकर इंतज़ार। लड़की नहीं गिनती किनारों पर होते बेचैन लहरों का प्रहार। लड़की नहीं गिनती किनारों पर होते बेचैन लहरों का प्रहार, नहीं लुभाता उसके भोले मन को अब नीले सागर का अनंत विस्तार। लड़की नहीं गिनती किनारों पर होते बेचैन लहरों का प्रहार, नहीं लुभाता उसके भोले मन को अब नीले सागर का अनंत विस्तार। लड़की नहीं बनाती रेत पर अब घरौंदे, लड़की नहीं बनाती रेत पर अब घरौंदे, चुनती है सिर्फ बिखरे शंख, सीपियां और घोंघे। लड़की नहीं बनाती रेत पर अब घरौंदे, चुनती है सिर्फ बिखरे शंख, सीपियां और घोंघे। सपनों की दुनिया को छोड़ रोटी की तल्ख हकीकत से वाकिफ हो गई है। सपनों की दुनिया को छोड़ रोटी की तल्ख हकीकत से वाकिफ हो गई है। कविता का शीर्षक है सूखा और शरद दादा। चीख रहे हैं शरद दादा, उनके पोपले मुंह से बह रही है गालियां धारा प्रवाह। चीख रहे हैं शरद दादा, उनके पोपले मुंह से बह रही हैं गालियां धारा प्रवाह। फोड़ गया है कोई मेढक से भरा घड़ा उनके दहलीज पर। चीख रहे हैं शरद दादा, उनके पोपले मुंह से बह रही हैं गालियां धारा प्रवाह। फोड़ गया है कोई मेढक से भरा घड़ा उनके दहलीज पर। उनकी गालियां बादल की बूंदों की तरह शीतल लग रही है। उनकी गालियां बादल की बूंदों की तरह शीतल लग रही हैं गोल में खड़े बच्चे युवा और आंचल में मुंह छिपाए मुस्कुराती औरतों को। उनकी गालियां बादल की बूंदों की तरह शीतल लग रही हैं गोल में खड़े बच्चे युवा आंचल में मुंह छिपाए मुस्कुराती औरतों को। मेघ को मनाने का यह बहुत पुराना टोटका शायद फिर से काम आ जाए। मेघ को मनाने का यह बहुत पुराना टोटका शायद फिर से काम आ जाए और वह खुश हो भिगो जाए उनके भी खेत खलिहान। मेघ को मनाने का यह बहुत पुराना टोटका शायद

0: फिर से काम आ जाए और वह खुश हो, भिगो जाए उनके भी खेत खलिहान छान छिप्पर को अपनी बौछारों से, और वह खुश हो भिगो जाए उनके भी खेत खलिहान छान छप्पर को अपनी बौछारों से, वरना सूखी पपड़ाई दरकती यह धरती, वरना सूखी पपड़ाई दरकती यह धरती, मार ही डालेगी इंसानों के साथ साथ माल मवेशी जीव जंतुओं को अकाल मौत, वरना सूखी पपड़ाई दरकती यह धरती, मार ही डालेगी इंसानों के साथ साथ माल मवेशी जीव जंतुओं को अकाल मौत। कविता का शीर्षक है सूखा भाग दो। नन्ही कुलसुम झूम रही है बारिश की पहली फुहार पर, नन्ही कुलसुम झूम रही है बारिश की पहली फुहार पर, जवा कुसुम की डाली सी। नन्ही कुलसुम झूम रही है बारिश की पहली फुहार पर, जवा कुसुम की डाली सी, कितनी सुंदर लग रही है हवा के लय पर, रुई के गालों की तरह बिखर बिखर जाती बूंदे। बहुत प्रतीक्षा के बाद किसी VVPI मेहमान की तरह आई हैं ये बूंदे। बहुत प्रतीक्षा के बाद किसी VVPI मेहमान की तरह आई हैं ये बूंदे। कितना आग्रह मान मनोवल टोना टोटका और गीत भजन के बाद, कितना आग्रह मान मनोवल टोना टोटका और गीत भजन के बाद, जाने कितनी देर ठहरेगी, जाने कितनी देर ठहरेगी, या सिर्फ हाय हेलो करती बढ़ जाएगी आगे, या समेट लेगी अपनी काया को, या समेट लेगी अपनी काया को। डर रही है कुलसुम क्योंकि बहुत दिनों से भर नींद नहीं सोए हैं बाबा की अनिंद्रा की साक्षी बनी है अम्मा, बाबा की अनिंद्रा की साक्षी बनी है अम्मा, और दोनों की चिंता तुर बत कही ने कहाँ सोने दिया है उसे भी, क्योंकि बहुत दिनों से भर नींद सोए नहीं है बाबा के अनिंद्रा की साक्षी बनी है अम्मा, और दोनों की चिंता तुर बत कही ने कहाँ सोने दिया है उसे भी। बाबा के साथ साथ सारे गांव वालों की चिंता अगर यह मेघ भी नहीं बरसा तो, बाबा के साथ साथ सारे गांव वालों की चिंता कि अगर यह मेघ भी नहीं बरसा तो। कविता का शीर्षक है भीड़ में तन्हा। पता है मुझे यह जो सफ़र है जिंदगी का तन्हा ही तय करना है, पता है मुझे यह जो सफ़र है जिंदगी का तन्हा ही तय करना है, भीड़ में रहकर तन्हा, तन्हा ही तय करना है भीड़ में रहकर तन्हा। तुम्हें अजीब नहीं लग रहा सुनकर भरे मन से पूछता है वह, फिर स्वयं ही कहता है भीड़ में भी कहीं तन्हा हुआ है कोई। हाँ मेरे दोस्त, भीड़ में ही तन्हा होता है इंसान और परिचित चेहरों के बीच पराया भी। हाँ मेरे दोस्त, भीड़ में ही तन्हा होता है इंसान और परिचित चेहरों के बीच पराया भी। है न विचित्र त्रासदी इस दुनिया की, शायद तुम्हें इस कैफियत का इल्म नहीं है। है न विचित्र त्रासदी इस दुनिया की, शायद तुम्हें इस कैफियत का इल्म नहीं है। तुम तो जिस शिद्दत से नाराज होते हो उसी शिद्दत से कहकह भी लगाते हो। शायद तुम्हें इस कैफियत का इल्म नहीं है। तुम तो जिस शिद्दत से नाराज होते हो उसी शिद्दत से कहकह भी लगाते हो। वह तंज करता है। कहना चाहता हूँ मैं मनुष्य होना इसी को तो कहते हैं। कहना चाहता हूँ मैं मनुष्य होना इसी को तो कहते हैं। जिसके पास संवेदना नहीं होगी वह क्या हंसेगा अपने गम पर, जिसके पास संवेदना नहीं होगी वह क्या हंसेगा अपने गम पर, या नाराज होगा अपनी त्रासदी पर। कहना चाहता हूँ मैं मनुष्य होना इसी को तो कहते हैं। जिसके पास संवेदना नहीं होगी वह क्या हंसेगा अपने गम पर, या नाराज होगा अपनी त्रासदी।
1: अभी आप सुन रहे थे आशा प्रभात से काव्य पाठ। इसी के साथ साहित्यिक कार्यक्रम का आज का ये अंक अब समाप्त होता है। सूत्रधार अमलनाथ ठाकुर और प्रस्तुतकर्ता मितेश कुमार मिश्रा।

0: दरभंगा से किया गया। ये आकाशवाणी दरभंगा है, कृपया अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।
1: घर घर केरवाणी आकाशवाणी, हृदय हृदय केरवाणी आकाशवाणी। आ हृदय सबके जोड़वा लेल हम आब रहल छी एक कई क्लिक पर। हमर स्टेशंस लाइव मनक बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, क्षण क्षण केर विश्वसनीय खबर। हमर सबक वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नव भारत, नव आकाशवाणी।
0: हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए फरमाइशी फिल्मी गानों का फोन इन कार्यक्रम। हेलो आकाशवाणी।
2: हेलो आकाशवाणी,

0: लगमा गांव से, तो गांव ही में रहते हैं या कहीं और रहते हैं आप?
1: गांव में ही रहते हैं सर।
0: अच्छा, लगमा गांव दरभंगा जिला। जी, तो हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम जो है इसमें आपका कॉल शामिल हुआ है, जहां तक मुझे याद आ रहा है आपके नाम से लगमा गांव से हम तक कॉल नहीं पहुंचा है या मेरे समक्ष ये कॉल नहीं आया है। क्या आप पहली बार कॉल कर रहे हैं इस कार्यक्रम में?
1: आज मैं बहुत भाग्यशाली हूँ सर कि मेरा फोन पहली बार ट्रायल किया और लग गया।
0: अरे वाह, पहली बार आपने कॉल किया है इस कार्यक्रम में और पहला कॉल आपका ही है आज के इस कार्यक्रम में। तो हम अपने नए जो आने वाले इस कार्यक्रम में होते हैं श्रोता, उनसे उनका थोड़ा परिचय पूछते हैं। अपना संक्षेप में परिचय दे दें, क्या करते हैं?
1: खेती बाड़ी के साथ गांव में छोटी सी दुकान है।
0: जी जी, अच्छा,
1: आजीविका का यही साधन है सर।
0: अच्छा, हाँ, खेती बाड़ी भी करते हैं और साथ ही साथ दुकान है वो भी चलाते हैं आप, बड़ी अच्छी बात है। अपने आप को जो है ना पूरी तरह से जो है दुनियादारी में पूरी तरीके से सम्मिलित करके रखना चाहिए, सम्मिलित रहना चाहिए और समय जो है उसकी बर्बादी बिल्कुल ना हो, क्योंकि समय तो बस रेत की तरह हमारे हाथों से फिसलता चला जाता है, वो कभी रुकता नहीं। तो समय का सदुपयोग कोई आपसे सीखे कि दुकान भी करते हैं और खेतीबाड़ी भी संभालते हैं, फिर तो फालतू चीज़ों के लिए आपके पास समय ही नहीं होगा कि इधर उधर की बातों में आप रहें। तो आज इस कार्यक्रम में आपने कॉल किया है, कैसा महसूस कर रहे हैं?
1: सर, आकाशवाणी को 90 साल और आकाशवाणी दरभंगा को 50 साल पूरे करने के लिए एक दिल से मुबारकबाद देता हूँ।
0: आपको भी धन्यवाद। जी, आपको भी मुबारकबाद और धन्यवाद। जी,
1: एक गाना सुना देते सर।
0: बोलिए ना, आपकी सेवा में तत्पर हैं हम, फरमाइश बताएं।
1: हस्ते जख्म फिल्म का कव्वाली है सर।
0: ये माना मेरी जा मोहब्बत सजा है, मोहम्मद रफी, बलबीर और साथियों का गाया हुआ।
1: जी सर, जी सर।
0: तो वो कव्वाली जरूर हम आप तक पहुंचाएंगे लगमा गांव में। आपने कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी। आपसे हम एक वादा लेते हैं कि अगली बार फिर आप कॉल करेंगे इस कार्यक्रम में, हम आपसे इसी तरह बात करके आपकी फरमाइश आप तक पहुंचाने के लिए बेसब्री से आपका करेंगे इंतज़ार। तो चलिए, हम आप तक पहुंचा रहे हैं ये कव्वाली, सुनिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।
1: शुभ रात्रि।
2: हाय।

आकाशवाणी दरभंगा से इस समय आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गानों का फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। ये कार्यक्रम जारी है, एक सूचना है कार्यक्रम संबंधी, वो आप तक पहुंचा दें। हम कार्यक्रम संबंधी सूचना इस प्रकार से है कि श्रोताओं, रक्तदान के माध्यम से न सिर्फ ज़रूरतमंद व्यक्ति की जीवन रक्षा की जाती है या की जा सकती है, बल्कि रक्तदाता को भी इससे स्वास्थ्य संबंधी कई फायदे होते हैं। रक्तदान क्यों है महादान, यही है आकाशवाणी दरभंगा के फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी के अगले अंक का विषय। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर संजीव कुमार, जो कि इंचार्ज हैं रीजनल ब्लड बैंक DMCH दरभंगा में। प्रसारण के दौरान कार्यक्रम से जुड़ने के लिए फ़ोन नंबर होंगे 0627222481, अर्थात 0627222481, और दूसरा नंबर होगा 9430029353, अर्थात 9430029 3।

0: थ्री कार्यक्रम हेलो जिंदगी के प्रसारण का समय याद रखेंगे रविवार 14 जून 2026 दिन के 11 बजे। कार्यक्रम संबंधी यह सूचना समाप्त हुई और अब जानते हैं कि हमारे सामने अगला कॉल किन का है। हेलो आकाशवाणी नमस्कार।
1: हेलो आकाशवाणी नमस्कार सर जी।
0: जी परिचय देंगे श्रीमान जी अपना।
1: जी मैं ग्राम रंगा पथार तहसील सोनारी जिला चराइदेव आसाम से भाईकुन मुंडा बोल रहा हूँ।
0: भाईकुन मुंडा जी स्वागत है कार्यक्रम में। पहले भी आपने इस कार्यक्रम में कॉल किया है कभी?
1: नहीं सर, ये तो मेरा पहला कॉल है, बहुत खुशी हो रही है मेरा कॉल लग गया है। तो
0: जी तो भाईकुन जी आप क्या करते हैं, अपने बारे में थोड़ा बताएं। पहली बार आपका कॉल आया है ना इस कार्यक्रम में, इसलिए हम जानना चाहेंगे आपके बारे में क्या करते हैं।
1: जी सर मैं तो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता हूँ सड़क बनाने का। अभी
0: यानी प्रोफेशनल हैं आप, काम करते हैं कंपनी के साथ जुड़ करके। हाँ अच्छा लगा जान करके। तो आकाशवाणी दरभंगा आप कब से सुनते हैं?
1: मतलब आज ही पता चला है तो कॉल लगाया तो लग गया है।
0: बड़े भाग्यशाली हैं आप, भाग्यशाली हैं आप भाईकुन मुंडा जी कि आपको आज पता चला और आज आपने कॉल किया और आपका कॉल शामिल भी हो गया है कार्यक्रम में। और कार्यक्रम में आपका ये आज दूसरा कॉल है ना। आपसे पहले एक श्रोता ने कॉल किया था हमारे वो मोहन जी ने, और आपका कॉल भाईकुन भाई आपका आया है। तो हमें बड़ी खुशी हो रही है कि आसाम में भी आप हमें सुन रहे हैं और आज से सुनना शुरू किया है।
1: अब तो ऑल इंडिया रेडियो ऐप आ गया है तो सुनने को मिलता आता है।
0: जी आकाशवाणी के सभी केंद्र की पहुंच अब सभी के हाथों तक हो गई है, यानी एंड्रॉयड फ़ोन में या फिर अदर फोन्स जो हैं उनमें जो है ये आ गया है ऐप। और न्यूज़ ऑन एयर ऐप का नाम है। अन्य श्रोताओं के लिए भी हम बता दें, जो आईफोन हो या फिर एंड्रॉयड फ़ोन हो उस सभी में जो है वो काम करता है। तो लोगों को चाहिए जिन्होंने नहीं ऐप डाउनलोड किया है अभी तक वो कर लें और आकाशवाणी के तमाम केंद्रों के कार्यक्रम का आनंद ले सकते हैं। तो भाईकुन जी आज आपने जब कार्यक्रम की में फरमाइश ये कॉल किया है तो फरमाइश बता दें।
1: जी सर फिल्म का नाम है दो रास्ते और गाना है ये रेशमी दिल पे।
0: ये शरबती आँखें इन्हें देख कर
1: जी रहे हैं हम। जी जी
0: आप तक हम पहुंचा दिया भाईकुन जी ये गाना। आपने कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि, फिर कीजिएगा कॉल, ठीक है? चलिए।

0: उनकी आंखों में काजल तो देखे कोई, ऐसा लगता है कश्मीर मेरा थे। उनकी आंखों में काजल तो देखे कोई, ऐसा लगता है कश्मीर मेरा थे। रिंद देखे तो हो मैं कदे का घुमा, रिंद देखे तो हो मैं कदे का घुमा, अल्लाह अल्लाह इन आंखों की क्या बात है। हेलो आकाशवाणी, नमस्कार।
1: नमस्कार श्रीमान, मैं राम कुमार शास्त्री मेरी अभिधी कल्याणपुर समस्तीपुर से बोल रहा हूँ।
0: जी राम कुमार जी, स्वागत है कार्यक्रम में, कैसे हैं आप? बढ़िया हैं
1: जी, आपको
0: नियमित श्रोता हैं आप हमारे राम कुमार जी, हाँ
1: जी सर।
0: और आपका कॉल शामिल भी हो जाता है, क्या करते हैं आप? हमारे अन्य श्रोता जिनका कॉल नहीं लगता है, उनको कोई टिप बताना चाहेंगे कि किस तरह से आपका कॉल शामिल हो जाता है कार्यक्रम में? चलिए, मुझे तो खुशी हो रही है। मैं तो इतना ही समझता हूँ कि इश्क सच्चा हो तो राहें भी निकल आती हैं, बिजलियां अर्श से खुद रास्ता दिखलाती हैं। तो बस वही बात है कि सच्चे मन से अगर कोई काम के बारे में हम करते हैं, सोचते हैं, तो इच्छा शक्ति का प्रबल होना और लक्ष्य के लिए, और आप एक रिटायर्ड शिक्षक हैं, हम आपको जानते हैं
1: जी,
0: जी आवाज़ आ

तेरे ख्याल की शम्में जलाए बैठे हैं, तेरे ख्याल की शम्में जलाए बैठे हैं, दुरूने जहाँ कोई महफिल सजाए बैठे हैं, कोई तो फूल चढ़ाए इसी तमन्ना में, कोई तो फूल चढ़ाए इसी तमन्ना में, हम अपने आप को पत्थर बनाए बैठे हैं। हेलो आकाशवाणी, नमस्कार।

0: सर जी नमस्कार, हमारा भी आपको सर
1: जी परिचय देंगे श्रीमान जी अपना।
0: सर मैं उत्तर प्रदेश जिला मुरादाबाद ग्राम धूलापुर से मुकेश कश्यप बात कर रहा हूँ आपसे।
1: मुकेश कश्यप जी, आप तो हमारे अब नियमित श्रोता हैं, है ना?
0: जी सर, आप नियमित श्रोता हूँ, प्रोग्राम सुन रहा था और एक दो महीने के बाद मैंने फिर से कॉल किया सर।
1: अच्छा, दो महीने के बाद किए हैं तो बीच में क्यों नहीं किया आपने?
0: कोई मौका मिल सके।
1: अच्छा अच्छा, औरों को मौका मिलने के लिए आपने दो महीने पे कॉल किया है। मुकेश जी, हम बहुत आपको सराहते हैं इस मामले को लेकर कि आप ये प्रयास करते हैं कि और भी श्रोता इसमें शामिल हो। और देखिए ना, आज अगर प्रोग्राम आपने सुना होगा तो महसूस किया होगा एक नए श्रोता हमारे जुड़े आसाम से इस कार्यक्रम में आज ही, तो लोगों को मौका मिलता है।
0: जी
1: जी, फरमाइश क्या है मुकेश जी?
0: सर जी, फिल्म का नाम है समाधि, उगाने को बोले जब तक रहे तन में जिया।
1: हम तुम्हारे लिए तुम हमारे लिए, है ना? आशा जी, आशा जी का गाया हुआ ये गाना है, आपके लिए हम पहुंचा रहे हैं मुरादाबाद में। मुकेश जी, आपने कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।

0: दिल की गली में चांद निकलता रहता है, दिल की गली में चांद निकलता रहता है, एक दिया उम्मीद का जलता रहता है, मंजर मंजर जी लो जितना जी पाओ, मंजर मंजर जी लो जितना जी पाओ, मौसम पल पल रंग बदलता रहता है। हेलो आकाशवाणी, नमस्कार।
1: नमस्कार सर जी।
0: परिचय दें श्रीमान जी अपना।
1: सर जी लोकेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ, नानाखेड़ा बस स्टैंड उज्जैन मध्य प्रदेश से सर।

0: दिल की गली में चांद निकलता रहता है, दिल की गली में चांद निकलता रहता है, एक दिया उम्मीद का जलता रहता है, मंजर मंजर जी लो जितना जी पाओ, मंजर मंजर जी लो जितना जी पाओ, मौसम पल पल रंग बदलता रहता है। हेलो आकाशवाणी, नमस्कार।
1: नमस्कार सर जी।
0: परिचय दें श्रीमान जी अपना।
1: सर जी लोकेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ, नानाखेड़ा बस स्टैंड उज्जैन मध्य प्रदेश से सर।
0: जी देवभूमि उज्जैन।
1: उज्जैन सर बिल्कुल, महाकालेश्वर जी की नगरी।
0: जी वहाँ से लोकेंद्र वर्मा जी, कैसे हैं आप? थोड़ा लंबा अंतराल नहीं हो गया कॉल करने में?
1: हाँ सर जी, काफी अंतराल हो गया है और बिल्कुल मस्त है और स्वस्थ है। काफी प्रयास भी करे लगाने के फोन पर, आपका प्रोग्राम तो मैं नियमित तरीके से सुनता हूँ, बिल्कुल रात को मुझे याद रहता है आज प्रोग्राम चल रहा है, पर आज काफी दिनों के बाद में भी जुड़ा हूँ मैं आपके प्रोग्राम में सर।
0: जी इसीलिए तो हम कह रहे हैं जी, लंबा समय हो गया और अंतराल ज्यादा होता है तो हमारे श्रोता हमें याद आने लगते हैं कि क्या बात है, कहाँ व्यस्त हो गए हैं कि कॉल नहीं कर पा रहे हैं। तो आप एकदम पूरी तरह ठीक हैं और मौसम कैसा है अभी उज्जैन में? उज्जैन में मौसम
1: अभी थोड़ा गर्मी ज्यादा है सर, अभी 8 दिन पहले थोड़ा हल्की बारिश हुई थी, उसके बाद में थोड़ा तापमान तो कम हुआ पर उमस भरा दिन निकलता है दिन
0: जी पर। वो मानसून पूर्व जो वर्षा होती है वो बहुत जगह पे हुई है, बहुत जगह नहीं भी हुई, कहीं अधिक कहीं कम कहीं मध्यम, तो अब तो आ ही रहा है मानसून का मौसम, उससे
1: आ ही रहा है सर। प्री मानसून जो हुआ, प्री मानसून तो हर जगह हर राज्य में अलग अलग जगह हुआ
0: जी,
1: था
0: जी।
1: पर थोड़ा मानसून का इंतजार कर रहे हैं।
0: बस वही इंतजार कीजिए और तब तक के लिए आकाशवाणी दरभंगा सुनते रहिए और कार्यक्रम में कॉल करते रहिए। आपने कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हम आप तक पहुंचा रहे हैं ये गाना
1: है मेरा, गाना बता रहा हूँ मैं आपको, वो फिल्म का नाम है नफरत की दुनिया, गाना है ना वो हाथी मेरे साथी का।
0: हाँ हाँ वही हम आपसे पूछना चाह रहे थे, हाथी मेरे साथी का गाना जी।
1: हाँ नफरत की दुनिया को छोड़कर, और सर ये आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण जो किए हैं अभी 8 जून को, तो आकाशवाणी परिवार को भी 90 वर्ष पूर्ण पर हार्दिक बधाई, क्योंकि आकाशवाणी को इस स्तर तक लाने के लिए आकाशवाणी की टेक्निकल टीम और जितने भी सहयोगी करता रहते हैं आकाशवाणी को, वो सब आगे बढ़ाते हैं और इस 90 वर्ष की जो सफर यात्रा है उसमें सभी का बहुत योगदान है, इसलिए आप सभी को आकाशवाणी परिवार को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।
0: और इस सभी का श्रेय हम देते हैं आप तमाम श्रोताओं को, आप श्रोताओं के कारण ये सब संभव हो पाया, आपका साथ तब भी था और अब भी है, तो ये बहुत बड़ी बात है जी, बिल्कुल हम आशा करते हैं। तो चलिए आपके लिए पहुंचा रहे हैं ये प्यारा सा गाना मोहम्मद रफी का गाया हुआ, फिल्म का नाम है हाथी मेरे साथी, सुनिए उज्जैन में।
1: धन्यवाद,
0: नमस्कार, शुभ रात्रि।
1: नमस्कार।

0: अजब सुलगती हुई लकड़ियां हैं रिश्तेदार, अजब सुलगती हुई लकड़ियां हैं रिश्तेदार, अलग रहे तो धुआं दे, मिले तो जलने लगे। हेलो आकाशवाणी, नमस्कार
1: जी। नमस्कार सर,
0: परिचय देंगे श्रीमान जी?
1: ज्ञानेश कुमार रंजन सर, मोहन बढ़ियाम सकरी जिला मधुबनी से, मकरमपुर पंचायत।
0: ज्ञानेश जी, स्वागत है कार्यक्रम में।
1: जी सर, कैसे हैं? ठीक है।
0: हाँ, मालिक की कृपा है। आप, हमको लगता है लंबे अंतराल पे आपका कॉल आया है या पहली बार कॉल आया है?
1: नहीं सर, लंबे अंतराल के बाद किए हैं सर,
0: इसलिए आपको हम याद नहीं कर पा रहे हैं। थोड़ा रेडियो सेट से दूर हो जाएं ज्ञानेश जी, दूर हो जाएं जी, रेडियो सेट से दूर हो जाएं, आवाज ही को हो रही है जी। और कैसे हैं सब? बढ़िया चल रहा है
1: सर, एकदम ठीक है सर। आप लोग कैसे हैं?
0: हाँ, मालिक की कृपा है। फरमाइश बताएं।
1: गौतम गोविंदा का सर बनिया
0: दरोगा जी चोरी हो गई जी,
1: सर
0: पहुंचा रहे हैं आपके लिए आशा भोसले का गाया हुआ ये गाना। और जहाँ तक मुझे याद है, उसके एक एक्टर जो हैं वो शत्रुघ्न सिन्हा हैं, दूसरे एक्टर को मैं भूल रहा हूँ, दो हैं उसमें शायद
1: जी।
0: जी
1: जी,
0: तो
1: जी। और सब ठीक है ना सर?
0: सब बढ़िया है। आपके लिए हम पहुँचा रहे हैं शकरी में ये गाना। आपने कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि।
1: जी सर, नमस्कार।

0: आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गानों का फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। 11 बजने को है, कुछ ही क्षणों में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
2: भारत सरकार की शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम श्री अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान श्री शाह ने तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और 28 अगस्त तक चलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की रक्षा अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। ये परिसर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल परिसर का हिस्सा है। रक्षा मंत्री ने भारत की तकनीकी उत्कृष्टता, रणनीतिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय सुरक्षा में DRDO की मिसाइल प्रणाली तथा सामरिक समूह प्रणाली के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। श्री सिंह ने कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण साकार करने के लिए अनुसंधान और विकास के कई उपाय किए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रेलवे भर्ती बोर्ड प्रक्रिया पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। श्री वैष्णव ने पारदर्शी, सटीक और प्रौद्योगिकी आधारित व्यवस्था पर जोर दिया। श्री वैष्णव ने विभागीय परीक्षाओं को कंप्यूटर आधारित टेस्ट में बदलने की प्रगति की भी समीक्षा की। रेल मंत्रालय ने बताया कि भारतीय रेलवे ने वित्त वर्ष 2025-26 में 6 प्रमुख श्रेणियों में 47,000 से अधिक पदों की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर 43,000 से अधिक उम्मीदवारों की भर्ती की है। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में ये जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। कैबिनेट सचिव डॉ TV सोमनाथन ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। इस बीच NTA ने 21 जून को होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमेरिकी दूतावास के उप प्रमुख जैसन मीक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमेरिकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल हैं। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ प्रस्तावित समझौते पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया।

0: trees. In badminton, PV Sindhu has stormed into the women's singles semi-final of the Australian Open tournament in Sydney. The third-seeded Indian outclassed Chinese Taipei's Chen Suyu in a one-sided quarter-final clash today. Sindhu will face top seed Akane Yamaguchi of Japan in the semi-final tomorrow morning. And that is the end of this news bulletin.
1: यह आकाशवाणी दरभंगा है। मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलोहर्ट्ज पर। इस समय स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:10 हो चुके हैं। अब हमारी आज की ये सभा यहीं संपन्न होती है। इसी मीटर पर कल सुबह 5:45 पर हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद।